0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर अब तक पहुंचती हुई यह आवाज आमिर तोफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर We will kiss the airwaves of Toronto this fine morning.
6: Very good morning. Namaskar. Assalamualaikum. Sasrikal. Khush Aamdeed. मैं हूँ शिवानी आपके साथ, आमिर और शिवानी के साथ। लवी डवी शो की हो चुकी है शुरुआत। 11 बजे तक हमारा आपके साथ बना रहेगा बॉलीवुड की गपशप के साथ, शेर व शायरी के साथ, हेल्थ एंड ब्यूटी अपडेट के साथ, गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s एंड ट्रेंडिंग मेलोडीज रहेंगी आपकी और हमारे साथ साथ फ्राइडे की बड़ी खूबसूरत सी सुबह में। और नंबर टू रीचर्स 416-309-3639 416-309-3639। वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज लवी डवी शो।

0: नशे सी चढ़ गई कुड़ी नशे सी चढ़ गई.
1: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: Lovey Dovey Show, aap hain Amir aur Shivani ke saath 416-303-3639. Amir, dekhi Friday aa gaya. Chhota hafta tha, long weekend ke baad jab Tuesday ko week shuru hota hai na aur Monday ka din nikal jata hai na, to aisa lagta hai ki Wednesday se Friday aa gaya. Badi jaldi weekend aa jata hai.
3: Mujhe lagta hai ki ye hafta 7 din ka nahi hona chahiye.
2: Achha.
3: अब कुछ तब्दीली इस मामले में भी होनी चाहिए. जिंदगी के हर काम में तब्दीली आई है. वक्त आगे बढ़ा है, हर चीज बदल गई है. हमारे आसपास के मंजर बदल गए हैं, तर्ज तामीर बदल गया है, तर्ज गुफ्तगू बदल गया है, काम करने का ढंग उसलूब बदल गया है, तो जरा हफ्ता भी बदल जाए.
2: जी बिल्कुल, और काफी चीजें बदल गई हैं. लोगों ने एक दूसरे के हालचाल पूछने कम कर दिए हैं. गुलजार साहब कहते हैं, तुमने तो कहा था कि हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, तुम बदल गई हो या तुम्हारे शहर में शाम होती नहीं.
3: वाह वाह, क्या कहने.
2: आप जिस शहर से आए वहां शाम होती थी?
3: वहां शाम ही रहती थी.
2: अच्छा,
3: कोई और मौसम आता ही नहीं था. इतना रोमांटिक शहर था वो.
2: अच्छा.
3: इतना रोमानवी शहर था कि पहली नजर में मोहब्बत ना हुई तो दूसरी में तो यकीनन हो जाती है.
2: यकीनन, सही है.
3: हाँ, वो उस शहर से मेरा ताल्लुक है. एक बात. दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बात हफ्ते की हो रही थी तो मुझे लगता है कि इट शुड बी अदर वे राउंड. 5 दिन छुट्टी, 2 दिन काम.
2: हाँ.
3: है, देखो ऐसे स्पीड से काम होगा ऐसे. ये जो
2: हमारी
3: है ना,
2: जो टेक्नीशियन है, स्विचर है,
3: जी जी जी.
2: पायस विनी
3: जी.
2: वो आपकी बात सुन के ना इतना हंस रही है कि शायद 11 ना बजा पाए वो शो करते. और अभी तो पहला लिंक है. अब देखिए,
3: नहीं मुझे लगता है कि जैसे ये इनकी जो जॉब है, टेक्निकल माइंडेड जो लोग हैं उनके लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है. ये मॉडल 2 दिन काम करने का उनके लिए नहीं है. उन्हें अच्छा? सिर्फ एक ही दिन काम करना है.
2: बाकी दिन करवाना है.
3: बाकी दिन सिर्फ करवाना है, क्योंकि उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है भाई.
2: अच्छा,
3: देखें इंसान मशीन बन चुका है ना इस वक्त. कुछ लोग तो मशीनों से भी ज्यादा काम कर रहे होते हैं. चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, वो उनकी जॉब ऐसी है कि वो 1 घंटा काम करें तो 2 घंटे ब्रेक लेते हैं. यानी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी फोकस करके करनी पड़ती है कि उनकी जरा भर की गलती खुदा ना खास्ता बहुतों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. तो बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें हम मशीनों की तरह काम करते हैं और अपना ख्याल नहीं रखते. और मेरा एक और आइडिया भी है कि हर इंसान जो 5 दिन काम करता है उसे एक मसाज थेरेपिस्ट असाइन कर देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ये फैसिलिटी हो.
2: अच्छा,
3: के
2: हाँ, जरूरत आज नहीं तो कल पड़ेगी.
3: नहीं नहीं, कल नहीं, एवरी डे उसको 5 मसाज दिए जाए 5 बजे के बाद.
2: अच्छा,
3: हाँ,
2: तब बाकी के 2 दिन निकालेगा वो.
3: यानी 5 दिन अगर जॉब करानी है.
2: अच्छा,
3: तो उसके जिस्म का ऐसे ख्याल रखा जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को भूल गए हैं.
2: अब आप बताइए, यू आर सो ट्रू आमिर, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना काम करते हैं ना कि हम पता ही नहीं लग पाते हमें कि हम थके हुए भी हैं. हमें लगता है कि नो, वी आर परफेक्टली फाइन, क्योंकि थकने का भी टाइम नहीं देते हम अपनी बॉडी को.
3: हाँ,
2: और जब हम 1-2 दिन जब आराम करते हैं और हमारी बॉडी टूटने लगती है और चीख चीख के रेस्ट मांगती है, तब हमें लगता है कि हमें ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम होती है, और काम के चक्कर में हमें याद नहीं रहता. तो दिस इज़ वेरी ट्रू कि अपना ख्याल रखना चाहिए. और हमारी जो बॉडी है वो हमें सिग्नल देती है कि शी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, शी वॉन्ट्स टू स्लीप. बस उसकी सुनिए और आपकी हम सुनेंगे, हमारी आप सुनेंगे,
3: हमारी आप,
2: हमारे लिसनर्स हमारी सुने. 416-303-3639. और अगला गाना जो आपके लिए कबीर सिंह से लाइनअप किया है, बड़ा खूबसूरत सा गाना, मेरे सोनिया. और कहते हैं, मायूस से चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, जैसे आपको याद आया है आपका शहर. मायूस से चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, यादें भी कमाल हैं, फिर जिंदा कर जाती हैं.
3: आपने जिंदगी की बात की है तो जिंदगी रंगों से जुड़ी है, और आज आपने जो रंग पहन रखा है, आप जरा ध्यान से जाइएगा, अपनी नज़र उतारिएगा, काली मिर्चों की धुनी दीजिएगा, ठीक है, उसको ज़रा स्मेल भी कीजिएगा, और ताकि आपकी नज़र उतर जाए. रास्ते में ध्यान से जाइएगा, जहाँ पे 30 की स्पीड है वहाँ पे 20 पे चलाइएगा, इधर उधर नहीं देखना, बिल्कुल सीधी नज़र रखनी है. घर जाइएगा।
2: नहीं, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि लोग हॉर्न दे के मुझे बता देते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग।
3: You are wearing a fabulous red color today and it's suiting you like anything. Stay tuned. This is Lovey Dovey Show.

0: डॉलर्स। 3 से 5 बेडरूम ऑप्शंस अवेलेबल, अप्रॉक्सिमेटली 1300 से 1900 स्क्वायर फीट का लेआउट्स अवेलेबल, एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, एक्सटेंडेड क्लोजिंग अवेलेबल एंड ग्रेट इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। अर्ली लॉन्च प्राइसिंग और लिमिटेड रिलीज के लिए एक्सक्लूसिवली कॉल निकी गांधी एट 416-456-3815। दैट्स 416-456-3815। योर ट्रस्टेड लिस्टिंग एजेंट फॉर रोलिंगवुड टाउन्स फॉर VIP एक्सेस, प्राइसिंग एंड फ्लोर प्लान्स। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।
1: साहब, जब मार्केट के एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, अपना वर्डिक्ट देते हैं, तो कोई आम बात नहीं होती, आम वर्डिक्ट नहीं होता, वो एक पक्की आजमाई हुई और परखी हुई बात होती है। आजकल भी मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स, तजुर्बाकार, सीजनड, मंझे हुए लोग एक ही बात कह रहे हैं और कहे चले जा रहे हैं। ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत अहम बात है ये कि ये खरीदारी का टाइम है, खरीदने का वक्त है, बाइंग का ट्रेंड है, बाय करने का वक्त है। तो जब एक्सपर्ट्स कह रहे हों, बैंकर्स कह रहे हों, मोर्गेज एजेंट्स कह रहे हों, रियल स्टेट प्रोफेशनल्स कह रहे हों, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स कह रहे हों, तो इसका मतलब है कि बात में बड़ी जान है। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त, सही समय है, वक्त है, टाइम है खरीदने के लिए। और इसी टाइम पे एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसके लिए लोग साल हर साल इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, और तब कहीं जाके उस प्रोजेक्ट से फायदा उठाने का टाइम आता है। हमारी और आपकी ये खुशकिस्मती है, वी आर लकी टू हैव दिस प्रोजेक्ट नाउ। यहां ब्रैम्पटन में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत आसान, बहुत इजी, फ्लेक्सिबल डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, 2028 की क्लोजिंग है, एमेनिटीज के आसपास बेहतरीन लोकेशन पर यह प्रोजेक्ट है, 1300 से 1900 स्क्वायर फीट के लेआउट्स हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम 600,000। यस, यू हेड इट राइट, एंड वी आर ज्वाइंड बाय वन एंड ओनली निकी गांधी जी फॉर दिस। वेलकम।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी आपका फॉर पुटिंग मी ऑन एयर, एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से अ वेरी गुड मॉर्निंग।
1: थैंक यू वेरी मच।
2: बिल्कुल सही कहा कि बहुत बढ़िया टाइम है, बायर्स मार्केट चल रही है, और उस टाइम पे हम बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंग वुड्स टाउन, जो के स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 600,000 से। गाइज, यस, यू हर्ड मी राइट, कि ब्रैम्पटन में, और वो भी 600,000 में। नॉट ओनली ब्रैम्पटन, पर आई वुड से ये जो लोकेशन है बहुत ही एक्साइटिंग है, मेविस एंड रेलोसन बुलीवर्ड, जो प्राइम लोकेशन है ब्रैम्पटन और मिसिसागा बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, वहां की हम बात कर रहे हैं, और वहां पे हमें टाउन हाउसेज मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 600,000 में विद द क्लोजिंग ऑफ 2028। इसका मतलब आपको एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर का भी फायदा मिलेगा गाइज, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और लोकेशन की अगर बात करें ना, तो आमिर जी कहते हैं ना, लोकेशन रियल एस्टेट में एक चीज कही जाती है कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, राइट? तो ये जो लाइन है ना, वो इस पॉइंट पे इतनी परफेक्ट फिट बैठती है ना, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी अमेजिंग है, सभी मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 407, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, आपकी डेली अम्यूनिटीज के बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा शेरडन कॉलेज से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी, सब कुछ इतना कन्वीनियंटली लोकेटेड पे है। सो इसका मतलब ये कि अगर फैमिलीज हो आप या फिर इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ साथ ये जो टाउन हाउस आ रहा है, वो आजकल के मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड पे है गाइज, सो मेक श्योर डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और एक खास बात इस लोकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो पॉकेट है ना, वहां पे 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ना काफी टाइम से कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है. बहुत सारे प्रोजेक्ट ब्रैम्पटन में आ रहे हैं पर वो बहुत नॉर्थ साइड पर है. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो बहुत टाइम के बाद कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है.

0: सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. साथ ही में हमारे पास 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज तक के और साथ ही में 3 से 5 बेडरूम तक के यूनिट्स अवेलेबल है. इसका मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहना चाहते हो, हर तरह के यूनिट्स हमारे पास, हर तरह की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. साथ ही में बिल्डर्स जो है बायर के लिए इतने बढ़िया बढ़िया से इंसेंटिव्स भी लेकर आ रहे हैं, पर उस इंसेंटिव्स के लिए आपको मुझे अभी कॉल करना पड़ेगा 416-456-3815. आई रिपीट, इट्स 416-456-3815. उसके साथ साथ आमिर जी, आजकल अभी ना प्री कंस्ट्रक्शन में ऑन्टेरियो गवर्नमेंट भी बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स दे रहे हैं. हमें जीएसटी एचएसटी का रिबेट मिल रहा है अप 230,000 का. पहले ऐसे था कि वो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ही था, बट अब वो सभी बायर्स के लिए एलिजिबल है. और सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन में अगर आप बाय करते हो तो आपको अप 230,000 का रिबेट मिल सकता है. सो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए. देखो, मार्केट जो है वो धीरे धीरे ना ओपन होनी स्टार्ट हो गई है. इंटरेस्ट रेट जो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है. बायर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी वापस आ रहा है. सो जो लोग वेट कर रहे थे ना उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. और उसके साथ आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, आप इन्वेस्टर हो, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ लेकर रहना चाहते हो, रोलिंग वुड्स टाउन इज डेफिनेटली एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है. और एक और बात है कि मैं जो हूँ आई एम द लिस्टिंग एजेंट विद द बिल्डर, तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंड मिल जाएंगी. और साथ ही मैं अपने सारे रियल्टर्स भाइयों बहनों को भी बताना चाहती हूँ कि हमारा 1 जून को ब्रोकर लॉन्च इवेंट होने जा रहा है. अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए आप मुझे अभी कॉल कर लीजिए एट 416-456-3815. और प्राइसिंग, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव, कंप्लीट डिटेल के लिए सारे लिसनर्स अभी के अभी कॉल करें एट 416-456-3815. आई रिपीट, इट्स 416-456-3815. बैक टू यू आमिर जी.
1: यहाँ नंबर है निकी गांधी जी का. ब्रैम्पटन में ऐसा प्रोजेक्ट जो 600,000 में हो, यहां तो कमाल की लोकेशन भी है, नियर टू अमेनिटीज भी है, प्रेयर प्लेसेस भी हैं, स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें, शॉपिंग प्लाजा की बात करें, ये लोकेशन इन सब में गिरी हुई कमाल की लोकेशन है. और इजी डिपॉजिट स्ट्रक्चर हो, 2028 में क्लोजिंग हो, और खास तौर पर एक ट्रस्टेड, वेल नोन, रिप्यूटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल के जरिए ये प्रोजेक्ट आपको मिले, तो अभी के अभी आपको नंबर मिलाना है, निकी गांधी जी से बात करनी है. दिस यूनिट कैन बी योर्स. 416-456-3815. आई रिपीट द नंबर, 416-456-3815. निकी जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए.
0: थैंक यू सो मच आमिर जी. थैंक यू.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 8191001, license number 12374.

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
3: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
4: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਹੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
5: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
6: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
7: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
8: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
9: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
8: क्या वो मदद करेंगे?
9: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, and no fee until victory.
10: Car accident या slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayed M. Raza of Sayed Law. Sayed Law से Sayed M. Raza.
9: जहां सिर्फ वादे नहीं, result मिले।
10: Call Sayed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
11: साहब, जब हम सड़क पे होते हैं, रास्तों में होते हैं, इस मुल्क की ट्रैफिक खास तौर पर इतनी तेज है, इतनी रमा दमा है कि यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप ड्राइव कर रहे हों तो इट हैज़ टू बी सेफ, इट हैज़ टू बी सिक्योर, it has to be careful, it has to be with all the focus. Zara sa dhyan bata, zara sa out of focus hue aap, zara si tawajjuh hati, zara si concentration bati, wahin pe hadse ki probability ya hadse ke mumkinat badh jate hain. Isliye zaruri hai ke nazar sadak pe rakhi jaye, मोबाइल फोन, गैजेट्स या इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से गुरेज किया जाए। लेकिन अगर कहीं हादसा हो जाता है, इंसान गलती का पुतला है, उससे गलती हो सकती है, ये गलती अगर आपसे हो जाए या किसी और से हो जाए, रोड पर मौजूद है, आपका कसूर हो या किसी और का हो, एक नंबर हमेशा आपको चाहिए होता है, वो आपकी जरूरत होती है, और वो नंबर है किसी ऐसी शख्सियत का जो आपको बता सके कि हादसे के फौरी बाद क्या करना है, किसको कॉल करना है, रिकवरी सर्विसेज वालों का क्या रोल है इसमें, कार रिपेयर वालों का क्या रोल है, गैराज वालों का क्या रोल है, एडजस्टर का क्या रोल है, वो क्या करता है, आपके राइट्स क्या हैं तिब्बी हवाले से, यानी मेडिकली आपके क्या राइट्स बनते हैं, और वो राइट्स लेने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये बहुत अहम मालूमात हैं। ये आप फोन करेंगे किसी एक्सपर्ट को तो वही बताएगा जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, मोर देन फुल टाइम इनटू पर्सनल इंजरी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर चुके हैं, उसके बाद फिर बैरिस्ट्री की इन्होंने, और सिंस देन ही हैज बीन इनटू पर्सनल इंजरी ऑन फुल टाइम बेसिस, वन एंड ओनली सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको।
12: जी तो फैल भाई, आपको और आपका रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का।
11: थैंक यू।
12: जी तो फैल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो यहाँ पर ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं ये इसमें मतलब जो एलिमेंट हैगा वो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग का एलिमेंट बहुत ज्यादा हैगा। ये और पर्टिकुलरली जो यूज ऑफ सेल फोन है, टेक्सटिंग वगैरह हैगा, इसका काफी ज्यादा जो है वो बेसिकली रोल हैगा इसमें।
11: Right.
12: और इसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो काफी सीरियस एक्सीडेंट्स होते होंगे। यानी अब आप देखें कि मतलब ये कि अभी रिसेंटली एक क्लाइंट से मिलने का इत्तेफाक हुआ, देर इज अ सिंगल रोड विच इज डिवाइडेड बिटवीन यू नो व्हाट टू लाइंस, येलो सॉलिड लाइंस, एंड देर आर नो कार्स बिहाइंड, देर आर नो कार्स एट द फ्रंट, एंड वन कार यू नो व्हाट पुल्स ओवर इनटू the next lane, means to say that onto the lane of oncoming car, and it struck on the front.
11: Right.
12: So you can imagine kitna severe ye accident tha. Ye matlab isme multiple fractured injuries. Aur simple reason jo hai wo iska either the person slept while driving. You know, otherwise, you know what, there is no traffic. You know what, only two cars, one oncoming and one, you know what, outgoing. That's it. One in each direction.
11: Right.
12: And the car, you know what, goes through the solid line and hit an oncoming car in front. So, ye cheez jo hai, matlab ye ki ye sab cheezein avoidable hangi. Aur iski wajah se jo life altering injuries hoti hangi, wo usko jo hai, wo money substitute nahi kar sakta hega. Yani agar jo ab ye jo fractures hue hai, ye jo knee fracture hua hai, ankle fracture hua hega.
11: जी.
12: ये जो है ये लोड बेयरिंग कैपेसिटी कभी भी जो है उस तरह से वापस नहीं आ सकती है जी. जो कि जीवन जीवन दो मतलब ये कि गो थ्रू सर्जरी, तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि बहुत ही सेफ ड्राइव की जाए, अपने आप को भी बचा के ड्राइव की जाए और दूसरे को भी बचा के ड्राइव की जाए.
11: सही.
12: बहुत से लोग कभी कभी ये समझते हैं कि ये हमारा राइट हैगा, येलो में निकल जाना भी हमारा राइट हैगा व्हेन लाइट इज टर्निंग येलो. लेकिन बहरहाल आप कोशिश करें, अगर आप रुक सकते हैं तो आप रुकें.
11: जी
12: के लॉ तो यही कहता है कि येलो पे आपने जो है रुकने की कोशिश करनी है, निकलने की कोशिश नहीं करनी है.
11: करनी ठीक.
12: तो ये सब चीजें जो है, लेकिन लोग जो है वो राइट समझते हैं, और फिर राइट समझते हैं तो उसके साथ साथ जो है वो फिर ये सारे एक्सीडेंट्स आते हैंगे. तो सैयद लॉ जो है वो यही काम कर रहा है, जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैंगे ऑन द वन साइड उन लोगों के एक्सीडेंट बेनिफिट क्लेम प्रोसेस करता है, एंड ऑन द अदर साइड जो है वो जिनकी एक्सीडेंट गलती होती है उनको सू करता हैगा, और उनकी इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो उनको लमसम क्लेम दिलवाता हैगा, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंजरीज. जैसे मैंने आपको बताया ये लाइफ ऑल्टरिंग इंजरी का जो अभी मैटर हैगा, मतलब आई थिंक इज दैट यू जस्ट थिंक अबाउट कि एक शख्स जो है उसको इतनी सीवियर लाइफ ऑल्टरिंग इंजरी हुई है. तो आपको जरूरत किस बात की होती है? जरूरत इस बात की होती है कि आपके साथ एक लॉ फर्म हो जिसका काम ही इंजरी क्लेम्स हो, या नहीं कि जिसका काम ए बी सी डी ई एफ सब कुछ हो, उसका काम खाली इंजरी क्लेम हो. क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है जो एक ही चीज पे काम कर रहा है, मैं खुद डेडिकेटेड हूँ जो एक ही चीज पे काम कर रहा हूँ.
11: बिल्कुल.
12: हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ इंजरी क्लेम पर ही, हमारी कंसंट्रेशन जो है वो क्लोजिंग पर नहीं है कि प्रॉपर्टी भी आज क्लोजिंग भी होनी है. हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ आपके इंजरी क्लेम पर है. तो यू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन व्हेन यू रिटेन सैयद लॉ. यू गेट, अभी आप बात कर रहे थे ड्राइव करते हुए फोकस होना चाहिए, इसी तरह लॉ फर्म जो है सही अल्लाह उसका फोकस जो है एब्सोल्युटली वन फोकस हैगा,
11: बिल्कुल
12: क्लाइंट फोकस हैगा। आपका इंजरी क्लेम जो है वो हमारे दिल के करीब, हम कोई और काम नहीं करेंगे, हमें जो है वो मैक्सिमाइज करना हैगा। पहली बात है हर एक को जो है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने होते हैं, मतलब सारे बिजनेस इसी तरह से चलते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमाइज जो है वो इसी एरिया में करना है, और वो मैक्सिमाइज हम इस तरह से करते हैं कि स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करके वी गेट मोर मनी फॉर यू, एंड देन वी गेट मोर मनी फॉर यू, वी मेक मोर मनी, सो इट्स अ विन विन फॉर यू एंड फॉर अस, दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स व्हाट अवर फिलॉसफी इज, मतलब फोकस कंसंट्रेटेड सर्विसेज टू अवर क्लाइंट्स, डेडिकेटेड क्लेम सर्विसेज टू अवर क्लाइंट, ताकि हमारे क्लाइंट जो, यही वजह है जब आप बात करते हैं सिंगल क्लाइंट को एग्रीगेट 2 मिलियन से ज्यादा का सेटलमेंट, और जो है लाखों डॉलर के तो हम सेटलमेंट महीने में पता नहीं कितने कर देते हैं। तो रीजन इज दैट कि जी फोकस है का, हम क्लेम को उस तरह से बिल्ड करते हैं जिस तरह से बिल्ड होना चाहिए विद क्लाइंट कोऑर्डिनेशन। क्लाइंट का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्लाइंट फील नहीं करेगा कि आप उसके साथ हैं, आप उसके दुख दर्द को समझते हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसको तसल्ली दे रहे हैं, जब तक क्लाइंट जो है वो क्लेम में जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा फील नहीं करेगा, अंटिल एंड अनलेस उसको जो है वो कोई ऐसी लाइफ ऑल्टरिंग इंजरी ना हो। ये लॉयर का काम है और उसके स्टाफ का काम है कि क्लाइंट कोऑर्डिनेशन को इतना स्ट्रांग बना सके ताकि क्लाइंट जो है उसको पता लगे कि देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ।
11: वेरी नाइस,
12: ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हैगी और यही हमारा मोटो हैगा, और हमारा आपको पता है हमारा स्लोगन हैगा इंजरी टेकन सीरियसली, नो मैटर इफ्स अ शॉर्ट टिश्यू इंजरी, इट्स ब्रोकन बोन, इट्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या ये गोवे को सीरियस ब्रेन इंजरी हैगी, वी आर हेयर टू हेल्प यू इन एनी सिचुएशन। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को कभी भी हम जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है वो बेसिकली ज्यादातर क्रोनिक पेन में चेंज हो जाती है, और उसके साथ साथ जब साइकोलॉजिकल इश्यूज भी जो है वो मर्ज हो जाते हैं तो उसको फिर बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होता है। क्रोनिक पेन का मतलब ये है पेन विल स्टे देयर, इट विल नॉट गो, नाउ यू रिक्वायर ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, परहैप्स मे बी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5-10 years, you know, so this is very very important, who will pay for all this, OHIP doesn't cover this, so you have to have your insurance claim proceeded through your insurance company and with the help of a law firm. So yahi hamara message hai, whenever you are in an accident just call Sayyid Law, we are a number away from you, number to fail bhai aap batayenge aapke listeners ko taki wo hamara number note kar le, hamari website hai Sayyid Law Office, आप उसको जाए रिव्यू करें, आप हमारे रिव्यूज पढ़ें बिफोर यू रिटेनर्स, आप हमारा फेसबुक पेज पे जाए, ऑन अवर वेबसाइट वी हैव अ लॉट ऑफ यू नो व्हाट एजुकेटिव मटेरियल ऑन दैट, सो जस्ट गो थ्रू दैट, व्हाट आर योर राइट्स, व्हाट वी कैन डू, हमारे रिव्यूज आप देखें और हमें कॉल करें। थैंक यू तोफेल भाई आपका।
11: जैसे आपके पास इंश्योरेंस का पेपर, गाड़ी की मलकियत के उसकी ऑनरशिप के पेपर्स गाड़ी में मौजूद होते हैं, इसी तरह से ये नंबर भी आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। ये रहा नंबर, आप ड्राइव करते हैं या नहीं करते, ये नंबर सेव कर लें, खुदा ना खास्ता किसी दोस्त का, रिश्तेदार का, जानने वाले का या आपका खुद का एक्सीडेंट हो जाए तो फौरी तौर पर ये नंबर मिलाएं 24/7 416-937-5046। नंबर आपको दोबारा बता रहे हैं 416-937-5046 सैयद एम रजा बैरिस्टर। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
12: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं
1: क्या आप सुन रहे हैं
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ, 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
1: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए। किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 30 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639।
3: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्गेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए। 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639।
3: जी, 416-303-3639। लवी डेवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ, 416-303-3639। और आमिर, आप एक एकेडमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और आपने इतने ही सारे स्टूडेंट्स को डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के जरिए प्रोफेशनल बनाया है। और इंसान जब एक स्टूडेंट को ही अपने हाथ के नीचे से निकाल के प्रोफेशनल बना दे, तो वो अपने आप को प्रो समझता है और डेफिनेटली वो प्रो है क्योंकि वो ये सब कर पा रहा है. आपके अंदर से इतने स्टूडेंट्स निकले हैं, आपने करके किया है, इतनी इतने बैचेस आपके चल चुके हैं, फिर भी हर बैच से एक दिन पहले, अब दिस कल आपका नया बैच शुरू हो रहा है, एक दिन पहले ऑलवेज व्हेन आई सी यू ऑन फ्राइडे, बिकॉज आपके बैचेस सैटरडे से ही शुरू होते हैं, आपके जो फेस पे एक बच्चे वाला जो एक्साइटमेंट होता है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है या ऐसा लगता है आपका ये पहला बैच है, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा इंसान को ना मोटिवेट किए रहती है. एवरी टाइम इट साउंड्स लाइक एंड इट लुक्स लाइक इट्स योर फर्स्ट बैच, तो ऐसा क्यों होता है?
1: शिवानी, मुझे लगता है कि हिवान में या किसी दरिंदे में या किसी वहशी में और इंसान में
3: डेविल और
1: एक ही फर्क है. फर्क सिर्फ एक है, इल्म का, ज्ञान का, नॉलेज का, इदराक का, मंतक का, दलील का, रैशन का, रैशनल अप्रोच का, यही एक फर्क है.
3: बस एक दिख सेंसिबिलिटी है जो दोनों को अलग करती है सच में.
1: और उसके लिए इल्म हासिल करना, या तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, इल्म हासिल कर रहे हो, या फिर आप इल्म या नॉलेज या ज्ञान दे रहे हो, आप दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो मुझे लगता है कि इंसानियत से बाहर हाल आप बहुत दूर है.
3: बिल्कुल,
1: ये मेरा अपना मानना है, लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं. या तो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, दोनों में से एक काम आपको करना ही है. अगर आप दोनों ही नहीं कर रहे हैं, देन यू आर फार फार अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी.
3: बिल्कुल सही,
1: ये ह्यूमैनिटी की पहचान है, ह्यूमैनिटी की शनाख्त है. और वो लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आते हैं और नया स्किल नहीं सीखते, वो यकीन माने बहुत पीछे रह जाते हैं. दे lag behind from rest of the people who gain knowledge, who develop their skills and you know keep their pace. हमने ये कोर्स भी इसीलिए शुरू किया है शिवानी, कि वो लोग जो 40-50 के हैं, 55 के हैं, 60 के हैं, 65 के हैं, और उन्हें लगता है कि वो बहुत पीछे रह गए हैं डिजिटल मीडिया की दौड़ में, तो हम उनको शामिल कर सकें इस पूल में, इस दौड़ में.
3: बिल्कुल सही.
1: कि अपने पोस्टर डिजाइन करने हैं तो अपने किसी बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा ये पोस्टर तो डिजाइन कर देना. उनको कोई रील बनानी है तो बच्चे से कह रहे हैं बेटा ये अच्छी सी रील तो बना देना, जरा लाइटिंग का ध्यान से ख्याल रखना, ये फलाना फिल्टर लगा देना, ये कर देना, वो कर देना. वो बच्चे बना रहे हैं और कभी बना देते हैं, कभी 1000 नखरे करते हैं, और कभी मतलब हाथ ही नहीं आते हैं वो. तो मैं
3: हाथ ही नहीं आते. बिल्कुल सही अप्रोच है,
1: हाथ ही नहीं आते. मेरा मकसद यह है कि मैं ये डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता हूं लोगों की, कि आप आए हमारे पास, 40 घंटे का कोर्स करें, आपको दुनिया के किसी शख्स की जरूरत नहीं अपना काम करवाने के लिए. डिजिटल मीडिया का सारा काम आप खुद कर सकेंगे. हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे एक रील बनानी है, कैसे एक पोस्टर बनाना है, उसको डिजाइन कैसे करना है, आपने इनडोर यानी घर के अंदर रहते हुए या स्टूडियो के अंदर रहते हुए रील्स या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनानी है, उनको यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए यूज कैसे करना है. इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. इतना मजे का ये कोर्स है, कोर्स नहीं ये ट्रेनिंग कहा जा सकता है इसको. और ये सब प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है कि आप 4-5 मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे और उसके बाद उधर ही सो जाएंगे टेबल पे, ये वो नहीं है.
3: Yeah.
1: ये फन है, आप Yes. करके सीखेंगे काम. ये नंबर मिलाइए, कल कोर्स शुरू हो रहा है, कल 1 बजे क्लासेस शुरू हो जाएंगी. 416-303-3639 नंबर दोबारा बता रहे हैं, कल कोर्स शुरू हो रहा है, आज ही इनरोल कराइए, कल से ट्रेनिंग शुरू कीजिए. 416-303-3639
3: Awesome. 416-303-3639 और आमिर जहरा निगाह साहिबा की लिखी शायरी है, बहुत खूबसूरत लिखती हैं. कहती है, नक्श की तरह उभरना भी तुम ही से सीखा. नक्श की तरह उभरना भी तुम ही से सीखा, रफ्ता रफ्ता नजर आना भी तुम ही से सीखा.
1: वाह.
3: तुमसे ही तो हासिल हुआ एक गहरे समंदर का सुकूत. हर एक मौज से लड़ना भी तुम ही से सीखा.
1: वाह वाह.
3: अच्छे शेरों की परख तुम ही ने सिखलाई मुझे. अपने अंदाज से कहना भी तुम ही से सीखा।
1: वाह वाह,
3: तुमने ही समझाए मेरी सोच को आदाब अदब, लफ्जो मानी से उलझना भी तुम ही से सीखा। रिश्ता नाज को जाना भी तो तुमसे जाना, जामाए फख्र पहनना भी तुम ही से सीखा। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना भी तुम ही से सीखा।
1: कमाल है, बहुत खूबसूरत अशार है। बांध लें हाथ पे, सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज बना लें तुमको।
3: ब्यूटिफुल।
1: फिर तुम्हें रोज संवारें, तुम्हें बढ़ता देखें, घर के आंगन में चंबेली सा सजा लें तुमको।
3: वाह,
1: क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं अब तो मेरे मन में, कि करके मुन्ना सा हवाओं में उछाल लें तुमको।
3: क्या बात है।
1: और इस कदर टूट के हमें तुम पे प्यार आता है कि बाहों में भरें और मार ही डालें तुमको।
3: क्या बात है।
1: और जान देने की इजाजत भी नहीं देते हो, वरना अभी मर जाएं और मर के मना लें तुमको।
3: वाह, अमेजिंग।
1: बांध लें हाथ पे, सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज बना लें तुमको।
3: क्या बात।

0: सब कारोबार हो, आपका रिश्ता नाता ताल्लुक साथ बंधन हो, या फिर किसी सफर में अचानक किसी से मुलाकात हो, एतबार बनाना, ट्रस्ट बनाना, भरोसा बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, वक्त लगता है, दहाइयां लग जाती हैं एतबार और एतमाद बनाने में, जिसे हम परखा हुआ, आजमाया हुआ, जांचा हुआ कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ब्रांड की, एक ऐसी जगह की, एक ऐसे कारोबार की जिसने एतबार बनाया नहीं, एतबार कमाया, ट्रस्ट कमाया जाता है, और कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खून से सैराब करनी पड़ती है ये एतमाद की सरजमीन, फिर कहीं जाके फूल खिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही किया है इस शख्सियत ने, अपने कारोबार को कारोबार नहीं समझा, बल्कि अपने कारोबार को इबादत की तरह किया है। मैं सुबह 10:30 बजे जाऊं तो ये वहां मौजूद होते हैं, शाम में 7 बजे जाना हो तब भी वहां मौजूद होते हैं, हालांकि अपना काम अपने को वर्कर्स, अपने जूनियर्स पर छोड़ सकते हैं। इनके लिए बहुत आसान है कि नाम बन गया है, अब काम को दूसरों पर छोड़ दिया जाए, लेकिन काम को खुद करना पसंद करते हैं। आपसे बात करेंगे, आपका मसला सुनेंगे, उसको हल करेंगे और कंसल्टेंसी करेंगे, बाकायदा सलाह मशवरा होगा। पहले अप्लाइंसेस के हवाले से अगर आपको एक परखा हुआ, जांचा हुआ, बाएतमाद नाम चाहिए तो आपको एक ही जगह जाना है साहब, पूरे ओंटेरियो में एक ही नाम है अप्लाइंसेस के लिए, जो कहता है रिलायबिलिटी भी होगी, कंफर्टेबिलिटी भी होगी, कॉस्ट में भी सबसे सस्ता मिलेगा और बेस्ट कस्टमर सर्विस होगी, आफ्टर सेल केयर भी होगी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और में ज्वाइन किया है सलीम चौधरी ने, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: आमिर भाई थैंक यू सो मच। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि द वे यू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उसके बाद कुछ अल्फाज रहते नहीं कि मैं उनको कुछ ऑर्डर। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली लेकिन कोई भी आप लाइफ में किसी प्रोफेशन को अगर आप कॉम्पेशन के साथ नहीं करेंगे और उसके साथ अपनी एनर्जी को इंडल्ज नहीं करेंगे, तो वहां से आपको एक जो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन होता है वो नहीं मिलता। तो ये जो कारोबार है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिधर जिधर भी इंसानों का रिस्क लिखा हुआ है
0: जी,
1: आपको उसमें अपनी हार्ट सोल एंड ब्लड एंड स्वेट सब कुछ डालना पड़ता है, देन थिंग्स को। और डिक्सी को नश किया अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सो मैनी ईयर्स, और अब तो लगता है कि सुबह उठ के अगर आप अपने बिजनेस पे ना आए तो यू डोंट फील गुड अबाउट इट, आपकी लाइफ थोड़ी सी लगती है जैसे स्लो डाउन होगी।
0: बिल्कुल सही बात है, दैट्स वेरी ट्रू।
1: पिछले दिनों एक अच्छी दो तीन अच्छी चीजें हुई हैं। एक तो हमने कैनमोर का डीलरशिप, सो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डीलर राइट नाउ इन जीटीए फॉर द कैनमोर। सो कैनमोर इज 114 ईयर्स प्लस ओल्ड ये ब्रांड है। पहले सीएस के पास होता था, सीएस वगैरह तो चूंकि वो उन्होंने अपने बिजनेस को शट डाउन किया, तो भी हमारे दो चार कंपेटिटर, तो बट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट शोरूम फॉर कैनमोर इन ओंटारियो।
0: जबरदस्त,
1: उनकी सेल्स में, उनकी प्रेजेंटेशन में, उनके डिस्प्ले के अंदर। अच्छा, कैनमोर की खूबी है कि ये बहुत सारी प्रोडक्ट के अंदर काफी सारी चीजों को एड ऑन करते हैं बट प्राइस को लो रखते हैं। जैसे आपको एक एयर फ्राई के साथ कन्वेक्शन और वाईफाई के साथ ये जो स्टोव्स हैं, आम तौर पे कंपेटिटर जो इनके हैं वो उसको बेचते हैं कुछ $1,000 $1,100 में। ये वाले इन्होंने हमसे एक प्रॉपर डील की क्योंकि हमने इनके 17 कंटेनर्स को ऑर्डर किया, तो यू कैन गेट दैट स्टोव ओनली दिस वीकेंड, नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और मंडे भी हम ऐड करते हैं जानबूझ के, कई दफा लोग वीकेंड पे बिजी होते हैं। कि यू कैन गेट फॉर दीज 4 डेज दैट स्टोव इज ओनली फॉर 644 प्लस टैक्स,
0: राइट,
1: जो मार्केट में लगा हुआ है। मतलब जिनको हम समझते नहीं कि हम तो मीडियम साइज बिजनेस है, जो नेशनल लेवल के स्टोर्स हैं
0: जी,
1: वहां पे वो है आज की डेट में 800 प्लस टैक्स का, हम $150 एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे के, 2 साल की वारंटी है
0: जी,
1: और 6 मंथ्स की फाइनेंसिंग भी है
0: राइट।
1: बल्कि इन 4 दिनों में अगर कोई बंदा आएगा तो वी विल डू 12 मंथ्स फ्री फाइनेंसिंग
0: राइट।
1: उसमें देयर इज नो एक्स्ट्रा फीस और 12 महीने की आप फाइनेंसिंग, तो जो भी आप बाय करेंगे तो आप हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको बताएं वी वांट टू डू फाइनेंसिंग एंड दे कैन डू द फाइनेंसिंग फॉर यू।
0: बिल्कुल।
1: फ्रिज इनकी बड़ी अच्छी है, 36 इंच की फ्रिज, काउंटर डेप्थ आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगी 988 की।
0: वाओ, कमाल है।
1: 36 इंच की फ्रिज है, काउंटर डेप्थ है और इनसाइड स्टेनलेस स्टील है, आउटसाइड तो है ही है। तो और उसके अलावा इनका जो गैस के स्टोव्स हैं स्लाइड इन, जो आमतौर पर तकरीबन 18 से 2000 के बीच में मिलते हैं, 1800 से 2000 के बीच में, हमने इस वीकेंड के ऊपर कैनमोर का वो वाला स्टोव सिर्फ और सिर्फ लगाया है 945 का।
0: वेरी नाइस।
1: यानी वी ट्राई टू कीप थिंग्स लाइक इन सच अ वे कि जिसके अंदर अभी इनका बल्कि माइडिया का वॉशर डैड जो 5.2 क्यूबिक फीट विदाउट एजिटेटर, वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद आज डिलीवरी आज आ जाए, अगर आज ना है तो मंडे को डेफिनेटली, जो मार्केट में लिटिल इमरान अपना आमिर भाई जो लगी हुई ना चीजें वो है तकरीबन तो कोई 700 ईच का।
0: बिल्कुल सही।
1: इस वीकेंड पे कोई भी बंदा बुक करवाए, कोई भी हमारे लिस्नर बुक करवाए तो आपको वो विदाउट एजिटेटर 5.2 क्यूबिक फीट और 7.4 क्यूबिक फीट का जो ड्रायर है ये दोनों आपको मिल जाएंगे $492 ईच में। यानी कि मार्केट से एक तो हम $500 सस्ता ऑलमोस्ट।
0: बिल्कुल सही।
1: ऊपर से इसकी ड्यूरेबिलिटी ये है कि ये मैन्युफैक्चर जो है वो 2 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है
0: राइट
1: वे। ये और आपको पता है कि सोनी की हम वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डीलर ऑफ द सोनी इन GTA। सैमसंग की अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो सैमसंग का 98 इंच का टीवी वी आर ऑफरिंग ओनली फॉर 1950। ठीक है, 55 इंच का टीवी 499 के हैं। अगर आपने बिल्ट इन अप्लायंसेज में जाना हो तो हमारे पास अभी जो किचन एड और ये जो बॉश के हैं, इलेक्ट्रोलक्स, बॉश, किचन एड, सैमसंग, इन सब के डिस्प्ले पे चीजें लगी हुई हैं। तो इफ यू वांट टू गो विद दी बिल्ट इन अप्लायंसेज जिसमें वॉल ओवन माइक्रोवेव है, जैसे अभी फ्रिजिडेयर गैलरी का
0: जी,
1: इस वीकेंड के ऊपर वॉल ओवन हम सिर्फ बेचेंगे 2975 का।
0: बिल्कुल ठीक।
1: आमतौर पे जैसे उसके कंपैरेटिव आप सैमसंग लेते हैं और किचन एड है या बॉश है तो दीज थ्री ब्रांड से गो फॉर अ प्राइस रेंज ऑफ से ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन कोई 5200-5300 के आते हैं। लेकिन हमने उनके ऊपर भी वॉक इन क्लाइंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ला गया। अब जैसे सैमसंग का जो 5200 का या 4999 का है, हमारे स्टोर पे आज वो 4299 का चलेगा।
0: ठीक।
1: यानी हम तकरीबन कोई 700 से लेके $800 पर अपना, ये मैं बिल्कुल रियल नंबर्स आपको बता रहा हूँ। वो कई दफा होता है रेडियो पे ऐड आ रही होती है, अच्छा जी वो 10,000 की चीज है तो उन्होंने तुम 1,000 से चुक लो। दीज आर नॉट द फेक नंबर्स। वी वांट टू यू नो टेल आवर लिसनर्स कि डू बिजनेस विद पीपल हु आर रियल
0: एंड दे वांट
1: टू गिव यू प्रॉपर सर्विस एंड दे गिव यू द राइट प्राइस।
0: बिल्कुल सही।
1: एंड दे प्रोटेक्ट योर प्राइस, मेक श्योर That you get, ये भी हमारे पास एक क्लाइंट थे परसों, उनकी क्लोजिंग अगले साल जनवरी में, वी गिव देम द बेस्ट प्राइस। लेकिन आज साथ में हमने उनको एक और भी प्रोटेक्शन दी कि अगर कोई बॉक्सिंग डे पे जाके प्राइस चेंज होती है या ब्लैक फ्राइडे पे और इससे लोअर आती है तो यू विल गेट दैट डिस्काउंट ऑल्सो। तो ये इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है ये आपको सिर्फ डिक्सी पे मिलेगा, ये बाकी स्टोरों पे थोड़ा सा वो शायद नादरी होती है ये चीजें।
0: बिल्कुल सही।
1: तो या और वॉशर डायर हमारे पास उसके वर्लपूल, सैमसंग, मेटेक, इन सब के वी हैव ऑल दोज ऑन द डिस्प्ले इफ समबडी। जी कैफे आपको पता है कि हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांड गिना जाता है
0: जी,
1: और जी कैफे के ऊपर डे इन डे आउट आप कोई भी बाहर से जो है ना वो प्राइस हो, ठीक है, कुछ आपको डिस्काउंट, आपको स्टैंडर्ड 25% डिस्काउंट राइट वे मिलेगा।
0: वाह,
1: मतलब इससे बड़ा डिस्काउंट मेरा नहीं ख्याल कि कोई
0: जबरदस्त, अमेजिंग।
1: और बायर वो भी 25% वो जो कभी कभार डिस्काउंट देते हैं कि जी आप बाय 5 अप्लायंसेज एंड यू गेट दिस एंड दैट, तो हमारा कोई चक्कर नहीं, आप आए स्टोर पे
0: बिल्कुल
1: कैफे का वाइट फ्रिजेस हो, इनके एक विद द गोल्ड हैंडल्स आते हैं वो ब्रॉन्ज सॉरी ब्रास हैंडल के साथ
0: जी,
1: और उसके बाद इनका एक ब्लैक स्टेनलेस स्टील के भी आते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडल्स हैं, फिर स्टेनलेस स्टील भी हैं। तो कैफे इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन गैस एंड देयर रेफ्रिजरेशन।
0: बिल्कुल
1: सो इफ यू वांट टू सी दोस आइटम्स डू विजिट अस, ऑनेस्टली यू विल फाइंड दैट डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स is for a reason there for last quarter of a century.
0: बिल्कुल सही, वाह बहुत कमाल की बात है। आपको अप्लाइंसेस चाहिए, घर नया है या पुराना है, अप्लाइंसेस चेंज कराना चाहते हैं या नए अप्लाइंसेस लगवाना चाहते हैं, एक बात तो तय है कि जो क्वालिटी और प्राइस, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्वालिटी और प्राइस जो आपको डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेगा पूरे ओंटेरियो में कहीं अवेलेबल नहीं होगा, इस बात की गारंटी सलीम चौधरी साहब देते हैं। और इनका नंबर यहां मैं आपको दे देता हूं, इनसे बात कीजिए, इनका स्टोर विजिट कीजिए। ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। हियर इज द नंबर 905-625-5900। नंबर दोबारा बता रहे हैं, डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइंसेस, यहां मिसिसागा में कमाल का बेहतरीन स्टूडियो कह लीजिए, स्टोर कह लीजिए, ये बिजनेस जिसने एक रिवायत कायम की है, एक रुझान कायम किया है, एक ट्रेंड सेट किया है प्राइस को बीट करने का, यहां जरूर जाइएगा। 905-625-5900। तो चोई साहब, जो आपने सोफे लगा रखे हैं उस पर खास लोगों को ही बिठाते हैं या मेरे जैसे आम भी बैठ जाते जाके?
1: सर आपका जो आपने आइडिया दिया हुआ ना सोफे पे तो बैठ के चाय पीने का अपना मजा आता है, तो चाय की बात करेंगे वो तो हमारा एक कहना है ना प्रेस एरिया है ना जिधर बैठ
0: के, आई लाइक दैट एरिया।
1: उस जगह का फायदा सबसे बड़ा पता क्या, जब बच्चे आते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ,
0: जी जी जी जी,
1: ऑफ कोर्स दे डोंट वांट टू लिसन अबाउट कि फ्रिज व्हाट डज इट ऑल ओवर एंड कुकिंग, सो हमने उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत एरिया बनाया, सो दे सिट देयर, फायर प्लेस इज इन दैट साइड और टीवीज आर वर्किंग एंड कम्फी सोफा, सो किड्स दे हैव, दे यूज्ड टू हैव, यू नो।
0: तो इसका मतलब है मुझे भी अपने पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा?
1: आपके लिए एक्सेप्शन है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: चौधरी साहब, वहीं पे बैठ के
0: पीते हैं, दैट्स ट्रू,
1: नॉट ऑन द डस्ट। और कोई भी हमारा लिसनर आए, हैव अ कप ऑफ टी विद अस,
0: यस,
1: और बड़ी मजे की चाय है।
0: ऑफ कोर्स इंडीड। देखिए, आपने वहां से कुछ चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी है या आपकी सवाब दीदा है, लेकिन चाय जरूर पिलाएंगे आपको चौधरी साहब।
1: ओह यस, नहीं चाय का बड़ा मजा है, चाय हैप्पी मजे की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब,
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।

0: 416-303-3639. दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, और क्या ही खूबसूरत सा वो एहसास हो जब आपकी स्किन से, आपके बालों से आपको खुद प्यार हो जाए।
1: अरे वाह।
0: और ये आज के टाइम में इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से सैलून है, जहाँ से आप अपनी स्किन में भी मेकअप करके ठीक ठाक लग सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं, खूबसूरत लग सकते हैं। बालों का भी थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके, रोल वोल करके आप प्रेजेंटेबल लग सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही रहती है। एंड ऑफ द डे तो आपको अपने आप को ही फेस करना है,
1: अरे
0: द रियल यू। तो
1: जी।
0: इसमें अगर आप के हमारे कहते हैं, आई ऑलवेज से कि हमारी जो किचन है ना, वो हमारी सबसे अच्छी फार्मेसी होती है।
1: सही।
0: बचपन में देखिए, जब चोट लगती थी तो किचन में हल्दी लगा दी जाती थी,
1: स्याही
0: भी लगा दी जाती थी, आपको पता है ना। तो लेकिन जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। जब गला खराब होता है तो कहते हैं हल्दी का आप मिल्क पी लीजिए।
1: ये वही हल्दी है जिसके बारे में कहा जाता है ये कैसे पिसेगी, ये कैसे पिसेगी।
0: जी वही हल्दी,
1: हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी।
0: जी जी वही,
1: यही वाली।
0: जी ये मैं अगला सेंटेंस बोलने वाली थी लेकिन मैंने आप पे छोड़ दिया था। तो जो हल्दी का मास्क होता है, तभी देखिए शादी से पहले जो हल्दी की आप कि मैं जो मायू कहते हैं उसकी जो सेरेमनी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेहरे पर ग्लो लेकर आती हैं, खूबसूरती लेकर आती हैं। और जो टर्मरिक
1: हल्दी अगर चेहरे पर लगाई जाए तो ये इससे ग्लो आएगा।
0: बहुत ग्लो आता है, हम बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत।
1: मैं फिर आज से शुरू कर दूं यानी?
0: हाँ जी कीजिए।
1: तो कितना टाइम लग जाएगा?
0: दिस हेल्थ अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय जनाब आमिर तुफैल। वो अपने लिए स्पॉन्सर किया उन्होंने ये हेल्थ अपडेट। टर्मरिक मास्क जो है वो एक्नी और पिंपल प्रोन स्किन को ठीक करने के काम आती है। जो स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है जिससे इम्प्योरिटीज हमारे चेहरे पर आती हैं, उसमें मदद करती है। और जो इवन स्किन टोन है जिसके बारे में हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, और हमारे स्पॉन्सर्स भी आके कई बार बताते हैं कि जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कुछ हिस्सा ऑयली है, कुछ हिस्सा ड्राई है, कुछ हिस्सा टी जोन बनता है चेहरे का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है वो एक अदना सी हल्दी है।
1: हल्दी है, अच्छा
0: जी। और आपको क्लियर ग्लोइंग स्किन देती है, ब्लेमिश फ्री स्किन देती है। और एक छोटा सा जो हम मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, जिसको फुलर्स अर्थ कहते हैं, उसमें थोड़ी सी टर्मरिक मिलाइए, रोज वाटर मिला सके तो बहुत अच्छा है। चेहरे पर 20 मिनट तक लगाइए, थोड़े
1: गुलाब
0: जी,
1: रोज वाटर
0: जी।
1: अच्छा
0: हाँ जी वही तो।
1: अरके गुलाब इसलिए मैंने बोला कि ये बड़ा आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है।
0: अच्छा।
1: यानी एक तो गुलाब, उसी की तारीफें इतनी, ऊपर से अरके गुलाब, यानी उसका भी निचोड़, तो वो क्या ही चीज होगी। आप ये हल्दी वल्दी तो साइड पे रखिए, अकेला ही लगा ले तो मुझे लगता है बात बन जाएगी।
0: ये उस वो जो रोज वाटर होता है, ये हमारे बॉडी का जो पीएच होता है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका अच्छा। एक अपने आप में आर्टिकल है रोज वाटर, इतनी सारी उसमें प्रॉपर्टीज होती
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा।
0: ऊपर से हल्दी मिल जाए उसमें तो जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा अच्छा है, राइट?
1: मुझे टू मच नहीं हो जाएगा ये?
0: नहीं,
1: अच्छा अच्छा,
0: बिल्कुल नहीं होता।
1: ये तो चेहरे पे डिपेंड करता है, मेरे जैसा बिल्कुल ही वीरान चेहरा हो तो फिर तो कम है। हल्दी भी कम है, अरके गुलाब भी कम।
0: आपको एक महीने तक ये सब चीजें चाहिए।
1: ओ अच्छा,
0: उसके बाद जब आप
1: प्रेजेंटेबल हो जाएंगे,
0: स्टेट ऑफ वेलबींग में आ जाएंगे, तब एक एक चीज आप इस्तेमाल कीजिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आमिर
1: गुजारा है कोई बात
0: नहीं, ठीक ठाक बिल्कुल सब ठीक है, ऑल गुड, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो बड़ा प्यारा सा गाना है आंखों के ऊपर।
1: अच्छा।
0: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
1: आपने पूरा प्लान किया, वैसे पहले आपने चेहरे को दुरुस्त

0: किया है, फिर आपने आंखों को ठीक किया है और फिर आंखों का गाना लगाया
1: है। नहीं, ये
0: व्हाट
1: गाना है जो ऑलरेडी आंखें अच्छी हैं।
0: अच्छा, वो उनके लिए है। अच्छा,
1: कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप मस्कैरा लगाइए, थोड़ा आईलाइनर लगाइए और आप खूबसूरत।
0: तो क्या आपकी इजाजत से ये गाना मैं आपके नाम कर सकता हूँ? नहीं, लगवाया तो आपने ही है
1: जी,
0: लेकिन नाम तो होना चाहिए ना। गाना किसी के नाम ना हो तो समझ लो गाना जाया हो गया।
1: माय प्लेजर।
0: ओह, थैंक यू वेरी मच। सो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू द वन एंड ओनली शिवानी फ्रॉम ऑल द लिसनर्स एंड माय सेल्फ। स्टे ट्यून्ड।

0: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। आमिर, कहा जाता है कि जब इंसान खुश होता है ना, चाहे वो अच्छी सेहत के हवाले से खुश हो, अपनी फैमिली की वेलबींग के हवाले से खुश हो, चाहे उसे ज़िंदगी में वो मिल गया हो जिसकी उसे बहुत दिनों से इंतज़ार है, तो हमारी जो आँखें हैं ना, वो हमारी ज़ुबान का भी काम करती हैं, हमारे दिल का भी काम करती हैं। हमारी आँखें बता देती हैं कि हम खुश हैं, हम आज हमें आज किसी से मोहब्बत है, हम आज हमारी कोई मुराद पूरी हुई है। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा रिच और सबसे ज़्यादा खुश वो इंसान है जिसके पास सेहत है।
1: बिल्कुल ठीक
0: अगर
1: कहा आपने।
0: सेहत है तो डेफिनेटली कितनी भी जिंदगी में स्ट्रगल हो, हम आराम से कर लेते हैं, क्योंकि सेहत हमारा साथ देती है। हम भाग दौड़ कर पाते हैं, हम इतने इतने घंटे दिन में काम कर लेते हैं, और उसके बाद भी अगर थकावट भी होती है तो ये हौसला होता है कि एटलीस्ट हमारी तबीयत, हमारी जो हेल्थ है, वो एक ऐसे शख्स के हाथ में है, ऐसे इंसान के हाथ में है जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमारी हेल्थ पे काम कर रही हैं। बीमारी छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, नोबडी हैज सीन टुमारो, अगला पल हमें नहीं पता, कल की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं और एक मेंटोर, एक मास्टर हमारे साथ होते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं बड़ी आसान हो जाती हैं। और गुरुजी आयुर्वेद और हर्ष गुरुजी हैं, 9 जनरेशन से ये काम कर रही हैं। और आमिर, आप और हम लोगों ने तो फिजिकली देखा है कि कितने सारे लोग वहाँ पे होते हैं और हैरान परेशान आते हैं और मुस्कुराते हुए घर जाते हैं।
1: बिल्कुल जी, गुरुजी के हाथ में ऊपर वाले ने शिफा दी है। एक बार आपकी नब्ज देखेंगे, नाड़ी जिसे कहते हैं या पल्स जिसे कहते हैं, वो देख के आपको बता देंगे कि मामला क्या है, मसला क्या है। मेरे एक बहुत दरीना दोस्त पिछले दिनों वो गुरुजी के पास गए, आके वापस उन्होंने मुझे बताया कि आमिर, गुरुजी ने मुझे वो बातें बताई नब्ज देखने के बाद जो मैं महसूस कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझ में ये डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, वही गुरुजी ने बताया और एक्यूरेट, बिल्कुल 100% ठीक और दुरुस्त बात थी उनकी। पहले तशखीस करते हैं, यानी पहले डायग्नोज करते हैं, उसके बाद फिर आपको दवा देते हैं। कमाल की शख्सियत है आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, वेलकम करते हैं सर आपको।
2: नमस्ते नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग बहन जी, नमस्ते बहन जी,
0: नमस्ते गुरु जी।
2: आप लोग सही कहा है, पहले हमारा हेल्थ अच्छा हो तो सारा ही अच्छा होता है। हमारा जिंदगी में खुशी होने वाला, हैप्पी होने वाला पैसा वाला नहीं है। किसको पास हेल्थ होता है वो खुश रहता है, वो हैप्पी में होता है, खुश रहने वाला वही है। सो वैसा ये खुश कैसा होता है, हर्बल से अभी सारा सारा सारा चीजें में केमिकल हो गया था, खाना में केमिकल हो गया था, पीने में केमिकल हो गया था, वही सारा सारा जगह में केमिकल हो जाता है। ये केमिकल से हमारा शरीर को खराब करके बीमार आ जाता है।
1: बिल्कुल सही,
2: इसलिए दूर करने के लिए हमारा वो हर्बल से, मैं सच्ची सच्ची हर्बल से, केरला से, हिमालय से एंड कुलमनाल से और राजस्थान से, उधर से भी और अरुणाचल प्रदेश से मैं लेकर आता हूँ सच्ची सच्ची हर्बल्स।
1: बिल्कुल ठीक,
2: मेरा टीम के साथ जाके लेकर आके उससे बनाता है औषधा। ले तो क्या होता है भाई, हमारा शरीर को अंदर इम्यूनिटी बूस्ट खुद आ जाता है।
1: अच्छा,
2: क्योंकि अभी अभी अभी अभी मौसम में ये एक दो महीने में एलर्जी ज्यादा आता है इधर कनाडा में लोगों को।
1: बिल्कुल सही, यहाँ नंबर है आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी का, ये नंबर मिलाएंगे आप अभी के अभी, बात कीजिए गुरुजी के साथ, 437-438-3399, इट्स 437-438-3399। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, लोग बहुत डाउन हो जाते हैं, मूड बहुत डाउन चला जाता है, मूड खराब हो जाता है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता, सुस्ती इतनी पड़ जाती है कि बेड छोड़ने को दिल नहीं करता। People are not willing to work hard. ये जो disappointment है या जो मायूसी है या जो बात बात पे हर चीज पे थक जाना है, इसकी क्या वजह होती है?
2: राइट भाई, राइट भैया, उसको दो तीन वगैरह से लोगों को वैसा होता है भैया, उसको पहले क्या होता है, शरीर को अंदर ताकत कम हो जाता है, ये ताकत कम होने के कारण दो तीन है क्या, फैटी लिवर हुए तो भी ताकत कम हो जाता है, डाइजेशन पावर कम हुए तो भी वो वीकनेस हो जाता है, हम खाना खाता हो अच्छे अच्छे न्यूट्रल्स खाता हूँ वो भी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करता है, सारा वेस्टेज ही जाता है, तो इसलिए भी थकावट हो जाता है। इसमें स्पेशली बहुत लोग काम करने की जगह में थोड़ा काम करता है और वीकनेस हो जाता है, ज्यादा काम नहीं कर पाता है, और ओबेसिटी के लिए भी वीकनेस हो जाता है, बॉडी में आर्थराइटिस हो जाता है, वो जॉइंट पेन हो जाता है, वैसा वही तो भी वीकनेस हो जाता है, और शुगर वही तो भी ज्यादा वीकनेस होता है शुगर के लिए था। शुगर बॉडी में रहे तो बहुत नर्वस सिस्टम बहुत वीकनेस होता है, उसको बार बार यूरिन को ये डिफेक्ट डिफिसिटी हो जाता है, बार बार जाना पड़ता है, वैसा होने तो भी बॉडी में वीकनेस हो जाता है। वो मेन कारण क्या है, नर्व सिस्टम, मसल सिस्टम, बोन्स एंड जॉइंट सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए बॉडी में ताकत कम हो जाता है, बैठने के नहीं उठता है, उठने के नहीं बैठता है, अच्छे से नहीं सो जाता है, महसूस हो जाता है क्या है वैसा, वो क्या बोलते हैं, वो लेजीनेस आ जाता है,
0: जी सही,
2: लेजीनेस आ जाता है। इसके लिए हमारा पास अच्छा सच्ची सच्ची हर्बल से मैं बहुत लोगों को वैसा लोगों को मैं ठीक किया था इधर,
1: बिल्कुल
2: लोग, बहुत लोग आ रहा है। अब अच्छा क्वेश्चन, ये लोगों के लिए आप ये क्वेश्चन पूछा था भाई, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी 90% लोगों को ये प्रॉब्लम से हो रहा है।
1: बिल्कुल जी, सही जी। यहाँ नंबर है 437-438-3399।
0: जी, और गुरुजी के बारे में ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो कंसल्टेशन है गुरुजी का वो बिल्कुल फ्री है, कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं है, और 4 दिन गुरुजी ब्रैम्पटन में होते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 3 दिन स्कारब्रो में होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आप जिस तरफ भी रहते हैं अपने नज़दीक के शहर में जाकर गुरुजी की सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आमिर क्या होता है कि पहले एक लाइफस्टाइल अलग थी, आराम करने को मिल जाता था, घर में रहने की सहूलत थी, आजकल तो सभी लोग बाहर जाके काम करते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, आजकल रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी गुरुजी जो है पूरी पूरी हेल्प करते हैं, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी, और जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए आप गुरुजी के पास जा सकती हैं। मिरेकल हुए हैं गुरुजी की मेडिकेशन से, उनकी जो जड़ी बूटियां हैं। तो नंबर बस एक ही है, 437-438-3399। और गुरुजी जब आप आते हैं तो इतने सारे आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, प्लेजर हैविंग यू विद अस।
2: थैंक यू बेल जी,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
2: बहुत अच्छा भैया आपके साथ बात करें, बहुत अच्छा है, और मैं ये के बोलता हूँ किसी को बीमार नहीं होना, बीमार हो या तो किसी को पास भी आपको नजदीक कोई है उसको पास जाके हर्बल से ट्रीट करो, नेचुरल से ट्रीट करो, किसी प्रॉब्लम नहीं तो किसी को आपको नहीं मिलता मेरे पास आओ, मैं 100% ट्रीट करता हूँ।
1: बिल्कुल सही, 437-438-3399। बहुत शुक्रिया गुरुजी आपके टाइम के लिए,
2: थैंक यू।

0: काली ऐनक पाके नचे नी तू लगदी सोनिए। तो चलिए जी, अभी हम सोनिए की बात नहीं करेंगे, आमिर जी की बात करेंगे। उन्होंने जैसे ही हमारे अगले गेस्ट के आने की खबर मिली, उन्होंने अपना अपने ग्लासेस लगाए जो इन्होंने कांडा ऑप्टिकल से खरीदे थे और पूरे टाइम एंडोर्स कर रहे हैं कांडा ऑप्टिकल को अपने ग्लासेस लगा के। आमिर, यू लुक फैबुलस। और ये अश्विनी जी जो है ना, वो स्टाइल के मामले में, ग्लैमर के मामले में, कस्टमर सर्विस के मामले में, काइंडनेस के मामले में, मुस्कुराहट के मामले में, आपको मतलब आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाहती हूं।
1: देखिए, अश्विनी जी के हवाले से बात की जाए तो ये ग्लासेस मैंने खरीदे नहीं हैं।
0: अच्छा।
1: ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं।
0: अच्छा।
1: और यकीन मानिए, जब भी मैं ये ग्लासेस पहनता हूं तो उनकी एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट मुझे याद आ जाती है।
0: आपने मेरे लव छीने, ये मैं कहने वाली थी, आपने मेरी स्क्रिप्ट छीन ली। अश्विनी जी, ये मतलब जो ये कह रहे हैं और कुछ और ऐड कर दीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अश्विनी जी, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई डे, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू हियर ब्यूटिफुल नाइस वर्ड्स फ्रॉम वेरी रेपुटेबल सॉफ्ट रेडियो प्रोग्राम होस्ट, जो कि आप नंबर वन आपने प्रूव कर दिया है ऑलवेज, दैट यू एग्जैक्टली नो व्हाट टू से, हाउ टू से, द डिलीवरी ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ब्रॉडकास्ट, हाउ टू यू नो प्रसारित करना प्रोग्राम बड़ा जरूरी है, और उसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ एंड वेरी प्राउड बोथ ऑफ यू। तो इसलिए मैं आपको ये अमीर जी तो देखे है ही थोड़े से शरारती।
1: अश्विनी जी, मैं थोड़ा सा नहीं, मैं काफी शरारती हूँ।
0: नहीं, तो अश्विनी जी की काइंडनेस है, बिटवीन द लाइन्स आप समझ जाइए।
2: थोड़ा ऑन ये तो थोड़ा सा कहना पड़ता है ना, बात जो बोलना है
0: थोड़ा कहना पड़ता है।
2: थोड़ा सा मैंने कहा भी
1: like
2: डिस्काउंट कर दिया था।
1: डिस्काउंट कर दिया।
2: इसीलिए बिकॉज अभी कांडा ऑप्टिकल पे डिस्काउंट लगे हुए हैं, प्रमोशन लगे, तो माड़ा मोटा इनको भी दे दें।
0: फादर्स डे आ रहा है ना।
2: तो दूसरी बात है, देखिए शिवानी जी, जैसे आपने वो पंजाबी में ये बोले थे, आप तो बड़े क्यूट लग रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि आपको 15 मिनट का प्रोग्राम जरूर डेडिकेट करना चाहिए, पंजाबी में भी बोला।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बचपन
2: है। Yeah, she speaks so well, this is so nice, and I'm very thankful to the entire team and Lovey Dovey show का। तो दूसरी बात है, जो हमारे कांडा ऑप्टिकल में काफी प्रमोशंस लगे हुए हैं, सभी से विनती करूंगा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, आई एग्जाम वगैरह करवाने हैं, तो कांडा ऑप्टिकल को जरूर याद रखें। हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हमेशा होते हैं, चाहे आपको इवनिंग्स के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए या वीकेंड के लिए, वी हैव गॉट देम ऑल एंड दे आर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम विद अस, वेरी प्रोफेशनल, एंड आवर स्टाफ, शिवानी जी आपको तो पता है कि दे आर लॉन्ग टाइम विद अस एंड दे नो एग्जैक्टली how to look after the customer when they come in. And we monthly, continuously give in-house training. We invite very top, jo hamare industry ke specialist hain, unko bula ke unse aur jankari lete hain, training dete hain apne staff ko bhi, and jo manufacturers hain unko bhi invite karte hain ki apne product ke bare mein hame achhi tarah se batao, so we can pass that information to our customers. ये सारी चीजें make a very big difference. So customer get the first hand information from the supplier exactly. And so many time we bring in the suppliers. So if you are looking for any Cartier frames, you're looking for Chanel, you're looking for Bulgari, Prada, you're looking for Kumhart, Tom Ford, देखिए Dita, Burberry, ऐसे ब्रांड की बात कर रहा हूँ जो आपको नॉर्मल स्टोरों से नहीं मिल सकते। वी आर वेरी एक्सक्लूसिव टू लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड कांडा ऑप्टिकल इज बीन ट्रेन्ड 100% सर्टिफाइड टू हैंडल दोज काइंड ऑफ फ्रेम्स बाय आवर स्टाफ, बिकॉज व्हेन वी सेल वेरी हाई क्वालिटी फ्रेम we need to be trained to handle them, how to insert, how to fabricate lens in them.
0: Jee.
2: So that's why we have our own very great lab, top of the line equipment in our lab to finish product for the customer. ये बड़ा जरूरी है. एक तो अच्छी चीज लेनी, उसके बाद उसको फिनिश करके आप तक पहुंचानी, दैट्स अनदर चैलेंज एवरीबॉडी विल फेस. कैन बी बोथ पुट टुगेदर परफेक्ट वे, अदरवाइज एक चीज अच्छी हो सकती है, दूसरी खराब हो गई, सो इट्स नो गुड. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रिकमेंड व्हेन यू कम टू अस यू बाइंग ए टॉप डिजाइनर प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम्स, लेट अस फिनिश इट फॉर यू all the way to the end and dispense it for you. We stand 100% behind our product. Eye exam ke liye hamare paas jo doctors hain, whenever you come for eye exam, we guarantee 100% satisfaction, no matter what.
0: Kya baat hai?
2: Progressive lenses, single vision lenses, line bifocal, patle se patla lens, up to 1.9 index of refraction. Dekhiye, why are you saying it? Index of refraction, because index higher the refractive index, thinner the lens becomes. If somebody has a very strong prescription, we have a solution for you. Myopia control lenses for bachchon ke liye bahut hi popular, hamare paas many options now, so you could use those lenses. So bachchon ki jo prescription badhti hai wo wahin pe stop ho jayegi, and these are fact proven lenses which we have available for everybody, but only for the kids of up to age maybe 16-17. After that we don't really recommend, because this is a very growing age, and that's where if you use those lenses, it is a special technology taki aapki prescription wahan ruk jati hai.
1: Bilkul theek.
2: So those are very smart lenses hain hamare paas. Bachchon ko computer ke liye chahiye, स्कूल कॉलेजेस के लिए बच्चे जाते हैं, दे हैव डिफिकल्टी, सिर दुखना शुरू हो जाता है पढ़ पढ़ के. देखिए, पढ़ाई लिखाई तो बड़ी जरूरी है, एंड उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो इसके लिए आजकल तो कंपटीशन इतना है कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए, सो दे गेट पुट देयर फुल अटेंशन, दे नीड ऑल द हेल्प बच्चों को मिल सके ताकि उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए. दैट्स व्हाई वी हैव स्मार्ट लेंसेज विद ब्लू टेक टेक्नोलॉजी लेंसेज, ताकि उनकी आंखों के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े, उनकी आंखें दर्द ना हो, उनको सिर दर्द ना हो. सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एट कांटा ऑप्टिकल.
0: अमेजिंग.
2: इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट कम टू कांटा ऑप्टिकल, वी विल मेक श्योर यू आर वेल टेकन केयर. नंबर एक ही है 416-922-5263. इस नंबर से आप किसी भी कांटा ऑप्टिकल की लोकेशन के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं. उसके साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है kandaoptical.com, उस पे हम कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं. आई अर्ज एवरीबॉडी टू प्लीज विजिट kandaoptical.com वेबसाइट एज वेल. यू कैन सी लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, एंड ऑल्सो यू कुड बुक योर आई एग्जाम थ्रू दी this website.
0: Beautiful.
2: वहाँ पे जाके request भेज सकते हैं, and we will make sure you get the timing the way you like it.
0: क्या बात है. थैंक यू सो मच अश्विनी जी, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस. और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होती है. लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन.
2: मेहरबानी.
1: थैंक यू वेरी मच.

0: और साहब बात कारोबार की करें तो शख्सियत एक ही है जिसका नाम जहनों में सोचों में आता है। आपको बेहतरीन कारोबार दिलाएंगे और आपका हाथ थामेंगे, आपके साथ मिलके ड्यू डिलिजेंस करेंगे, पूरी तसल्ली अपनी भी करेंगे, फिर आपकी करवाएंगे, फिर ही डिसीजन बनाएंगे कारोबार के लिए, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए। मोतबर और बेहतरीन नाम है साहब हसीब शेख, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू वेरी मच अमर साहब, थैंक यू वेरी मच।
0: सवाल आपसे ये पूछना है शेख साहब कि कारोबार तो सभी करना चाहते हैं, सवाल ये है कि फिर कर क्यों नहीं पाते, वजह?
1: हौसला।
0: हाँ हौसला नहीं है। अरे अरे अच्छा, हौसला मतलब कितना हौसला चाहिए? ये कोई मतलब इतना बड़ा रिस्क तो नहीं है कि जो संभाले से संभले ना, या पैसा सारा का सारा उसी का होगा जो कारोबार करेगा, या कोई बैंक भी देगा, या कोई गवर्नमेंट भी देगी, कोई हेल्प कोई सपोर्ट भी शामिल है इस निजाम में?
1: बेहतरीन क्वेश्चन सर जी। सारे बैंक्स जो है, सब बैंक्स आपको पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि अगर आप 35% डाउन पेमेंट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है, लेकिन 35% कमर्शियल रियल एस्टेट में हर कीमत पे होना चाहिए। अगर बंदा 35% डाउन पेमेंट कर रहा है तो देर इज नो वे कि आपको ये लोन ना मिले। आप लोन क्वालिफाई कर सकते हैं, बीडीसी लोन क्वालिफाई कर सकते हैं, कैनेडा स्मॉल बिजनेस लोन क्वालिफाई कर सकते हैं, सिंपल अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं मॉर्गेज क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे पास इन हाउस टीम है जो कि हमारे अपने जो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनको वो सर्विस देते हैं और उसके लिए वो क्वालिफाई करते हैं, तो हम डेफिनेटली अपना पूरी एफर्ट्स डालते हैं कि उनको ये सर्विसेज दी जाए।
0: बिल्कुल सही, हसीब शेख का नंबर मिलाइए, ये रहा इनका नंबर, कॉल कीजिए, बात कीजिए, पूरी सलाह लीजिए, मशवरा कीजिए पूरे ठहराव के साथ, कारोबार शुरू करें। कारोबार कारोबार और कारोबार, तीन बार हुक्म कारोबार का है, चौथे नंबर या पांचवें नंबर पे जाके कहीं नौकरी है। 6479884449। शेख साहब लोग कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं जी कारोबार नहीं चल पाया, फिर दूसरों को इल्जाम देते हैं, पछतावे होते हैं? व्हाट आर द मिस्टेक्स पीपल नॉर्मली डू व्हेन दे डू बिजनेसेस?
1: असल में अमर साहब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही जो है ना वो बेस्ड ऑन जॉब है। इसमें हर बंदा चाहता है कि वो 90% लोगों का प्लानिंग होती है कि जी जो मैं रिटायरमेंट हो यानी है ना फिर मैं अपना बिजनेस शुरू कर देना।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: जैसे अब आपकी भी प्लानिंग यही है कि जब आपने रिटायर होना, हालांकि आप परसों रिटायर हो चुके हैं और
0: शेख साहब हम जब भी रिटायर होंगे इकट्ठे ही रिटायर होंगे, मुझे लगता है ये दोनों भाई इकट्ठे ही रिटायर होके वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे हम तो, और आपका वर्ल्ड टूर मेरी तरफ से ड्यू है।
1: शिवानी जी ने तो मुझे कह दिया था कि आप परसों रिटायर हो गए हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
0: शिवानी जी ने तो मुझे 5 बार रिटायर कर दिया अभी तक।
1: तो एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बेस्ड ऑन जॉब है ना, तो इसलिए लोग हम लोग रिस्क लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट करते हैं।
0: शिवानी जी शेख साहब कह रहे हैं कि मैं परसों रिटायर हो गया हूँ आपकी किताबों में।
2: कौन हूँ आप?
0: हाँ मैं रिटायर हो गया मुकम्मल।
2: शेख साहब आपको फ्राइडे के दिन कैसे पता चल जाता है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है? ये मतलब आमिर जो है ये जो कहते हैं ना उसकी इन बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ होता है जो मेरे ख्याल से आप ही समझ पाते हैं।
1: हाँ जी वो मैंने इसलिए आपको रिटायरमेंट का कह दिया क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो इनकी आज से रिटायरमेंट शुरू होगी।
2: हो गई जी बिल्कुल। और जब लॉन्ग वीकेंड के बाद का हफ्ता शुरू होता है तो ट्यूसडे से इनकी रिटायरमेंट शुरू हो जाती है।
1: हाँ जी, अब आपने इनको मिलना है तो किसी बारबेक्यू पार्टी में मिल सकते हैं।
0: ये बताइएगा शेख साहब क्या है अपॉर्चुनिटीज, कोई गैस स्टेशन बताइए, कोई ग्रोसरी स्टोर बताइए, कोई रेस्टोरेंट बताइए प्लीज।
1: हाँ जी हमारे पास ब्रैम्पटन में रेस्टोरेंट है, नॉन ब्रांडेड रेस्टोरेंट है, इस वक्त वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन, इस वक्त $45,000 प्लस बना रहा है, सेल है उनकी पर मंथ की, बेहतरीन लोकेशन, फूड कोर्ट लोकेशन है। अगर आपने ऐसी लोकेशन लेनी है तो डेफिनेटली बहुत से लोग चाह रहे हैं कि अभी हम अपना ब्रांड अपनी चीज को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ऐसी ऑप्शन को अपने हाथ से जाने ना दीजिए। बाकी रह गया सेकेंड ऑप्शन, अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्रांडेड की चीजें हैं, हमारे पास शवरमा है एक ब्रांडेड आया हुआ है, अगर आपने वो लेना है उसकी तकरीबन एनुअल सेल के बाद नेट प्रॉफिट जो अबाउट 15,000 पर मंथ है।
0: तो
1: ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं जिनका आप बेनिफिट उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, आपको कॉल करनी होगी मुझे। और हमारे पास अगर गैस स्टेशन है, अगर आप गैस स्टेशन बाय करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक स्कूल है, पूरा स्कूल है जनाब, पूरा स्कूल है, वहाँ पे पीछे ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, बेसबॉल ग्राउंड, हर चीज है वहाँ पे, इस वक्त बंद है, चैटम के अंदर है, जीरो जीरो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर अवेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। देखिए बहुत से लोग अमित भाई सोच रहे हैं कि बिजनेस करना है, आज फ्राइडे है कल सैटरडे है, बजाय ये कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कॉल करें, एक ओपिनियन लें, बेशक डिसीजन आप साल बाद बनाएं, दो साल बाद बनाएं, कम से कम आप ओपिनियन लेने के लिए एक अपॉइंटमेंट बना दें, इन पर्सन आके मिलें। मैं आपको इस बात की एश्योरिटी करता हूं कि आपका विजिट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ये मेरी आपके साथ एश्योरिटी है।
0: अच्छा मशवरा, बजाय इसके कि आप वीकेंड को जाया करें, शेख साहब के पास जाएं, बात करें, प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, तामीरी, अच्छी प्रोग्रेसिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं और आपको बिजनेस दिला देते हैं, हेल्प करते हैं आपकी फंड्स जनरेट करने में, हेल्प करते हैं बैंकिंग के हवाले से, जो निज़ाम है ये जो बैंक से हेल्प मिलती है आपको उसमें आपकी सपोर्ट करेंगे कि कैसे वो फंड्स लेने। शेख साहब का नंबर मिला है 6479884449, इट्स 6479884449। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: और शरारत गाने के साथ छोड़े जाते हैं आपको, और जिंदगी में शरारत बड़ी जरूरी है, कुछ ना कुछ बचपना बड़ा जरूरी है। गुलजार साहब कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। बहुत समझदारी भी इंसान को बेनूर, बेरंगत और बेमजा बना देती है, राइट? और इसी के साथ मैं शिवानी अपने को होस्ट आमिर के साथ लेती हूँ आपसे इजाजत। होती है आपसे मंडे को मुलाकात। रखिएगा अपना बेहद ख्याल। किसी भी जानकारी के लिए हमसे रब्ते का नंबर है 416-303-3639। दैट्स 416-303-3639। हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार।
1: और इस पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि जिंदगी अगर आपको कभी रूठी हुई, नाकाम, वीरान, उजड़ी हुई और बोसीदा सी महसूस होने लगे या नजर आने लगे, तो जिंदगी को अपने चार सू बिखरे हुए मंजरों में तलाश कीजिए। ये ओस के कतरों में सुबह सुबह फूलों को चूमती हुई जिंदगी, ये सुबह सुबह हल्के सुर्ख रंग के निकलते हुए सूरज में पिन्हा जिंदगी, ये दरख्तों के पत्तों की सरसराहट में मौजूद जिंदगी, ये बहार के मौसम के पहले हवा के झोंके में पोशीदा पिन्हा छुपी हुई जिंदगी, ये हवा के झोंकों में लबरेज जिंदगी, ये आंधी तूफानों के बाद थमे हुए खामोश ठहरे हुए मौसम में छुपी हुई जिंदगी, ये किसी बच्चे की मासूम सी मुस्कुराहट में छुपी हुई जिंदगी, और ये किसी की आंखों की चमक में छुपी हुई खूबसूरत हैरत अंगेज जिंदगी। इसका मजा लीजिए, इससे लुत्फंदोज हों, आपको जिंदगी से प्यार हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तुफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे यू, आई लव यू।

0: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
4: Rano, ready!
5: Advertise your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्डवाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000. Best South

0: एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियंस इज द बेस्ट।
1: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: कैश पॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स वॉट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवॉन्टेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000। बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर, जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कार्बरो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कार्बरो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियंस is the best।
3: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves।

your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सीयूस एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
3: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज़, व्यू, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, और बहुत ही प्यारा सा गीत बोलेया फ्रॉम द मूवी सुल्तान, हमारे लिसनर की रिक्वेस्ट थी, जिससे हमने दिन की शुरुआत कर ली है। बाहर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट अबाउट 16 टुडे, रेन लाइकली टुमारो मॉर्निंग, एंड सनसेट 8:44 PM, नाइस एंड क्लाउडी, ब्यूटिफुल सनी क्लाउडी डे, एंड मिनिमम टेम्परेचर्स विल हिट 10 टुमारो, 80% चांस ऑफ रेन, 12 डिग्री मैक्सिमम, 8 मिनिमम, एंड संडे को 17 एंड 11 विद अ लिटिल बिट ऑफ रेन एक्सपेक्टेड एज वेल, एंड सम मिड 20s वाला वेदर अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। एंड 12:15 बजे हेडलाइंस, हमारी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का आज बॉलीवुड फ्राइडे है, जहां पर गीत संगीत एक के बाद एक लाइनअप आपके लिए किया हुआ है ऑल द वे टिल 2 पीएम। स्पॉन्सर्स के मैसेजेस, द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी, जो कि बहुत ही अमेजिंग डील्स आपको ऑफर कर रहे हैं। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। आई एग्जाम्स के लिए डॉक्टर इज अवेलेबल 7 days अ वीक। And ikracenter.ca, Eid ul Adha prayer Wednesday, May 27th ko hai. First prayer is at 8 a.m. and second prayer at 10 a.m. Separate arrangement for ladies, free parking hai yahan par. And Mirage Banquet Hall and Convention Center pe aapne pahunchna hai. And 1917 Albion Road. Zyada jankari ke liye 416-744-2099. This is the prayer announcement for Eid ul Adha and proudly sponsored by All Death Solutions. Say Siddiq bhai, 416-671-0577 par aap unse sampark kar sakte hain in case you're looking for more information. This is for Wednesday, May 27th, Eid ul Adha ki jo prayers hain. ikracenter.ca par jaakar bhi jankari aap पा सकते हैं। विन लाइफटाइम ट्रेडिंग 905-206-1008। हर सैटरडे आफ्टरनून फ्री सेमिनार होता है, आप अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लें 12:30 से 3:30 बजे के बीच बीच, एंड मेक श्योर प्लीज डोंट वॉक इन, इट्स अ फ्री सेमिनार। विन लाइफटाइम ट्रेडिंग 905-206-1008। गो ट्रेन की तरफ से नो ट्रेन सर्विस ऑन लेक श्योर वेस्ट बिटवीन ऑल्डरशॉट एंड यूनियन दिस वीकेंड ड्यू टू ट्रैक वर्क, जो कि कैरी ऑन होगा, एंड नो ट्रेन ऑन द बेरी लाइन फ्रॉम एलनडेल गो टू यूनियन दिस वीक ऑल्सो, जहां पर ट्रैक वर्क वहां पर भी किया जाएगा फॉर दिस इंटायर वीकेंड। 71-year-old पीटरबरो मैन विद टाइज टू सेंट कैथरीन्स चार्ज विद लिस्ट ऑफ सेक्स क्राइम्स, नायग्रा की पुलिस की तरफ से ये खबर जो है सामने आई है। गॉर्डन गर्ल चार्ज विद सेक्सुअल असॉल्ट एंड इंटरफेरेंस, चाइल्ड पोर्न चार्जेस भी इस शख्स पर लगे हैं, पुलिस की फिलहाल जांच शुरू हो गई है। और ग्रास प्राइसेस की बात की जाए, 9 सेंट अ लीटर ड्रॉप ऑन फ्राइडे विच इज टुडे, और फर्दर 4 सेंट्स ड्रॉप कल देखने को मिलेगा एट द गैस पंप्स, बट देन आफ्टर संडे स्टार्टिंग मंडे प्राइसेस विल बी गोइंग अप अगेन। वेदर रेनी, कूल एंड विंडी रहेगा टुमारो, टेम्परेचर्स राइज टू 17 डिग्री अंडर ओवर कैस्ट स्काई ऑन संडे। चलिए, अल्बर्टन्स वोट करने वाले हैं इन अक्टूबर ऑन वेदर दे वांट अ बाइंडिंग रेफरेंडम ऑन सेपरेशन, ये एडमिंटन की तरफ से खबर आई है, और देखते हैं कि आगे चलकर क्या एग्जैक्टली होता है इसका आउटकम। एंड बहुत ही यहाँ पे लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, और 12:15 की हेडलाइंस हमारी बिल्कुल रेडी है, एंड आते हैं बहुत ही जल्द वापस। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055, जिस पर आप कॉल करके अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट जरूर पहुंचा सकते हैं हम तक। काइल बुश, अ 2-टाइम कप सीरीज चैंपियन, हैज डाइड एट 41, फैमिली का कहना है कि ही हैड सिवियर इलनेस एंड वेरी वेरी सैड न्यूज। एपी रिपोर्ट करता है, बुश वॉज टेस्टिंग अ रेसिंग सिमुलेटर वेंसडे वेन ही बिकेम अनरिस्पॉन्सिव ड्यूरिंग दैट एंड ही पैस्ड अवे, ही वॉज ओनली 41। चलिए, शॉर्ट ब्रेक, आते हैं बहुत ही जल्द वापस 12:15 बजे हेडलाइंस लेकर।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर. ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर. वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
1: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
2: ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 905-405-2828।
3: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine or Denison Street, Markkampur,
4: doing business your way.
3: Of Wayne's Auto Group.
5: Good afternoon, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
6: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Asian's popular South Asian clothing and textiles store, Don Valley North Hyundai, Clear Optical by Varun Kanda, Rajdhani Sweets and Restaurant, McVean Dental Care, Kavya Homeo Care, Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. Iran war ki wajah se fertilizer crunch ke baad farmers turn to human urine. Strait of Hormuz shutdown se oil supply crisis trigger hua, red zone warning jari. डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार 5,000 यूएस ट्रूप्स जाएंगे पोलैंड। आर्म रेबेलियन चार्जेस के तहत ईरान ने दो लोगों को एग्जीक्यूट किया, लिंक्स टू सेपरेटिस्ट्स। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी की डब्ल्यूसी वर्दी फीफा डील, $50 टिकट्स फॉर 1,000 न्यूयॉर्कर्स। ट्रंप ने एआई ऑर्डर को साइन करने वाले डिसीजन को पोस्टपोन किया है और कहा कुछ एस्पेक्ट्स पसंद नहीं आए। ट्रंप ने ईरान वॉर से यूरेनियम को सीज करने की कसम खाई और कहा नॉट गोइंग टू लेट देम हैव इट। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि इंडिया हमारा

228 लोग मारे गए थे। लोकल समाचारों में स्कारब्रो में हुए इम्पेयर ड्राइविंग क्रैश से एक शख्स की मौत हुई। टोरंटो पेरेंट्स ने रैली किया टू ब्लॉक हाउसिंग डेवलपमेंट। शॉपलिफ्टिंग बस्ट में पील पुलिस ने 550 चार्जेस फाइल किए अगेंस्ट 65 सस्पेक्ट्स, बोले नॉट सिंपल रिटेल थेफ्ट। सोफिस्टिकेटेड गिफ्ट कार्ड स्कैम में दो लोग हिरासत में लिए गए और नैसकार चैंपियन काइल बुश डेड एट द एज ऑफ 41। हाईवे 401 closes eastbound collector lanes in Mississauga and CN Tower will take part in doors open this weekend. भारतीय समाचारों में पंजाब पुलिस ने सस्पेक्टेड स्पाई नेटवर्क को बस्ट किया। सीसीटीवी कैमरा यूज्ड टू मॉनिटर आर्मी मूवमेंट। समिट के बाद माउंट एवरेस्ट से नीचे आते वक्त दो इंडियन क्लाइंबर्स की मौत हुई। उमर खालिद पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट सीकिंग एंट्रम बेल। फरीदाबाद कपल को अरेस्ट किया गया फॉर डिफ्रॉडिंग पीपल ऑफ 31 करोड़ रुपीज। और वायलेंस और कोर्ट बैटल के बीच 85% बांद्रा ईस्ट डिमोलिशन वर्क कंप्लीट हुआ। नीट लीक मामले में अब तक 9 अक्यूज को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। मैराथन मीट पर पीएम मोदी ने मिनिस्टर्स को दिया मैसेज, फॉरगेट द पास्ट, फोकस ऑन द फ्यूचर। हिंदू साइड की हुई बड़ी जीत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्प्यूटेड भोजशाला कॉम्प्लेक्स को डिक्लेयर किया अ टेम्पल दैट वॉज एक्चुअली डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती। मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को किया चैलेंज। पार्ले ऑफिशियल ने वायरल मेलेडी क्लिप को लेकर कहा, गॉट द हुक, नीड टू बिल्ड ऑन इट नाउ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्ले प्रोडक्ट्स ने पीएम मोदी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी के वीडियो को मैसिव ब्रांड पब्लिसिटी बूस्ट बताया फॉर मेलेडी टॉफीज। ट्विशा शर्मा की मदर इन लॉ पहुंची अदालत, बोली क्लिप्स चैट्स आर ऑल फैब्रिकेटेड। बंगाल में इलेक्शन से पहले पीएम मोदी को झालमुड़ी बेचने वाले शख्स को पाकिस्तान बांग्लादेश से मिली थ्रेट्स। ट्विशा शर्मा की सेकेंड ऑटोप्सी अदालत से क्लियर आई, हस्बैंड विड्रॉज द बेल प्ली। दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से, फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया पीएम शरीफ टू विजिट चाइना फ्रॉम May 23 टू May 26। मुजफ्फराबाद कैंपस के बाहर प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल को शूट किया गया। ISPR के अनुसार केपी के IBOs में 23 मिलिटेंट्स मारे गए जिसमें टेररिस्ट कमांडर भी शामिल था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में कई ऑपरेशन कंडक्ट किए। फोर्सेज ने कई अंडरग्राउंड टनल्स को तबाह किया था। वेपन्स और एमिनेशन भी रिकवर किए गए। कैटल मार्केट्स के लिए इस्लामाबाद ने ईद उल अदा के ट्रैफिक प्लान्स को रोल आउट किया। स्पेशल ट्रैफिक प्लान्स के अंडर 350 से ज्यादा ऑफिसर्स ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। ईद उल अदा के दौरान पूरे देश में हीट वेव कंडीशंस देखने को मिलेंगी। पीएमडी ने कहा मर्करी लाइकली टू गो 5 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस अबव द नॉर्मल। मेट ऑफिस ने अथॉरिटीज को सलाह दी टू रिमेन विजिलेंट। पीएम शरीफ ने चाइना की लगातार सपोर्ट को लेकर कहा, चाइना ने हमेशा से हमारा साथ दिया है, ऑलवेज स्टूड लाइक अ रॉक। पाकिस्तान चाइना मार्क 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। प्रेसिडेंट जरदारी ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप को ट्रिब्यूट दिया। अदालत ने ड्रग क्वीन पिन अनमोल अलायस पिंकी को जुडिशियल रिमांड में भेजा इन मल्टीपल केसेस। और पीएमडी के मुताबिक सिवियर हीट वेव लाइकली इन सिंध विद मर्करी अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। स्पोर्ट जगत से, पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स इन सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। अलाउंस रिड्यूस टू 355 रुपीज ओनली, प्लेयर्स ने की कंप्लेंट। सिलेक्टर किरण मोरे ने ऋषभ पंत को के लीन पैच को लेकर कहा, देयर विल डेफिनेटली बी अ ग्रेट कमबैक। चेन्नई सुपर किंग पेसर अंशुल कंबोज ने राशिद खान को सरप्राइज किया टू स्क्रिप्ट अनवांटेड आईपीएल रिकॉर्ड। 2026 आईपीएल सीजन में कंसीडेड 34 सिक्सेस, द मोस्ट बाय एनी बॉलर इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। बॉलीवुड खबरों से, सिंगर शान की वाइफ ने डिप्रेशन को लेकर ओपन अप किया। क्रेडिट शान सपोर्ट फॉर द हार्डेस्ट फेज ऑफ हर लाइफ। सौरव गांगुली बायोपिक दादा में राजकुमार राव को सस्वता चैटर्जी अब ज्वाइन करेंगे। बिग रिलीफ फॉर इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स। सऊदी अरब ऑफर्स 60% इंसेंटिव रिबेट्स टू अट्रैक्ट प्रोडक्शंस इन द किंगडम। एंड एक्टर रोनित रॉय ने फ्रॉडस्टर्स को वार्न किया अगेंस्ट यूजिंग हिज नेम टू सीक मनी फ्रॉम विमेन और कहा, कॉप्स आर कमिंग फॉर यू। लीगल इशू के चलते वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च कैंसिल हुआ। एक दिन के फेलियर के बाद आमिर बोले, आई गो इनटू डिप्रेशन व्हेन अ फिल्म फ्लॉप्स। और फिल्म चांद मेरा दिल ने बॉक्स ऑफिस पर आज दे दी है दस्तक। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और ऐसा लगता है कि बिफोर द पेंडेमिक आयुष्मान's करियर वॉज डूइंग रियली वेल, लेकिन क्या पेंडेमिक आया उसके बाद कई एक्टर्स के करियर्स ने डिप देखा है। एंड इसी वजह से

0: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड जॉन स्ट्रीट, Markham. Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
4: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: जोशी।
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markampur,
2: doing business your way.
1: Wayne's Auto Group.
3: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। इस सेगमेंट को जरा ध्यान से सुनेगा बिकॉज दिस इज दैट सेगमेंट फ्राइडे के दिन जहां पर फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर द वन एंड ओनली अमन मेहता जी इंडस्ट्रियल लाइन से हमारे साथ होते हैं। ऑफिस इज लोकेटेड एट 241 क्लेरेंस स्ट्रीट, यूनिट 26 इन ब्रैम्पटन। और जब अमन जी आते हैं तो हम सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और फाइनेंसेस के बिना तो भाई ज़िंदगी अधूरी है। एक तरफ प्यार, एक तरफ फाइनेंस, और कई बार प्यार भी नहीं टिकता अगर फाइनेंस आपके टिके हुए ना हो। इसी वजह से हर फ्राइडे हम गुजारिश करते हैं अमन जी को कि भैया ऑन एयर आइए और हमें एजुकेट करें ताकि प्यार भी सलामत रहे और फाइनेंसेस भी सलामत रहें। अमन जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
5: सनी जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, द होल सीएमआर फैमिली एंड माय लवली लिसनर्स आउट देयर एंजॉयिंग दिस वेदर। यू नो, ए रोमांटिक वेदर है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गर्मी भी ना हो
4: जी,
5: बहुत ज्यादा ठंड भी ना हो, और यू नो, बारिश का मौसम हो, पकौड़े फ्राइडे, यू नो, एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग।
4: पकौड़े फ्राइडे और प्यार मोहब्बत भी सलामत रहे।
5: वो तो देखिए, जब मैंने बोला रोमांटिक तो वो तो बीच में आ ही गया ना ऑब्वियसली। एंड द वे यू सेड, यू नो व्हाट आई ऑलवेज से, द वे यू प्रेजेंट थिंग्स, इट वो आंखों के आगे चीज रहती है।
4: हाँ, पूरा प्यार, मतलब पुरानी गर्लफ्रेंड आंखों के सामने आई है या कुछ आने
5: नहीं सर, उसके साथ साथ फिर सितारे और चिड़िया भी सामने आती है आंखों के आगे। तो उसको अवॉइड करें, जो अभी वाले हैं करंट स्पाउस है उसी को याद करें। बेटर फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर लॉन्जिटिविटी
4: एंड बेटर फॉर द फाइनेंसेस टू।
5: जी सनी जी,
4: मैं नंबर अमन जी का दे दूं दोस्तों, प्लीज नोट कर लीजिए। दिस नंबर विल गो विद यू इन योर लाइफ फॉर अ वेरी वेरी वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और आज ये नंबर जब आप नोट करेंगे अमन मेहता जी का, आप मुझे और अपने आप को थैंक करेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 416-707-9900, 416-707-9900। क्विकली मेंशन दोस्तों यहां पे करना चाहता हूं, जो चीजें मैंने 5 साल पहले करनी थी, 10 साल पहले करनी थी, 15 साल पहले करनी थी, मैंने नहीं की, आज मैं रिग्रेट करता हूं। अमन जी कई बार मुझे 5 साल पहले भी कुछ चीजें कहते थे, पेंडेमिक से पहले भी कहते थे, एंड आई वुड जस्ट लिसन एंड ओवरलुक। एंड नाउ जब आपकी उम्र हर महीने हर दिन बढ़ती है आगे, तो फिर आपको याद आता है, यार मैं सुन लेता, दिस इज द मनी आई वुड हैव इन द बैंक, जो मैं मतलब मुझे पता भी नहीं होता कि इतने हो गए। तो चलिए, बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक सबसे होती है, बट खासकर जो फैमिलीज यू नो इन देयर 30s and 40s जो हैं, उनसे क्या हो जाती है, वो आज अमन जी से बातचीत करेंगे। अमन जी, व्हाई डू यू सी एज द सिंगल मोस्ट, व्हाट डू यू सी एज द सिंगल मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक पीपल मेक इन देयर प्राइम अर्निंग ईयर्स, जो कि मैंने की है वो मिस्टेक।
5: सनी जी, पहले मैं आपका वो एड्रेस करना चाहूंगा टॉपिक की, यू नो, वी ऑल लिसन टू, बट एट राइट टाइम कम्स द राइट थिंग। और जो सबसे बढ़िया टाइम शुरू करने का है वो है आज, क्योंकि आई नो वी ऑल रिग्रेट कि हमने, अगर आई विश आई न्यू दिस थिंग, वो वही प्रोवर्ब हो जाती है कि इफ आंटी हैड मुस्टैच शी वुड हैव बीन एन अंकल, बट आंटी इज आंटी। सो मैं ये कहता हूँ कि यू नो, इनस्टेड ऑफ फीलिंग बैड फॉर एनीथिंग फॉर द पास्ट, आज इसको देखिए, डोंट स्टार्ट टुडे टू, बट एनालाइज तो कीजिए। कम से कम बैठ के सोचिए कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, क्या वो वाकई डिफरेंट करती हैं? कुछ कम्युनिटीज मेहनत कर रही हैं और कुछ कम्युनिटीज बहुत रिच हैं, क्या डिफरेंस है? उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, वो भी 8-10 घंटे काम करते हैं, तो कहीं तो डिफ्रेंशिएशन है ना। वो डिफ्रेंशिएशन है आपकी अप्रोच में। सो जब आपने पहला क्वेश्चन पूछा है 30s and 40s वाला, सनी जी, सबसे जो बड़ी मिस्टेक 30s and 40s में हम करते हैं, वी आर टू यंग टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ लाइफ, और हमें लगता है कि हम कभी रिटायर नहीं होंगे, वी आर सुपरमैन्स, एंड हम कल सेविंग करेंगे, वो कल कल कल कभी नहीं आता है, एंड दैट इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैपेंस।
4: जी, इज इट दैट कई बार जब वो कल आता है अमन जी, तो बंदे की उम्र 57 हो जाती है?
5: बिल्कुल सनी जी, ये जो आपने पॉइंट ऑन नेल ऑन किया ना आपने, यस इट हैपेंस, बट मैं फिर भी कहता हूँ 57 पे आके भी आप कुछ तो बेटर कर सकते हैं. हाँ, आप रिटायरमेंट से 5 दिन पहले मुझे फोन करके बोले कि अमन मेरी रिटायरमेंट आ रही है एंड आई वांट $1 million, तो मुझे शायद आपसे 1.2 million चाहिए होंगे क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन भी उसमें काउंट करनी पड़ेगी.
4: सो
5: इट डजंट इवन मेक सेंस टू टेक दैट रिस्क. कहते हैं ना, जब एयरप्लेन चलता है ना सनी जी, तो जो पैराशूट है वो जमीन पे चेक होते हैं, हवा में नहीं, क्योंकि हवा में तो इट इज व्हाट इट इज, राइट? सो यू कैन टेक अ चांस. सो आप ये जो क्वेश्चन है अपने आप से पूछे, किसी से नहीं पूछे, ना फाइनेंशियल प्लानर को पूछे, ना रेडियो पे पूछे, आप अपने आप से पूछे, आर यू रियली इक्विप्ड फॉर दैट? इफ नॉट, वॉट इज स्टॉपिंग यू?
4: एग्जैक्टली. एंड अमन मेहता जी का दोस्तों नंबर प्लीज नोट करें, 416-707-9900. बहुत साल पहले, प्रॉबेबली अ डेकेड अगो, मुझे अमन जी ने यह कहा था कि भाई और कुछ नहीं, क्योंकि आमतौर पे हम रोते रहते हैं ना कि भाई पैसे नहीं जुड़ रहे, या पैसे जुड़े हैं, आई माइट नीड इट फॉर दैट रेनी डे, आई माइट नीड इट फॉर दिस. कई बार सिर्फ $100 महीने का, $50 महीने का, आई मीन कम ऑन, आई थिंक वी कैन डू दैट. वो किस तरह से अक्यूमुलेट होकर किस तरह से कहां पहुंच जाता है हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो हमने की ही नहीं, वो अब महसूस होता है, कई लोगों को होता होगा. अमन जी, व्हाई इज दिस डेकेड सो क्रिटिकल? व्हाट मेक्स द 30s एंड 40s डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टेज ऑफ आवर लाइफ?
5: सनी जी, ये डेकेड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, गोइंग बैक, इस डेकेड से पहले आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं.
4: yeah.
5: और आपके पेरेंट्स इस डेकेड में थे जहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप थे, दे वर मेकिंग मनी, अर्निंग हार्ड, और बहुत सारे खर्चे थे, मॉर्गेज, बच्चे. लेकिन जैसे ही आप सेटल हुए, अब वो सेटलमेंट जोन में चले गए हैं, दे आर ओके. सो इफ आई लुक एट योर पेरेंट्स नाउ, देखिए वो इजी हैं, उनको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए. आपके लिए ये क्रिटिकल क्यों है 30s 40s में? दिस इज द टाइम वेर यू हैव द मोस्ट ऑब्लिगेशंस एंड द मोस्ट पावर टू मेक मनी, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड एवरी ईयर योर पावर्स विल कीप ऑन गोइंग डाउन. वो डिफ्लेट होती है, जैसे आपकी एनर्जी भी कम होती रहती है जैसे जैसे रिटायरमेंट की तरफ आते हैं.
4: yeah.
5: अगर मैं 65 पे बंदे को बोलूँ आप एक नई जॉब करें 12 घंटे की, तो शायद इट विल बी स्टुपिडिटी टू आस्क हिम टू डू दैट. बट 30s में दिस इज द बेस्ट जोन, बेस्ट एरिया, जहां पर आपके एक्सपेंसिज हाई हैं लेकिन आपकी इनकम भी हाई है और आपके पास राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए.
4: बिल्कुल. और ये राइट टाइम है दोस्तों कि फोन उठाएं सेगमेंट के बाद, टॉक टू अमन मेहता जी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी लाइक राइट अवे यू नो गेट ऑन दैट थिंग, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट नो अबाउट. हमें कई चीजों के बारे में पता चलेगा जब अमन जी के साथ हम बैठेंगे, समझेंगे, और वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि भाई आप इतना भी कर लो तो दिस इज व्हाट द मनी यू विल बी लुकिंग एट इन योर 50s, 60s, or 70s. 416-707-9900. Aman ji, what should families be focusing on right now if they want to be in a strong position at retirement? Exactly jo main abhi keh raha tha ki bhai kis cheez ko hame dhyan dena hai.
5: सनी जी, हम लोग सब गूगल अपना सोशल मीडिया पे जाते हैं, वॉरेन बफे ये कहते हैं, वो इन्वेस्टर ये कहते हैं. अगर आप देखेंगे तो एक चीज डाइवर्सिफिकेशन हर बंदा बोलता है, डाइवर्सिफाई करो, विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट. उसके अलावा मैं दो चीजें आपको ऐसी बताने चाहूंगा जिन्हें हम रामबान कह सकते हैं, और आप लिख लीजिए लाइफ में. आप एनालाइज करेंगे, अगर आपने ये दो चीजें फॉलो की है ना, तो आप कभी भी गलत नहीं होते. नंबर वन, प्रॉफिटिंग. कितने लोग हैं जिन्होंने हाई टाइम्स में प्रॉफिटिंग की थी? जिन्होंने की थी वो अब स्माइल दे रहे होंगे, क्योंकि यू नो व्हाट, दे मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट. देखिए, पेपर पे गेन और पेपर पे लॉस ना आपको खुशी देना चाहिए और ना आपको दुख देना चाहिए, अनलेस यू आर कैशिंग इट आउट.
4: Exactly.
5: यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है थर्ड, वो आता है कंपाउंडिंग का. द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग. सनी जी, अगर आप 35 पे $500 से शुरू करते हैं ना सेविंग, और 45 पे, तो 10 साल का डिफरेंस जो है 2 लाख का फाइनल डिफरेंस आपके अकाउंट में लाता है ऑन द कंजर्वेटिव साइड. और अगर मैं बात करूं डबल डिजिट्स की, जो हम पिछले 1.5 साल से, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट इवन दो आई कमिट टू 7-8%, वी बीन डूइंग सम डिसेंट डबल डिजिट रिटर्न्स, विच इज काइंड ऑफ, मैं ऑनर बोलना भी नहीं चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू ल्योर एनीबॉडी इनटू इट, बट राइट अप्रोच एंड राइट फंड्स एट द राइट फाइनेंशियल प्लानर्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो अर्ली स्टार्ट करना, कंपाउंडिंग करना इज द की. दैट इज व्हाई आई से 30s एंड 40s इज वेरी इंपॉर्टेंट.
4: मैं तो कहूंगा दोस्तों 20 से ही शुरू कर लें, बिकॉज माई गॉड, आई मीन
5: सनी जी, तभी आपको बेस्ट होस्ट कहा जाता है, क्योंकि पॉइंट ये है कि आपने उसमें से क्या क्या फाइनल दिया है, एंड देन यू नो व्हाट, दैट्स वेयर यू टेक द टेक. टेक इज मैंने क्या सीखा है। तो आपने सही कहा, अगर आप एक यंग बच्चे को 18 से आदत डालते हैं ना सेविंग की, आप अपने आप को तो ब्लेस करेंगे ही करेंगे। जो आप इनकम्स की बात कर रहे हैं, यू कैंट इवन इमेजिन।
4: एब्सोल्युटली, आई रियली कैन इमेजिन, बिकॉज वो मिस्टेक तो अपने से हुई है। 416-707-9900, अमन मेहता इंडस्ट्रियल अलायंस के साथ काम करते हैं, क्लोज टू अबाउट 20 years ऑफ हिज एक्सपीरियंस। टेक एडवांटेज दोस्तों, ये मतलब फ्री की एडवांटेज है जो आप ले सकते हैं बिना किसी ऑब्लिगेशन के। मीट अमन मेहता जी एंड शुरुआत करें कहीं से भी, छोटे से अमाउंट से भी। लेकिन जैसे अमन जी बार बार कह रहे हैं, उसमें इनका क्या फायदा है अगर आपके बच्चे ने 18 ईयर की उम्र में शुरू किया, एंड व्हेन योर चाइल्ड इज 60 और 65, आई मीन ही इज गॉट hundreds and hundreds of thousands of dollars sitting, you know, waiting at that point, जहाँ पे retirement में उतने पैसे की ज़रूरत होती है, keeping in mind inflation and everything that comes along with it. Talk to Aman Mehta, 416-707-9900. Sum up करने से पहले अमन जी, this will be the last question आज के topic का। Inflation has been a big topic over the last few years, but how does it actually affect someone's retirement savings as well?
5: बहुत प्यारा टॉपिक सनी जी, इन्फ्लेशन। आई थिंक एक ऐसा स्लो डिजीज है जो लोगों को आइडिया भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे खाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज की डेट में 3% इन्फ्लेशन है। सो एवरी 24 years कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल्स। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपको आज $80,000 रिटायरमेंट के लिए चाहिए और आपके पास हैं, तो 24 साल बाद वो $40,000 रह जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि जो आप दूध की थैली आज खरीद रहे हैं, आप उससे हाफ ले सकेंगे। सो उस स्टेज में जाके जब आप एनालाइज करते हैं, यार मेरा पैसा गया कहाँ, दैट इज बीइंग ईटन बाय इन्फ्लेशन। सो लाइंग कैश, नॉट इन्वेस्टिंग प्रॉपरली, नॉट स्टार्टिंग अर्ली, आर ऑल्सो टॉप ऑफ दैट। तो आप सोचिए, अगर इन्फ्लेशन भी आ रही है, आप प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेट्स से सनी आपके पैसे पे 3% की रिटर्न आ रही है, सो नेट रिटर्न पता कितनी आपकी? जीरो, बिकॉज इन्फ्लेशन को आप निकाल दें। तो आपको कम से कम 6-7% मिनिमम रिटर्न चाहिए फॉर योर मनी टू ग्रो। सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है बट दे आर नॉट डूइंग वेल, कॉल मी एंड आई कैन शो यू अ डिफरेंस। एंड एक छोटा सा बस क्विक वो देना चाहूंगा कि अभी लास्ट year one of my clients came in and he said, Aman, I have some money sitting down in my bank, around 90,000, what should I do? So maine bola, aap ek kaam karein, ek saal tak isko haath nahi lagayenge hum. Ab wo 90,000 humne invest kiye, sunny, hum do baar usme se profiting kar chuke hain 30,000 ki, aur aaj bhi wo 90,000 unke paas bank mein pade hain. Aur main ye sirf fadiyan hi maar raha hu sunny bhai. You can come to my office, you can ask me, Aman, can you show me returns? 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, लकीली 20 साल हो चुके हैं, तो मैं आपको 20 साल की रिटर्न दिखा सकता हूँ जो मैंने अपने हाथ से की है। एंड आई कैन प्रूव दैट 7-8% एवरेजिंग विद अ गुड मार्केट एंड अ गुड फाइनेंशियल प्लानर इज वेरी मच अचीवेबल। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप बात किससे करनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, यू वॉन्ट टू डिस्कस, अगेन नो ऑब्लिगेशन सनी जी, मैं ऑनर बोलता हूँ, नो ऑब्लिगेशन। बट इस मंथ से मैं ये एक बड़ी अच्छी कॉन्टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं गुड पीपल। सो जो लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, name in a draw and by the end of the month we'll give 2 winners $25 pizza certificate.
4: Kya baat hai dosto, take advantage of meeting Aman Mehta ji and bhai inke 20 saal ka experience aapke किस तरह से काम आएगा और कितना आपका फायदा करके जाएगा, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अमन जी से मुलाकात करेंगे। 241 Clarence Street in Brampton, Unit 26, अमन मेहता इंडस्ट्रियल लाइंस, 416-707-9900, जहाँ पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, प्लानर हैं अमन जी, वहाँ पर मीडिया में भी एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। 10 कदम वॉज अ शो, दैट वॉज अ अमेजिंग शो, और आप बिलीव नहीं करोगे अमन जी, राइट नाउ एज यू आर ऑन एयर, फरजाना जी का मैसेज आया है, अमित जी का मैसेज आया है, और हमारे एक लिसनर हैं मनीष, इन तीनों का मैसेज आया है, व्हेन इज अमन जी कमिंग बैक विद 10 का दम ऑन सीएमआर। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ लव यू स्प्रेड?
5: सनी, आई ऑलवेज अप्रिशिएट, माय जर्नी ऑन 101 वाज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं बड़े, देखिए कहते हैं ना कि हमेशा अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड यू बीन ऑलवेज माय मेंटर इन दिस।
4: अरे,
5: सो आई रियली अप्रिशिएट दैट एफर्ट, सिंसियर एफर्ट यू पुट इन मी। बट आज की डेट में मुझे ये खुशी है कि मैं सनी भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वेदर एज ए फाइनेंशियल प्लानर, एंड आई एम थैंक्स टू ऑल दिस लवली लिसनर्स जो अभी भी याद करते हैं। यू नो, आई स्टिल अप्रिशिएट, आपने देखा होगा मैंने लास्ट वीक एक पोस्ट डाली थी कि आई स्टिल मिस बींग ऑन 101 विद यू गाइज एंड टॉकिंग टू पीपल बिकॉज दैट वॉज माई पैशन। बट वेरी सून सनी भाई, आई प्रॉमिस यू, कुछ ना कुछ हरकत जरूर होगी।
4: क्या बात है, एक्सलेंट। यू नो अमन जी, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मजा तब आता है जब किसी प्रोफेशनल के साथ, फाइनेंशियल प्लानर के साथ आप बैठते हैं, और यह भी साबित होता है कि भाई वो इंसान, वो शख्स जो है, वो फाइनेंशियल प्लानर से भी बेहतरीन इंसान है, मतलब जस्ट अ ह्यूमन बीइंग दैट ही इज, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स को जाकर उनके एक्सपर्टीज का फायदा लेते हैं, उनको बिजनेस देते हैं, उनके हम क्लाइंट बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर से इफ यू विन अ फ्रेंड, दैट्स व्हाट अमन जी इज. 416-707-9900 अमन मेहता जी का नंबर है. फॉर एनी फाइनेंशियल एडवाइस कॉल हिम राइट नाउ. अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ अमेजिंग वीकेंड.
5: यू टू सर, विशिंग ऑल द लवली लिसनर्स अ वेरी नाइस वीकेंड, एंड आपसे नेक्स्ट वीक बात होती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ.
4: एक्सलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर. 416-707-9900. और फजाना जी की रिक्वेस्ट है शफकत अमानत अली की आवाज में रणदीप हुडा की फिल्म थी मर्डर 3 का गीत. बाहर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 11, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल.

0: breaking through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paaye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke sath paaye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस. एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो. 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो. नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स. एशियंस 416-438-6568. ईस्ट और वेस्ट, एशियंस इज द बेस्ट.
3: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
4: अच्छी याद है, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
3: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
5: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे. choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448.
2: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा and won by Vaughan Mills.
1: Genesis Markham. Yahan mile luxury ka first class experience with a state of the art dealership aur aapki apni language mein expert service. Lease kare beautifully designed 2026 G70 sirf 1.9% se. Ya lease kare 2026 GV70 sirf 4.9% se. Aaj hi book kare test drive. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
6: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है. बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और फ्राइडे का दिन है, May 22nd है, एंड ये अमेजिंग जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ जो है या काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है. फाइनेंशियल प्लानर अमन मेहता जी हमारे साथ थे इंडस्ट्रियल लाइन से, अब लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक खान साहब हमारे साथ हैं जो कि 2000 से सदर्न ओंटारियो में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहे हैं. और अतीक भाई ऑन अ डेली बेसिस, वीकली या वीकली बेसिस ऑन एयर आते हैं और कई अलग अलग चीज़ों को जो है क्वेश्चंस के जवाब देते हैं जो हमारे लिसनर्स अक्सर पूछते हैं कि भाई ये बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा है, क्यों इसमें हमें जंप इन करना चाहिए, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या इसमें कोई नुकसान है. यू नो, स्केप्टिकल भी होते हैं कई लोग, विच इज़ ऑल्सो नथिंग रॉन्ग विद दैट. सम पीपल आर वेरी कंजर्वेटिव इन एक्चुअली इन्वेस्टिंग व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग देयर मनी, विच इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, आप स्केप्टिकल हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या आप नॉन कंजर्वेटिव एग्रेसिव हैं, या आप जो भी हैं, आपके दिमाग में काफी क्वेश्चंस होंगे व्हेन इट कम्स टू द मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग. एंड इट इज एब्सोल्युटली द बेस्ट थिंग टू हैव क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाई अतीक भाई इज ऑन एयर टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेश्चन. और 416-666-2745 इज द नंबर. 416-666-2745 नंबर है. अतीक भाई, आपका स्वागत है.
7: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपको भी, आपके लिसनर्स को भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और गुड आफ्टरनून.
2: जी, आपको भी गुड आफ्टरनून. और जहां पर आप हमारे रेगुलरली लिसनर्स के सवालों के जवाब देते हैं, आज मैं चाहूंगा कि ओवरऑल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, दिल की बात आपके क्या चल रही है इन रिगार्ड्स टू समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग सो सक्सेसफुली फॉर द लास्ट 25-26 इयर्स. एंड विद ऑल ह्यूमिलिटी आप ऑलवेज ये कहते हैं कि आफ्टर 26 इयर्स ऑफ डूइंग दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली, यू आर स्टिल लर्निंग, विच इज अंडरस्टेटमेंट, या मतलब यू आर बीइंग वेरी ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड. लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्यों हमारे लिसनर्स को इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझना really chahiye aur get into karna chahiye rather than just listening to it and waiting ki miracle to happen.
7: सनी साहब, मेरा ख्याल है जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी वो सबके सब लोग इतने नॉलेजेबल जरूर हैं कि जो इकोनॉमिक्स 101 जिसको आप बोलते हो उतनी समझ सब रखते होंगे
2: जी.
7: आज के दौर में जिसको मैं इकोनॉमिक्स 101 कहता हूँ, करंटली ये इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हुई भी है. फ्लैट का मतलब क्या है कि ना ज्यादा कोई जॉब ग्रोथ हो रही है, ना ज्यादा कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ना इमिग्रेशन का कोई बहुत बड़ा उन्होंने वो खोला हुआ है कि जी जिसको देखो वो कनाडा में लैंड कर रहा है. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स प्लस करंट गवर्नमेंट जितना पैसा इकोनॉमी में डालना चाह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, ये सब चीजें आपको खबरदार कर देती हैं कि जी मैं ऐसा पैसा बनाऊं कि जो रिसेशन से भी बच सके, इकोनॉमी के ऊपर नीचे होने वाले डोड्रम को भी संभाल ले, और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मेरे पास फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए इस मार्केट में भी.
2: True.
7: तो जब ये सारे फैक्टर्स इस वक्त पॉइंट आउट करते हैं तो मैं अपनी तरफ से आपको ये बता सकता हूं कि मैं जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हूं लैंड डेवलपमेंट का, ये वो उन चंद बिजनेसेस में से है कि जहां पर आपको पता चल जाएगा कि फास्ट ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि लैंड वैल्यू गिराती नहीं है, अप्रिशिएट करती है. ये वो वाहिद एसेट क्लास है जो तेजी से बढ़ता है, और आपको बहुत पीछे नहीं जाना, 10 से 15 साल की आप हिस्ट्री देख लीजिए और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा हाउस प्राइसेस कहीं पे भी अगर कोई डेवलपमेंट हाउस से रिलेटेड, हाउस का मतलब मेरा ये कि दो कॉम्पोनेंट होते हैं आपके, एक होती है बिल्डिंग और एक होती है लैंड. तो बिल्डिंग जो है वो अपनी वैल्यू गिरा चुकी है इस पिछले 10-15 सालों में, लेकिन किसी भी आप रियल एस्टेट ब्रोकर से बात कर लें, इकोनॉमिक्स से बात कर लें, ये सब आपको ये बताएंगे कि लैंड कॉन्स्टेंटली ऊपर ही जाती रही है 2-10% पिछले 15 सालों में
2: जी.
7: मेरा काम इस चीज के अंदर सिर्फ एक एडिशन होता है सनी साहब, मैं उसको एक बूस्टर शॉट देता हूँ. यूं समझ लीजिए कि कोविड में जो हम सबको 2 या 3 दफा वो बूस्टर शॉट लगे थे, मेरे पास वो सिरेंज आ गई है जिससे मैं उस लैंड को बूस्टर शॉट देता हूँ. और वो बूस्टर शॉट क्या होता है, वो आपकी करंट जोनिंग को चेंज कर देता है. ठीक है जी. तो जैसे ही आपकी जोनिंग चेंज हुई, जोनिंग चेंज का मतलब क्या है, मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूँ. दो चीजें होती हैं, या तो आपका एसेट क्लास चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप रेजिडेंशियल में थे, आप कमर्शियल में आ गए, आप कमर्शियल में थे रेजिडेंशियल में आ गए, दोनों में थे इंडस्ट्रियल में आ गए, इंडस्ट्रियल में थे इंस्टीट्यूशनल में आ गए. तो ये तो हो गई आपकी एसेट क्लास चेंज, नंबर वन. नंबर टू होता है आपकी डेंसिटी चेंज. डेंसिटी चेंज क्या होता है लिसनर्स, आप ये समझ लीजिए, पहले मैं अपना नंबर दे दूं, 416-666-2745, कोई क्वेश्चन है तो राइट अवे भी कॉल कर लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा. सर जी, डेंसिटी में क्या आता है, सनी साहब आप इस तरह समझिए कि एक एकड़ की एक लैंड है, तो सिटी या म्युनिसिपैलिटी या कंजर्वेशन अथॉरिटी से जब आप परमिशन लेने जाते हो, वो आपको ये बोलते हैं कि सनी साहब इस लैंड को 40% तक आप डेवलप कर सकते हो, बाकी 60% आपने छोड़ना होगा, उसमें पार्किंग एरिया बनेगा, उसके अंदर सेटबैक्स होंगे, फ्रंट पे इतना छोड़ना होगा, साइड पे इतना छोड़ना होगा, कर्ब ऐसी आएगी, फायर हाइड्रेंट यहाँ होगा. ये सब चीजें सिटी प्लान करके आपको बताता है कि आप 40% अपनी लैंड यूज कर सकते हैं. ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. और मान लीजिए जब आपने अपने नंबर्स बनाए और सब चीजों को बिठाया, तो आपके नंबर्स 40% पे वर्कआउट नहीं कर रहे, लेकिन अगर यही लैंड 50% या 60% की आपको परमिशन दे दे, तो एकदम से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा. तो आप क्या करेंगे, आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे अतीक साहब मेरी हेल्प करिए, सिटी से इसकी डेंसिटी को चेंज करा दें, मुझे 40 की जगह 50% या 60% बनाने की परमिशन मिल जाए
2: जी.
7: ये एक चेंज है. इसी के अंदर डेंसिटी में दूसरा होता है, मान लीजिए वही 40% बनाने की आपको परमिशन मिल सकती है उस लैंड के ऊपर, लेकिन मैं जाकर सिटी से बात करता हूँ और कहता हूँ कि नहीं सर, आप मुझे फुटप्रिंट तो वही रखिए जो आप 40% दे रहे हैं, बट मुझे 3-story या 4-story बनाने की परमिशन दे दे. एकदम से बैठे बिठाए वो आपका 10,000 square feet 40,000 square feet में कन्वर्ट हो गया. समझ रहे हैं आप सनी साहब?
2: बिल्कुल बिल्कुल.
7: तो ये मेरी एक्सपर्टीज है, मैं पिछले 20-25 सालों से यही काम करता आ रहा हूँ, और जिस वक्त मेरी लैंड को वो अप्रूवल मिल जाती है, मैं एक मिनट भी वेट नहीं करूंगा, उसको राइट अवे सेल करूंगा, और आपको 30-40% प्रॉफिट का चेक प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट और एक थैंक यू नोट करके वो चेक आपके हाथ में ला के रखूंगा। इस पूरी कहानी के अंदर ओनरशिप आपके नाम पर है, प्रोजेक्ट आपके नाम पर है, प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, कोई मॉर्गेज और कोई लोन हमारे ऊपर नहीं है और हमारा सिर्फ इतना काम है कि इस लैंड को कन्वर्ट कराएं, इसकी अप्रूवल्स कराएं और इसको सेल करके बाहर आ जाए अपने 30-40% के साथ।
2: जी क्या बात है, आज तो मतलब मुझे लगता अच्छा किया मैंने कि आज अतीक भाई से इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन और कपल क्वेश्चंस, मैंने अतीक भाई से यही कहा कि भाई आप अपने आज एक्सपर्टीज को ऑन एयर शेयर करें और अपने दिल की बात करें, एंड दिस इज़ टू मैनी पीपल ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जब अतीक भाई का सेगमेंट ख़त्म हो जाता है मुझे लोग कई क्वेश्चंस करने आप भेजने शुरू कर देते हैं, जो कि मेरी ऑलवेज गुजारिश होती है प्लीज़ टॉक टू अतीक भाई डायरेक्टली ऑन 416-666-2745-416-666-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2745-2 expert local developer builder is none other than Atiq Khan Saab. So talk to him, 416-666-2745 par. Atiq bhai, bahut bahut shukriya aapka.
7: थैंक यू सो मच सर. बस इतना ऐड करूंगा, सेम मेरी भी स्टोरी है, मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं. आप कीप ऑन कॉलिंग मी, कीप ऑन मैसेजिंग मी, व्हाट्सएप कर दें, टेक्स्ट कर दें, आई विल गेट बैक टू यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. जो भी आपका क्वेश्चन है कोशिश करूंगा उसको आंसर देने की. नंबर हमेशा 416-666-2745. थैंक यू सो मच सनी साहब
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और दोस्तों, इवन जो ओशवा में रहते हैं, ओटवा में रहते हैं, या फिर नायग्रा फॉल्स, सेंट कैथरीन्स, किचनर वॉटरलू, कैम्ब्रिज, ग्वेल्फ, लंदन, जहां पर भी आप रहते हैं, देयर कुड बी समथिंग जो आपके नजर में है, सम प्रॉपर्टी, सम लैंड दैट यू आर लुकिंग एट, बट यू हैव नो आइडिया कि उसकी जोनिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ यू नो नीड स्टफ. उसके लिए अतीक भाई को कॉल करें, उनसे अपॉइंटमेंट बनाएं, उनसे बातचीत करें. ही विल डू द रेस्ट ऑफ द होमवर्क. आपने सिर्फ फिर अपना पैसा ही इन्वेस्ट करना है. उस लैंड को खरीदा जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जोनिंग बदली जाएगी. अतीक भाई इज गोइंग टू डू ऑल दैट फॉर यू. यू बिकम अ पार्टनर एंड ओनर ऑफ द लैंड. आपका नाम टाइटल पर भी होगा. 416-666-2745 416-666-2745. अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया.
7: थैंक यू सो मच सर.
2: थैंक यू जी. 416-666-2745. और राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम, 30+ लोकेशन से आपको सर्व करते हैं. राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, डॉन वैली, नॉर्थ हांडे दे रहे हैं फीफा की टिकट्स. बैलेट है जो कि ड्रॉ किया जाएगा जून में, जब फीफा शुरू होगा. ऑफर एंड्स एंड ऑफ दिस मंथ, 31st में. अगर आप हांडे बाय करते हैं डॉन वैली, नॉर्थ हांडे से, टू नेम्स फॉर टू टिकट्स विल बी पुट इन फॉर द लकी ड्रॉ. इफ यू बाय विंटर टायर्स फ्रॉम देम विद स्टोरेज, वन नेम फॉर वन टिकट. एंड कोई एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करते हैं तो अगेन वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर द lucky draw. 7537 Woodbine Avenue in Markham, Steels Woodbine Wala major intersection. And Asians, yaad rakhe, popular Asian, South Asian clothing or textile store hai Markham or Lawrence Avenue ke paas in Scarborough, 3601 Lawrence Avenue. Aur jahan par saadis leni hai aapne, nahi latest fashions pahunch chuke hai store par. Lehenga, salwar suits, bridal wear, men's traditional clothing, jewelry and gift items only at Asians. 416-438-6568. Asians की तरफ से ये प्यारा सा गीत एंजॉय करें, रोचक कोहली अरिजीत सिंह की आवाज में.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार, पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई, वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: पूजाहट.com।
0: जय श्री राम।
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
4: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी है।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं। राज जी से करते हैं बातचीत। राज जी, आपका स्वागत है।
6: सनी जी नमस्कार, सबसे काल आदाब आपको और प्यारे लिस्टनर्स को वेरी गुड आफ्टरनून
5: जी आपको।
6: सनी जी, इस वीकेंड हमारे पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन हैमिल्टन बिनब्रुक टाउन होम, मॉडल होम, वहां पर ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। और अगर कोई भाई बहन इस एरिया में इंटरेस्टेड हो, लिमिटेड टाइम के लिए इवेंट प्राइजिंग है फ्रॉम जस्ट 570,000, थ्री बेडरूम का फ्री होल्ड टाउन, जिसकी सारी की सारी डिटेल्स आप हमसे ले सकते हैं। इस वीकेंड सैटरडे को अपॉर्चुनिटी है, अगर आप परसों के दिन इसको खुद व्यू करना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं लोकेशन को, तो हमारे साथ कांटेक्ट कर लें एंड वी कैन सेट इट अप फॉर यू। और साथ ही साथ बता दें, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इसके अलावा भी मौजूद है कैम्ब्रिज, वाटलू, ग्वेल्फ एरिया में, जहां पर बेनिफिट्स ऑफ अप टू $130,000 इन सेविंग्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमें कांटेक्ट कर लें। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जस्ट 685,000 नॉर्थ ईस्ट गल्फ में, 40 फुट अप टू 40 फुट के सिंगल्स हैं, मूव इन रेडी एंड प्री कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ फ्री होल्ड टाउन होम्स। लिमिटेड टाइम प्रमोशन है $25,000 इन फ्री अपग्रेड ऑन प्री कंस्ट्रक्शन होम्स। और साउथ गल्फ में इसी तरह 820,000 से 30 फुट के सिंगल्स हैं, मूव इन रेडी अलॉन्ग विद 40 एंड 45 फुट कॉन्जर्वेशन लॉट्स, जिस पर सेमी डिटैच होम भी बन सकते हैं। अगेन लिमिटेड टाइम की प्रमोशन है $25,000 इन फ्री अपग्रेड। और अगर कोई भाई बहन साउथ कैम्ब्रिज प्रेफर करते हो, तो 36 फुट के वॉकआउट और 38 फुट के वॉकआउट लुकआउट्स और प्राइवेट कल्डसैक, बहुत जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द लो 900s। हमें कांटेक्ट कर लें। एक्सलेंट एक्सलेंट ये बिल्डर हैं, लिमिटेड टाइम इंसेंटिव में सिर्फ 5% डाउन और लिमिटेड टाइम के लिए तीनों कम्युनिटीज जो हैं इनमें ये 5% डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्वेल्फ एंड साउथ कैम्ब्रिज, हमें कॉन्टैक्ट कर लें एंड वी कैन लॉक द डील फॉर यू। सनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून, थैंक यू
5: जी। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड। 6478661086 राज जोशी जी का नंबर है। थैंक यू जी।
6: थैंक यू सनी
5: जी। 6478661086 छोले भटूरे .ca, चार अमेजिंग लोकेशन से सर्व करते हैं। टेक आउट डाइन इन ऑप्शन ऑन ऑल, टू इन ब्रैम्पटन, वन इन वन एंड वन इन मिसिसागा। दिल्ली वाले छोले भटूरे, ओनली एट छोले भटूरे .ca। आगे चलकर मॉर्गेज क्वीन नीलम सुडोव जी भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक और गीत की रिक्वेस्ट आई है, वो भी प्ले करेंगे।
7: सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।
8: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
9: 10 meter. Bas inna ko yaad rakho. Tuhanu uparon lang diyan bijli diyan power lines to katto kat 10 meter dur rehna chahida hai. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 meter ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ। esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
10: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 locations ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस मोहम्मद सिद्दीक 4166710577 4166710577 alldebtsolutions.ca।
11: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading। पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से परिवारों को साइड इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, श्योरिटी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। फ्री सेमिनार्स अटेंड करें हर सैटरडे आफ्टरनून। मेक श्योर प्लीज मेक योर अपॉइंटमेंट, वॉक इन ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है सेमिनार, एंड कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters 289-748-4040 289-748-4040। काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotrell Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
8: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
12: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
13: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
12: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
14: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन 905-457-3232। Clear Optical by Varun Kanda।
15: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्बन कोर्ट इन ब्रैम्पटन 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax 289-372-3330 और acvc.info।
11: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Dr. Seerat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
16: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਐਕਚੁਲੀ ਉਮੇਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 5400 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹੂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਹਾਲ?
1: Question, I don't want to debate on that too much, but with my opinion, market is not just for Brampton. True. It's also belong to Mississauga, Bolton, idhar udhar sare kithe, Ontario is one. Right, so it's not affecting just Brampton, it's affecting everywhere.
0: Exactly.
1: Banks, they used to do differently, but now they are treating everybody differently. Like they are very, very strict. Very strict. So mortgages, us hisab de utte jehdi, I don't know ki real estate bare ki kinni zyada vikri thi ya ghat vikri thi, but according to my knowledge, not my knowledge, according to my opinion laga lo, lokan di knowledge de naal jiddat da baro pata lagda paya, te yes, various as well as sales tab kam thoda ja ghat hai. Not because anybody, but this is the best opportunity for first time buyers. I was going to come on this, je tusi first time buyer ho, toda koi bhi question hai, where you stand, kinni tankha chahiye hai tanu, to kinne vich tusi qualify karde ho. First time buyers nu to eh nahi sochna chahiye ki appa 1500 kiraya denne hun, je 2500 man lo mortgage bhi aagi te assi survive kar dange. 2500 is not only just the one item, ede magro tode bijli batti pani property tax kai kuch hunda.
0: Sahi gall,
1: aaj ek seminars, if you are looking for ki first time we just on guidelines chahidiyan ki apa kinne nu qualify karde ha, kinne tak jana chahida, je 6 mahine apa na kam kariye, either kise nu bulana ja kise vi tarike de naal, you call me and I normally take every Friday between 4 to 5 those calls particular about first time buyers.
0: Very
1: and
0: nice.
1: I can answer all your questions.
0: Excellent. Dosto, agar aap first time home buyer hain, to ye aapko free, absolutely complimentary, bina kisi obligation ke mauka mil raha hai ki Friday ko 4 se 5 baje ke beech mein aap mortgage queen नीलम सदोव जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जस्ट इन केस लॉट ऑफ टाइम्स फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत प्लेजेंट और कुछ अनप्लेजेंट सरप्राइजेस भी होते हैं जो आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है गूगल बाबा ने आपको सारे आंसर्स दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। नीलम जी इज द एक्सपर्ट, मॉर्गेज अलायंस की नीलम जी, नीलम सदोव ब्रोकर जिन्हें हम कहते हैं मॉर्गेज क्वीन, क्योंकि जो काम कहीं नहीं होता वो नीलम जी एक बार कमिटमेंट कर लेती हैं, फिर वो खुद की भी नहीं सुनती, जबरदस्त तरीके से। हाँ जी नीलम जी,
1: थैंक यू सर
0: जी, नंबर दे दवा 6477398710, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा,
1: थैंक यू सर,
0: थैंक यू जी, 6477398710 नीलम जी का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं उन्हें कॉल। और हीरो नंबर वन वॉज द फिल्म करिश्मा कपूर, और हीरो नंबर वन तो एक ही है इंडस्ट्री के, गोविंदा, पिछले काफी सालों से करियर जो है उनका हीरो नंबर वन की जगह जीरो नंबर वन चल रहा है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये किस्मत की बात है, करियर बुरा चल रहा है, वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन हीरो तो फिर भी हीरो नंबर वन ही है। ऑल दैट अमेजिंग वर्क दैट ही इज डन सिंस हिज फर्स्ट फिल्म लव 86 एंड झूठा इल्जाम दैट रिलीज्ड इन 86, एंड व्हाट अमेजिंग फिल्म्स उन्होंने 80s, 90s में की हैं, इवन ऑल द वे टिल पार्टनर। सातो जन्म, ब्यूटीफुल सॉन्ग, कुमार सानू की आवाज में, एंजॉय, आई विल बी बैक।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley। घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल। Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086 647-866-1086। Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है।
3: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। सिलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16। विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
4: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940 647-863-1940।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहर का तापमान हो चुका है 15 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 12, एंड दिस इज द मैक्सिमम दैट इट विल गो टुडे टिल। एंड ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी भी बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। टुकुर टुकुर वॉज द सॉन्ग, फिल्माया ऑन वरुण धवन, काजोल, कृति सनन एंड शाहरुख खान, एंड द मूवी वॉज दिल वाले। एंड इसी तरह से जितनी आपकी रिक्वेस्ट है, 2 बजे तक हम चलाते रहेंगे। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055, 416-593-0055, जिस पर आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कर दीजिए 647-863-1940 पर। एंड बहुत ही यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और आएंगे बहुत ही जल्द वापस। टुमारो एंड डे आफ्टर, बोथ डे, सैटरडे एंड संडे, टुमारो अबाउट 80% चांस ऑफ रेन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड देन अबाउट 40% चांस ऑफ रेन ऑन संडे एज वेल। लेकिन टुमारोज मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल ओनली बी अराउंड 11 डिग्री सेल्सियस। एंड चलिए बहुत ही छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आएंगे बहुत ही जल्द वापस। फिर ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक हमारे साथ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी भी होंगे, उनसे भी आपको अमेजिंग डील्स दिलवाते हैं फॉर दिस वीकेंड।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940, 647-863-1940।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें। 647-628-0040, दैट इज 647-628-0040।
2: यहाँ

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज. कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com.
2: Skylake Immigration.
3: He's breaking through the midfield.
4: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाए और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
5: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैंटन. 905-450-2828 इज द नंबर. ओपन 7 डेज अ वीक 11 AM to 7 PM. ब्रैंटन अप्लायंसेस .com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं. बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं. सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख. सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर.
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
6: सुल्तान जी. सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें.
7: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही हैं, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं. और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी. तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ, QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा. $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी. इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे. पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ्री होम डिलीवरी होगी. आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं. और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं. $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky customers कैन गेट इट. 6 months नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ 98 इंच सैमसंग टीवी 1999 का. 905-450-2828. 905-450-2828 जी.
6: 905-450-2828. ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस. सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी. कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं.
7: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता. हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी. अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर टॉप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा. ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी. ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं. फ्री होम डिलीवरी होगी. 6 months में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे. स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है. टॉल टब की डिशवॉशर जो है $1,000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1,000 से सिर्फ 499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवॉशर ले सकेंगे स्टेनलेस स्टील की 499 फ्री होम डिलीवरी के साथ। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी, तो $2,200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर 1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1,700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ 1099 का पेयर मिलेगा, वॉशर ड्रायर दोनों ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन पे आना है। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को, ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828 जी
6: जी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।

0: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
1: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
0: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
1: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
0: दैट्स वंडरफुल।
1: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
0: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
1: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन appliances.ca।
2: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com। Woodbine Ave और Denison Street, Markhamper,
3: doing business your way.
2: Member of Wayne's Auto Group.
4: दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days अ वीक। 905-457-3232 फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस। ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर्स सरबजीत गिल, सीपी चटवाल फॉर रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
5: सुनते हो, मेरे भरा दी अज फ्लाइट है इंडिया तो।
6: ओ याद है पर उनू कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे।
5: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खाल ले, इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो।
7: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448।
4: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
8: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर्स अते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है। ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
4: He's breaking through the midfield.
5: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। विजिट Don Valley North Hyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: जोशी।
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal pe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आपका वेलकम करती हूँ Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. और आज है फ्राइडे का फैंटास्टिक डे. बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे गानों के साथ हम हो चुके हैं तैयार और आपको करेंगे एंटरटेन शाम के 4 बजे तक. और एक बार फिर से दीजिएगा आप हमारा साथ बाय कॉलिंग अस ऑन द स्टूडियो नंबर 416-593-0055. और आज के शो में भी आप कुछ ना कुछ जरूर जीतेंगे दोस्तों. और बड़ा स्पेशल शो लेकर हम आए हैं और आपका हम करते हैं एक बार फिर से स्वागत इस ब्यूटिफुल फ्राइडे आफ्टरनून में. और जब फ्राइडे होता है तो ज्यादा ही खुशी होती है जहन में और लगता है कि जैसे तैसे ये हफ्ता पास हुआ है. पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद अब थोड़ा टाइम है चिल करने का, थोड़ा स्माइल करने का और वीकेंड वाइब्स को दिल से फील करने का. आज का वाइब बिल्कुल सिंपल है, वर्क लेस ऑन स्ट्रेस, मोर ऑन हैप्पीनेस. कहते हैं कि जिंदगी को एंजॉय करना सीख लीजिए क्योंकि अच्छे पल वापस नहीं आते. तो आज दोस्तों टेंशन को थोड़ा ब्रेक दीजिए, दिल को थोड़ा लाइट रखिए और इस फ्राइडे को बनाइए फन, फ्रेश और फैबुलस. ट्रिपल एफ म्यूजिक रहेगा, रॉकिंग मस्ती रहेगी, नॉन स्टॉप एंटरटेन रहेगा, फुल ऑन पावर. तैयार हो जाइए एक और एनर्जी पैक्ड, पॉजिटिविटी पैक्ड फ्राइडे के लिए शालिनी के साथ.

0: क्या मजेदार गाना है ना, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग टू स्टार्ट द फ्राइडे का शो. और ऐसे ही अच्छे अच्छे चुनिंदा नए पुराने गीतों को लेकर हम आए हैं आपके करीब शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3. अ बिग हेलो टू आवर सोशल मीडिया फैंस एज वेल. हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से इस आफ्टरनून को सुपर फैंटास्टिक बनाने के लिए और इस फ्राइडे को सही मायने में फ्राइडे बनाने के लिए. फ्राइडे को मंडे जैसा ना बनाएं, फ्राइडे को कुछ डिफरेंट करें, कुछ क्रेजी करें, कुछ अलग हटके करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखें, तो कुछ अच्छा ना अच्छा जरूर हो जाएगा. जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, अच्छा नहीं सोचते तो अच्छा शायद नहीं होता. सो चॉइस इज योर्स. वेल, अब बता देती हूँ आज का मौसम क्या कहता है. मौसम का लेटेस्ट हाल चाल है 14 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नो इट्स 15 नाउ. पार्टली क्लाउडी स्काई, फील्स लाइक 13 डिग्रीज और सनशाइन है, थोड़े बहुत बादल भी नजर आ रहे हैं. और ओवरनाइट लो आज का रात 11 बजे का टेम्परेचर जा सकता है 11 डिग्री सेंटीग्रेड विद द क्लाउडी स्काई. और इट्स अ नाइस वेदर और वीकेंड में भी प्लस डबल डिजिट्स ही वेदर रहने की संभावना है और फिर सिंगल डिजिट्स में भी आ जाएगा, कुछ बरसात होने की भी संभावना है. तो ऐसा ही मौसम जो है जरा भीगा भीगा ही रहेगा, लेकिन संडे को प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 तक जा सकता है. सो आई गेस एज कम्पेयर टू सैटरडे संडे इज गोइंग टू बी वार्मर. तो अब डोंट वरी, धीरे धीरे जो है गर्म दिन भी आएंगे और गर्मियां भी आ जाएंगी, फिर हम साथ मिलकर इंजॉय करेंगे अभी की तरह ही. सो वेल दोस्तों, आज फ्राइडे May 22nd है और आज के शो में भी आपका हमारा साथ रहेगा, बहुत सारे फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी डील्स आपकी नजर करेंगे, बॉलीवुड की सैर करेंगे, बॉलीवुड कैलेंडर खोलेंगे, आज क्या स्पेशल डे है, वैसे आज का दिन क्या कहता है, क्या होने जा रहा है आज के दिन में, जिंदगी को लेते हुए, खाने पीने को लेते हुए, फन को लेते हुए क्या क्या हो रहा है, ताज़ा खबरें आपकी नजर करेंगे जिसमें लोकल खबरें होंगी, भारत की होंगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की खबरें होंगी. इसके अलावा अच्छी अच्छी जो है क्विज भी करेंगे, आप लोगों से सीधी बातचीत भी करेंगे और आज का लेटेस्ट टॉपिक हमारे पास तैयार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो वेल आप तैयार हो जाइए अपने फोन हाथ में लेकर स्टूडियो का नंबर डायल करने के लिए 416-593-0055. छोटा सा टाइनिंग सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन सीएमआर 101.3 एफएम पर आ चुकी है. Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
2: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुंचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल. वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26. 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसा, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास ரெஸ்டாரண்ட் 905-789-6600. That's 905-789-6600.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
4: Sean Express.
5: Simply good. Retro style, old classics.
4: This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.

दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, पूरी महफिल की जान बन जाते हैं, पूरा जश्न बन जाते हैं। और ऐसा ही सदाबहार गाना आपकी नजर हम करने जा रहे हैं। कहते हैं, ना दौलत की चाह थी ना शोहरत का सपना था, ना दौलत की चाह थी ना शोहरत का सपना था, तेरे प्यार में बस हर दिन हसीन अपना था। इस गाने की सबसे खास बात है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, जया प्रदा की जो मस्ती और जो केमिस्ट्री थी, उसने इस गाने को ग्रैंड सेलिब्रेशन बना दिया। 80 के दौर में ये गाना शादी पार्टियों और स्टेज शोज की जान बन गया। मुझे नौ लखा मगा दे रे ओ सैया दीवाने। आपकी नजर।

0: मुझे नौलखा मगा दे रे ओ सैया दीवाने, ये गाना आपकी नजर किया फ्रॉम द मूवी शराबी। कहते हैं तेरी हंसी में जैसे चांदनी का बसेरा है, तेरी हंसी में जैसे चांदनी का बसेरा है, तेरी बातों में जैसे प्यार का सवेरा है, तू साथ हो तो हर महफिल रंगीन लगती है, वरना ये दिल भी कितना अकेला है। दोस्तों कहते हैं कि शूटिंग के दौरान, इस गाने की शूटिंग के दौरान इतना मज़ेदार माहौल था अपने सेट पर कि कई सीन्स में कलाकारों की असली हंसी जो थी वो कैमरे में कैद हो गई और वो बिल्कुल नेचुरल सारा कुछ नज़र आया है। जब आप अगली बार ये गाना देखेंगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा वो हंसी आपने कैप्चर करी कि नहीं जो असल में कलाकार हंसे थे शूटिंग के दौरान। तो चलिए ऐसी बातें चलती रहेंगी। फिलहाल तो अब डील्स का टाइम हुआ है और चलिए पहली सेट ऑफ डील्स लेते हैं मिड्डा फर्नीचर गैलरी से। 5 लोकेशन से अब आपको सर्व करते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे पवन मिड्डा जी। पवन जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो।
1: गुड आफ्टरनून जी, और सभी सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, आज ऑफिशियली हमने सॉफ्ट ओपनिंग कर दी है अपनी फर्स्ट लोकेशन की। बहुत मान महसूस होता है ये बताने में। और अभी आप हमारा जो नंबर है 416-901-2810, उसकी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर है लंदन के लिए। अगर आप वहां से हमें विशेष करना चाहते हैं और हम मैं चाहता हूं कि आप दें, मेरे जो बड़े बहन भाई हैं, जो बड़े मेरे बुजुर्ग हैं, या मेरी छोटी देवियां बहनें हैं, या मेरी बच्चियां हैं, या जो मेरे बच्चे हैं, आई नो लंदन थोड़ा सा दूर है उस GDS से, तो अगर आप कभी इधर से आ रहे हो तो आपके मुबारक कदम ले आए, नहीं तो फोन द्वारा, तो कहते हैं ना दिल से दूर नहीं होना चाहिए, तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह चाहते हैं। ये सब संभव हो पा रहा है जब आपका प्यार मिल रहा है, तो आपके प्यार के बिना तो अधूरे हैं, और आपके प्यार के साथ ये ताकत मिल रही है। और ग्रैंड ओपनिंग का फ्लायर भी आने वाला है, लेकिन जब आप इनसाइड स्टोर आएंगे तो उनके पास, मैंने कल भी कहा था कि एक कॉपी हमने उनके पास फोन में है, ताकि बहन भाइयों को अच्छा तो नहीं लगेगा कि आज कोई चीज हम इतने की दें और कल जो गिफ्ट दें कुछ दें। ग्रैंड ओपनिंग 30 तारीख की, वो भी डेट भी अनाउंस कर दी है, 30 तारीख को चेन वाइन ग्रैंड ओपनिंग होगी और बहुत जबरदस्त चीज आपको दी जाएंगी। और जैसे हमने आज, मैंने एक डील दे ही देता हूँ आपको, अगर आप सोफा तो ले ही रहे हैं टॉप ग्रेन लैदर, तो अपने शालिनी जी जो सोफा होता है एक लेदर मैच होता है, सभी बहन भाई को पता है कि सेटिंग पार लेदर बैक वाइनल होता है, एक सोफा होता है ऑल ओवर लेदर, पीछे आगे फ्रंट लेदर, अगले 10-15 साल खराब नहीं होगा, फ्रेम की लाइफ टाइम की गारंटी होगी, मेपल वुड का फ्रेम बना होगा, पहले 10 कस्टमर मतलब 50 फैमिली फायदा उठा सकती है। कैनेडियन मेड की मैं बात कर रहा हूँ, और जिस कंपनी, नाम स्टोर पे रेडियो पे नहीं लूंगा, स्टोर पे आएंगे तो जब आप बताएंगे तो उस कंपनी को सर्च करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़े सप्लायर हैं। 1199 का सोफा आपको देने जा रहे हैं, 1199 का सोफा 50 families को फायदा देने जा रहे हैं, 10 families पर स्कोर, हर लोकेशन पे, मतलब अगर लंदन 10 पूरे हो गए, ब्रम्बरन 10 पूरे हो गए, तो 10 पर फैमिली, 10 पर जो आप 1 पर फैमिली और 10 families को 1199 का। तो इसी तरह आज के फर्नीचर की बहुत सारी डील्स होगी हमारे पास, रिक्लाइनर्स हमारे पास बहुत अच्छे आए होंगे, जेन्युइन लेदर का सेक्शनल विद रेचेस हेडरेस्ट 1999 का होगा, पावर जो सेक्शनल होगा आपके पास 1599 के आसपास होगा। तो हम चाहते हैं आप एक बार मेरे स्टोरों पे आए, और इसके अलावा पिक्चर तो अभी बाकी है, जैसे अभी गाना कह रहे थे ना कि मेरी बहनें अब कहें अपने जिनको भी कहना है, मुझे 9 लखानी मुझे अच्छा फर्नीचर मंगवा दे रहे, मुझे लेदर का सोफा ला दे रहे।

0: तो चलो हंसी खेल भी कर लेनी चाहिए। तो 9 लाख
1: का
0: आजकल तो इकोनॉमी ठीक नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा मेरे भाइयों को। और मेरे भाइयों को भी कहूंगा कि अगर यू वांट टू
1: बी पड़ जाएंगे
0: तो सोफा तो 2000 में भी मिल रहा है। तो जैसे जी तो बिल्कुल अच्छा लगता है ना अपनों से, बहन भाइयों से ही हंस खेल के भी अच्छा लगता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो आए आपका मिडा फर्नीचर पे स्वागत है। अगले लिंक में और भी आपको बहुत सारी डील देंगे। मिडा फर्नीचर नोन फॉर ब्रांड फर्नीचर एंड लेस प्राइस व्हेन यू कंपेयर मॉडल टू मॉडल। तो 416-901-2810 416-901-2810 और मिडा MIDHA furniture.com पे जाके भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।
1: थैंक यू सो मच पवन जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। भाई बिल्कुल आपको 9 लाख हार नहीं लेना, गहने नहीं लेने, तो उसमें पैसा क्यों आप बर्बाद करें। जैसे पवन जी ने कहा, अफोर्डेबल फर्नीचर इज राइट हियर, ब्रांडेड फर्नीचर इज राइट हियर, ऑल 5 लोकेशंस टू सर्व यू। midafurniture.com 416-901-2810 दैट्स 901-2810। पवन जी थैंक यू सो मच, फिर आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू जी।
1: जी हाँ वेल दोस्तों, आपका फिर से वेलकम करती है शालिनी CMRFM 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। और साथ ही आपको बता दूं देओल ट्रैवल के लेटेस्ट लेटेस्ट डील्स, दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक आप जा सकते हैं राउंड ट्रिप $1,320 लिमिटेड सीट्स। दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर या नवंबर में वन वे जा सकते हैं 8:30 में। टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा हुआ है $1,650 दो बैग्स के साथ, लिमिटेड टाइम ऑफर है। इटोबिको एंड ब्रैम्पटन टू लोकेशंस टू सर्व यू। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200 588-5100 एंड 588-4200। एक छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे दोस्तों, और उसके बाद चलते हैं आज की ताज़ा हेडलाइंस की तरफ। और प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है यश विंडोज एंड डोर्स की तरफ से। और यश विंडोज एंड डोर्स ऑल ओवर ओंटारियो जो है सर्विसेज देते हैं, और एक से बढ़कर एक जो है वहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके लिए। आप ले सकते हैं वर्ल्ड क्लास विंडोज एंड डोर्स, और एक्सेप्शनली गुड ऑफर्स हैं यश विंडोज एंड डोर्स में। और इसके साथ प्राइस बड़ी रीजनेबल है दोस्तों। आपको चाहिए गुड लुक्स, क्वालिटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सुपीरियर एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ मिलेगा रीजनेबल प्राइस के साथ। स्टाइल, सेविंग और सेफ्टी सब कुछ एक साथ। और अगर आप फ्रेंचाइज ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, दे हैव बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल। आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं एक फास्ट ग्रोइंग टीम के साथ। यश विंडोज एंड डोर्स, नंबर इज 416-732-3600 दैट्स 416-732-3600। एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक और चलते हैं आज की ताजा लेटेस्ट हेडलाइंस की तरफ। स्टे ट्यून्ड। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Shagan ka din chadhega, sajna ghar aayenge, toli lekar jayenge, dulhan sajegi, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
4: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
5: News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.
6: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। वेनेजुएला अचानक भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा। पुलवामा आतंकी हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की हत्या के मामले में मुजफ्फराबाद के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अब्दुल्ला कमाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह कई ऑनलाइन पार्टी बन गई जो तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। उधर भारत में पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दो भारतीय पर्वतारोहियों की उतरते समय मौत। दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री से ज्यादा, सभी शहर भारत के। पंजाब में गर्मी को देखते हुए सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदला। वहीं एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कंगना मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां पहने हैं।
7: और अब नजर डालते हैं आज की ताजा लोकल खबरों की तरफ। टोरंटो के कैबेज टाउन एरिया से इस वक्त की बड़ी खबर। टोरंटो पुलिस सर्विस के मुताबिक जेरार्ड और पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास एक पेडेस्ट्रियन को ट्रक ने टक्कर मारी। विक्टिम को सीरियस इंजरीज के साथ हॉस्पिटलाइज किया गया। जेरार्ड स्ट्रीट बर्किले से स्यूमैच तक बंद की गई है। इन्वेस्टिगेशन के लिए ड्राइवर्स को एरिया अवॉइड करने की सलाह दी गई है। एक एजुकेशन अपडेट। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड लीडरशिप चेंज। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने अपने नए सीईओ की घोषणा की है। कैमिलियो सिप्रियानो होंगे नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिलहाल वो नियाग्रा कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के डायरेक्टर हैं। उधर स्टेसी जुकर अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर की भूमिका संभालेंगी। ये बदलाव बोर्ड की लीडरशिप स्ट्रक्चर में बड़ा शिफ्ट माना जा रहा है। سی ٹی وی کی ڈبلیو فائیو انویسٹیگیشن نے ایئرپورٹ سیکیورٹی پر گمبھیر سوال اٹھائے ہیں. آرگنائزڈ کرائم گروپس نے ایئرپورٹ انسائیڈرز کو ٹارگیٹ کیا ہے. کم سے کم 17 کیسز سامنے آئے ہیں جہاں انسینٹ پیسنجرز کے بیگیج ٹیگز بدل دیے گئے ہیں. کئی یاتریوں کو فورن کنٹریز میں ڈیٹینشن بھی جھیلنا پڑا ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پیسنجر سیکیورٹی اسٹرانگ ہے لیکن انسائیڈر تھریٹ ابھی بھی بڑی کمزوری ہے. ٹورانٹو میں اس وقت اور ساتھ ہی اس ویکینڈ ایکسائٹمنٹ کافی ہائی ہے. ڈورز اوپن ہو رہے ہیں کئی ساری ایکٹیویٹیز کے لیے. ٹورانٹو میں 160 سے زیادہ لوکیشنز پبلک کے لیے اوپن ہونے لگی ہیں اس ویکینڈ. پہلی بار اس میں سی این ٹاور بھی شامل ہوگا. وزٹرز کو ایکسکلوسیو ایریاز ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا. فری ٹکٹس آر آلریڈی سولڈ آؤٹ. ڈیمانڈ کافی ہائی رہی ہے. ایک سیریس کرائم کی خبر آ رہی ہے چائلڈ ایکسپلائٹیشن چارجز کے چلتے. نائیگرا ریجن میں ڈسٹربنگ کیس سامنے آیا ہے. نائیگرا ریجنل پولیس کے انوسار گارڈن گولڈ جو 71 ایئر اولڈ ہیں ان پر لگے ہیں ملٹیپل سیریس چارجز انکلوڈنگ سیکشوئل اسالٹ اینڈ ایکسپلائٹیشن. اور پولیس کو شک ہے کہ وکٹمز اور بھی ہو سکتے ہیں. لاسٹ میں ویدر اپ ڈیٹ. اور ویکینڈ میں ویدر بدلنے کے پورے آثار ہیں. پوری طرح ٹورانٹو میں موسم فلپ ہو سکتا ہے. آج مکس آف سن اینڈ کلاؤڈ کے ساتھ ہائی آف 16 ڈگریز لوز آف 11 ڈگریز. ونڈی کنڈیشنز ہیں. سیٹرڈے رینی اور کول رہے گا. ہائی آف 11 ڈگریز کے ساتھ 10 سے 15 ملی میٹر تک برسات ہو سکتی ہے. سنڈے بگ وارم اپ از کمنگ ود ہائی آف 20 ڈگریز سینٹیگریڈ. News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.
2: Purana gana, banaye deewana. Shaur Express par khole yaadon ka pitara.

0: दिल तेरा दीवाना है सनम। और बिल्कुल दोस्तों, और जो सारा टोरंटो है ना, वो दीवाना है कैंडा ऑप्टिकल का, क्योंकि वहाँ की डील्स इतनी अच्छी हैं, वहाँ के ऑफर्स इतने अच्छे हैं। क्योंकि आप एक लेने जाते हैं, वहाँ से 10 जो है अच्छे अच्छे आई ग्लासेस, ब्रांडेड सन ग्लासेस ले आते हैं। और इस वक्त तो मौसम भी ऐसा है कि सन ग्लासेस आपके ज़्यादा यूज़ होंगे, तो अपनों को भी तोहफा दे सकते हैं, अपने लिए तो आप लेकर आ ही सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर आइज, अगर आप चाहते हैं आंखें अच्छी रहें, तो एक सही जगह से ब्रांडेड स्टफ लेकर आए। तो हमारे साथ जुड़ेंगे वन एंड ओनली अश्विनी कैंडा जी। अश्विनी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
1: बहुत अच्छा शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कितने प्यारे ढंग से हमारा मैसेज सब तक पहुंचाते हैं, एंड
0: यू आर
1: इसके
0: मोस्ट
1: लिए
0: वेलकम।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू डूइंग ए ग्रेट जॉब, जो
0: थैंक यू।
1: आप इतनी देर से ये काम कर रहे हैं, बट यू डूइंग इट सच ए वेरी प्रोफेशनल वे। द
0: थैंक यू सो
1: डिलीवरी
0: मच।
1: ऑफ योर वर्ड्स आर सो नाइस, एंड उसके लिए आपका शुक्रिया।
0: थैंक यू
1: देखिए
0: सो मच
1: शालिनी जी,
0: अश्विन।
1: शालिनी जी, कैंडा ऑप्टिकल के पास अभी बहुत प्यारी प्यारी डील चल रही हैं।
0: अच्छा।
1: देखिए, एक तो मौसम भी अच्छा हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, सनी डे भी है,
0: दैट्स
1: उसके
0: राइट।
1: साथ साथ ठंड भी कम हो गई है, और सन ग्लासेस लेटेस्ट डिजाइन जो हमारे सभी स्टोरों में पहुंच गए हैं, बिकॉज एवरी टाइम ऑल दी सप्लायर्स कम अप विद न्यू कलर्स, न्यू स्टाइल्स, न्यू शेप्स, एंड दिस इज
0: बिल्कुल
1: व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारा हम जो भी कैरी करते हैं शालिनी जी, आई जस्ट
0: जी।
1: वांट टू रिपीट अगेन, जो भी हम कैरी करते हैं, वी कैरी करंट मॉडल्स, वी डोंट रियली प्रमोट एनी डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट। वेयर
0: दैट्स राइट।
1: समटाइम यू फाइंड सम स्टोर्स वुड बाय दोस डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट एंड पुट सेल्स ऑन एंड ऑल दिस, वी
0: जी
1: बाय रेगुलर प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। If you're looking for Cartier, you're looking for Chrome Heart, you're looking for
0: वाह।
1: Chanel, Bulgari, Prada, Dolce Gabbana, किसी चीज का भी आप नियम लेंगे, you will find it at Kanda Optical।
0: क्या
1: सभी
0: बात
1: से
0: है।
1: सुनने वालों से विनती है, if you are in a market to buy glasses, sunglasses, contact lenses, eye exam, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होते हैं इवनिंग्स के लिए, वीकेंड के लिए एज वेल,
0: वेरी गुड।
1: तो आप दो तरीके से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारे कांडा ऑप्टिकल पे। या तो देखिए, यू कैन फोन एंड वॉक इन, विच इज 416-922-5263। उस नंबर पे आप फोन करेंगे, यू हैव ए चॉइस टू कनेक्ट विद एनी ऑफ कांडा ऑप्टिकल स्टोर ऑफ योर चॉइस, एंड यू कैन रिक्वेस्ट एन अपॉइंटमेंट विद देम, दे विल बुक इट फॉर यू, और गो टू कांडा ऑप्टिकल .com हमारी वेबसाइट पे। वहां जाएंगे तो आपको आई एग्जाम का सेक्शन मिलेगा, वहां क्लिक कीजिए, रिक्वेस्ट वहां भेज दीजिए, विल कनेक्ट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर यू। सो बड़ा इजी है टू कम टू कांडा ऑप्टिकल एंड सेव लॉट्स ऑफ मनी।
0: क्या बात है।
1: दूसरा, जो ब्रांड्स के बारे में बता दूं, नॉट ओनली वी कैरी द टॉप डिजाइनर फ्रेम्स, वी ऑल्सो कैरी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंसेज इन द मार्केट।
0: हाउ नाइस।
1: एक्सलर के, नाइकोन के, जाइस के, किसी भी तरह का आपको लेंस चाहिए, यू विल गेट ऑन ए ग्रेट ग्रेट ग्रेट प्राइसेस। प्लीज रिमेम्बर कांडा ऑप्टिकल, जो कि 416-922-5263, कांडा ऑप्टिकल .com हमारी वेबसाइट भी है, एंड ऑल्सो वी हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, so we time to time we try to put information on that to make sure everybody is up to date with this।
0: वंडरफुल, क्या बात है दोस्तों। कैंडा ऑप्टिकल .com विजिट कीजिएगा, बड़ी डायनामिक, वेरी अप टू डेट वेबसाइट है, जहां पर जाकर आपको स्टाइलिश चीजें दिखती हैं। और अश्विनी जी का जो इंस्टाग्राम पेज है ना, मेरे कहने से जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े कलाकार भी हैं, ही इज अ ग्रेट सिंगर, और बहुत जल्दी आप उनकी आवाज में कुछ सुनेंगे हमारे शो पर भी। अश्विनी जी, आई एम कुकिंग अप समथिंग, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सरप्राइज यू वन डे।
1: ये देखिए, ये तो मुझे ना तो गाने की कोई इन्फॉर्मेशन है, ना तो मुझे गाना आता है, ना ही हम सिंगर रियलिटी,
0: बट यू आर अ कलाकार, यू आर एन आर्टिस्ट,
1: वुड पार्टिसिपेट इफ समबडी से ओके लेट्स डू दिस, आई डू इट, आई नो आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट आई स्टिल वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, यू नो व्हाट,
0: यू आर अ गुड आर्टिस्ट, यू आर अ गुड सिंगर, एंड यू आर नॉट स्पॉइल्ड स्पॉट, यू आर वेरी स्पॉटी।
1: इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफी इनकरेजिंग वर्ड देते हो, तो आई मेक मी फील वेरी ग्रेट कि चलो हम आपका जो गाना मैं सुनता हूँ व्हेन एवर यू आर ऑन एयर मजा आता है. आपसे लेसन लेने हैं शालिनी जी.
0: अच्छा,
1: यू आर सो गुड. जब भी आप गाते हैं आप दिल से गाते हैं, इतना अच्छा लगता है ना. इट इज एन अमेजिंग.
0: थैंक यू सो मच अश्विनी जी, एंड ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट इट. और कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट जब भी कुछ थोड़ा सा भी परफॉर्म करता है या करती है और सामने वाला कह दे कि चेहरे पर स्माइल आ गई, तो बस वो एक बहुत एनफ होता है किसी आर्टिस्ट के लिए कि जो गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त, उन्हें हम अच्छी चीजें फीड करें, उन्हें हम पॉजिटिविटी फीड करें, ताकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डिफरेंस तो आए ना उनकी जिंदगी में.
1: बिल्कुल
0: राइट. तो जी, और कैंडा ऑप्टिकल पे जब आप जाएंगे दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वॉर्म्थ मिलेगी आपको सारी लोकेशंस पर. और जो भी डील्स यहाँ पर अश्विनी जी बता रहे हैं यूनिफॉर्मिटी के साथ, इट इज अवेलेबल ऑन ऑल द लोकेशंस. और एक और बहुत अच्छी बात है, जो भी लोकेशंस पर कैंडा ऑप्टिकल का स्टोर है, दैट इज वेरी वेरी नाइसली लोकेटेड. यू आर एबल टू सी दैट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. कैंडा ऑप्टिकल का जो आपको नजर बहुत जल्दी आ जाएगा विजुअली, इट्स वेरी अपीलिंग एंड वेरी इजिली यू नो अप्रोचेबल. तो CandaOptical.com विजिट करें. 416-922-CANDA-922-5263 इज द नंबर टू रीच ऑल द लोकेशंस ऑफ कैंडा ऑप्टिकल. तो थैंक यू सो मच अश्विनी जी हमसे जुड़ने के लिए. हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड.
1: थैंक यू जी. बाय फॉर
0: नाउ. Take care. Bye. Well, दोस्तों जी, 2:44 right now, आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार CMR FM 101.3 पर. और direct number to reach us during or after the show, 416-569-7812, 416-569-7812. और आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है वो बता दूं, लेकिन चलो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आज का विचार क्या है, आज का टॉपिक क्या है. तो आज का टॉपिक ये है, बहुत मजेदार टॉपिक है, और मैं सुनना चाहती हूँ इसके बारे में आप क्या चाहते हैं, आप कहना. तो अब जब हम छोटे होते हैं, अभी भी खैर दिल से तो हम सभी बच्चे हैं, लेकिन जब हम बच्चे होते थे, एक्चुअल में बच्चे होते थे, तो बड़ा सोचते थे ना कि ये चीज़ होती है इसको लग्जरी कहते हैं, एक अच्छी सी गाड़ी होना लग्जरी होती है, एक अच्छा सा मुझे ना वो शोरूम में पेन नज़र आ रहा है, आई विश आई हैव दैट पेन, आई विश मैं यू नो प्लेन में जाऊँ, घूमूँ प्लेन में. जो लोग नहीं बचपन में जा सके कभी प्लेन में बैठ कर, तो उनको वो एक लग्जरी लगती है. मुझे लगता है मैं क्रूज पे जाऊं आगे जाके कभी, मुझे लगता है मैं कभी ऑल इंक्लूसिव हॉलीडेज पर जाऊं, वेकेशंस पर जाऊं फैमिली के साथ, फॉरेन कंट्री क्या होती है मैं जाकर देखूं वहां पर रहना कैसे होता है, वगैरह वगैरह. तो बचपन में आप कभी भी सोचते थे कि ये मैं बड़ा होके मुझे ये चाहिए, तो वो कौन सी एक आपकी इच्छा थी जो आपको बचपन में चाहिए थी वो अब आपकी पूरी हो गई, कौन सी एक ऐसी विश थी जो आप बचपन में चाहते थे कि काश मुझे ये हो जाए, काश मेरी जिंदगी में ये आ जाए, और वो आपको अब मिल चुका है. हमें आपसे वो एक विश सुननी है, क्या है जरूर बताइएगा 416-593-0055 पर. दैट्स 416-593-0055. और वेल दोस्तों, अगला जो गाना है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, विच इज द लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर कैनेडा वाइड. घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर पर गोला बेसमेंट कैनोपी रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स चाहते हैं, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी में जरूर बात करें. फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. टॉप क्वालिटी मटीरियल्स, मॉडर्न डिजाइन, कंपेटिटिव प्राइसिंग. चाहे आपको सनरूम बनाना हो, कस्टम कैनोपी लगवानी हो, हर सोल्यूशन मिलता है एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ. फिर से बताऊं, फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. अपनी आउटडोर स्पेस को और सुंदर और फंक्शनल बना सकते हैं. 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में लोकेटेड है कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी. नंबर इज 416-831-4790, 416-831-4790. और अगर आप पेस्ट को लेकर परेशान हैं अपने घर में या अपने ऑफिसेज में, या वाइल्ड लाइफ आ गई है, चूहे खटमल कॉकरोच बेड बग्स, यू आर टायर्ड ऑफ ऑल दैट, देन वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है. आज ही बात करें अयान काशिफ जी से इस नंबर पर, 647-966-4355, 647-966-4355. बहुत प्यारा सा गाना है, दिल दिया गलना करांगे तेरे नाम, आपकी नजर करेंगे शॉन एक्सप्रेस पर।

0: दिल दिया गल्ला, बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर किया शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल्स का। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं और हमने पूछा था एक सवाल कि कौन सी एक चीज़ है जो बचपन में आपको लग्जरी लगती थी लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल लगती है। तो हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं आज के। जी गुड आफ्टरनून, कौन है हमारे साथ?
1: जी, मेरा नाम डॉक्टर कांजी है, डॉक्टर शब्बीर कांजी।
0: डॉक्टर कांजी, वेलकम टू द शो। बहुत
1: जी, शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपका शो मैं हमेशा सुनता हूँ जब भी मैं कार में होता हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और आप बड़ी मेहनत से ये शो को कामयाब करती हैं। थैंक यू वेरी मच।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो
1: तो जो
0: बताइए।
1: ख्वाहिश की आप बात कर रही हैं बचपन में, मैं असल में मैंने मेडिकल डॉक्टर था कराची पाकिस्तान से। मैंने फिर स्पेशलाइज किया ईयर नोज एंड थ्रोट एंड हेड एंड नेक सर्जरी में। तो वहाँ
0: ओके
1: पर वो जो सिविल हॉस्पिटल होता है, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर हम लोग कैनेडियन डॉक्टर्स को इनवाइट करते थे। वो वर्कशॉप कंडक्ट करते थे ऑन साइट, और वीडियो पे हम देखा करते थे बाहर बैठ के। तो
0: अच्छा
1: ऑपरेटिंग रूम में वो सर्जन होते थे, उनके साथ प्रोफेसर होते थे। जाहिर है सारे लोग तो नहीं जा सकते, तो जो ट्रेनी
0: जी
1: डॉक्टर्स होते हैं वो बाहर होते हैं और वो विजुलाइज करते हैं कि किस तरीके से ये सर्जरी कंडक्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ इतनी
0: राइट
1: अप टू डेट सर्जरी नहीं थी। तो इन शॉर्ट जो है वो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि ये कैनेडियन प्रोफेसर यहाँ आया है। काश कभी हो सकता भी नहीं है कि मैं कैनेडा जाके और वहाँ एज अ मेडिकल
0: जी,
1: डॉक्टर प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन वो
0: क्या बात
1: मेरी
0: है,
1: ख्वाहिश जो है पूरी हो गई, और आज मैं यहाँ
0: वाह
1: पर पिछले 22 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: वाह, देखिए क्या बात है। कहते हैं कि खुदा ने भी आपकी बात सुन ली। हर बात हमें मांगनी नहीं पड़ती, ऊपर वाला हमें हमेशा समझता है, सुनता है, हमें कहने की भी जरूरत
1: यस,
0: नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत
0: दैट
1: दफा
0: इज सो
1: ऐसा होता
0: अमेजिंग।
1: है, अगर बिलीफ आपका है,
0: जी
1: पक्का हो ना, और
0: जी जी
1: अल्लाह
0: जी
1: के साथ आप जुड़े रहें, भगवान के साथ
0: क्या बात
1: जुड़े
0: है,
1: रहें, तो बिल्कुल कामयाबी होती है।
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो
1: और
0: क्या आप
1: एक
0: खुश हैं
1: एक और
0: यहाँ पर
1: चीज
0: आकर?
1: एक और चीज एक और चीज मैं
0: जी
1: शॉर्टली ऐड करूं। अभी रिसेंटली
0: नो
1: मेरे
0: प्रॉब्लम।
1: फादर की डेथ हो गई, मैं कराची गया था, तो
0: ओके
1: वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे 3 दिन से। मैंने पहली फ्लाइट
0: ओहो,
1: पकड़ी और आखिरी 2 घंटे मुझे उनके साथ गुजारने को मिला। मैंने,
0: अरे वाह,
1: वो सेमी कॉन्शियस थे, और मैंने उनके
0: अरे
1: कान
0: वाह,
1: में कहा कि मैं आपका बेटा आ गया हूँ, आप फिक्र नहीं करें कनाडा से। तो वो
0: हाउ
1: जैसे मेरा
0: स्वीट।
1: इंतजार कर रहे थे, और 2 घंटे के बाद उनकी सांस खत्म हो गई। तो ये
0: ओ,
1: कनेक्शन होता है एक अल्लाह के
0: क्या बात,
1: थ्रू बंदे का,
0: क्या बात
1: ये
0: जी।
1: अपना यकीन अगर आपका अच्छा हो तो ये कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया
0: वाह वाह,
1: शालिनी जी, आपका ज्यादा वक्त
0: क्या
1: नहीं
0: बात,
1: लूंगा।
0: क्या बात है। वेरी इमोशनल स्टोरी और वेरी टचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया एंड सो सॉरी
1: थैंक
0: टू
1: यू।
0: नो अबाउट योर डैड, बट यू नो इसमें भी हम अच्छाई देखें कि एटलीस्ट आपको वो गोल्डन 2 घंटे जो आपने बिताए ना अपने डैड के साथ, अपने फादर के साथ, वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे और आपका उनके साथ कनेक्शन रहेगा। तो
1: या, और
0: बहुत बहुत
1: अफसोस नहीं
0: शुक्रिया,
1: होगा, अफसोस नहीं होगा कि
0: अफसोस
1: मैं
0: नहीं
1: उनको
0: होगा।
1: मिल नहीं सका। थैंक
0: बिल्कुल सही
1: यू।
0: बात है, बहुत बड़ी बात है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
1: नो प्रॉब्लम,
0: तो
1: नो प्रॉब्लम।
0: दोस्तों जी, डॉक्टर कांजी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ी प्यारी बात उन्होंने बोली कि जब उस वक्त उन्हें दिल करता था कि काश ऐसा हो जाए, और वो हो गया उनकी ज़िंदगी में। तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में होती है जब हम छोटे होते हैं, हमें लग्जरी लगती है कि क्या मैं वो वाले शूज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं वो ब्रांडेड पर्स ले सकती हूँ, और वाह वाली फीलिंग होती थी ना बचपन में, और अब वो एवरीडे लाइफ का पार्ट बन चुकी है। लाइक ब्रांडेड कार्स, अगर हम में से जो भी ब्रांडेड कार्स चलाते हैं, बचपन में हमें लगता था कि यू नो मैं एक एम्बेसडर या फिएट में घूमता हूँ, और ये कैसे मर्सिडीज में लोग घूमते हैं, कैसे लोग बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, उन्हें कैसा फील होता होगा। और आज हमें आदत पड़ चुकी होती है उन चीज़ों की। तो मैं वो सुनना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है, जैसे अभी हमारे कॉलर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, कई बार लोगों को पिज्ज़ा नहीं आदत होती कि पिज्ज़ा खाना, मुझे पिज्ज़ा खाना कैसा लगेगा बड़े होकर, कैन आई अफोर्ड टू ईट अ पिज्ज़ा, जो लोग बिल्कुल ही नहीं खा सके कभी। या आप अपना पर्सनल फ़ोन आपका होता होगा, छोटा सा फ़ोन होता होगा आपका, अच्छा फ़ोन आपको चाहिए हो, ब्रांडेड शूज़, एक फैंसी लंच बॉक्स, बचपन की वो कौन सी लग्जरी थी जो आज आपकी आदत बन चुकी है, ये मुझे आपसे सुनना है। 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर। आप हैं शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। 5697812। बस अब से कुछ ही देर में चलेंगे दुनिया भर की ताज़ा खबरों की तरफ। शेफाली हमारे साथ जुड़ने लगी हैं और आपको बता दूं आज के दिन में क्या खास हो रहा है। आज का दिन है कल्चर, फन, म्यूजिक एंड नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट कॉम्बो। 23rd of May है आज की तारीख और किन किन अमेजिंग डेज के नाम है आज का दिन। सबसे पहले कनेडियन इमिग्रेंट डे, हम सभी को सैल्यूट है क्योंकि आज है कनेडियन इमिग्रेंट्स डे। ये दिन सेलिब्रेट करता है उन इमिग्रेंट्स को जिन्होंने कनाडा को अपना घर बनाया और इस देश को ग्रो करने में पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूट किया। डाइवर्सिटी इज कनाडाज रियल स्ट्रेंथ। इसके साथ आज का सबसे इंटरेस्टिंग डे है बिटकॉइन पिज्जा डे। याद है पहली बार बिटकॉइन से पिज्जा खरीदा गया था, आज वो पिज्जा दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पिज्जा बन चुका है। बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डे, आज अगर ढोलक, तबला, गिटार खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए, आज परफेक्ट डे है एक म्यूजिकल जर्नी को शुरू करने का। इंटरनेशनल कोको मॉम डे, वर्किंग मॉम्स, मल्टीटास्किंग मॉम्स, सुपर मॉम्स को है सैल्यूट आज के दिन में। नेशनल कूलर डे भी है आज, कोल्ड ड्रिंक्स, चिल्ड वाइब्स, समर फील इज टोटली ऑन। और नेशनल वनीला पुडिंग डे है आज, सॉफ्ट क्रीमी डिलिशियस डेजर्ट तो बनता ही है। इसके अलावा आज फाइनली मिस्ट्री लवर्स के लिए बड़ा अच्छा दिन है, आज है शर्लॉक होम्स डे। डिटेक्टिव स्टोरीज, सस्पेंस और इंटेलिजेंस का सेलिब्रेशन है। और वेल, आज रात में ज़रूर एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी थ्रिलर फिल्म ज़रूर देख लीजिए, मिस्ट्री फिल्म ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं एक छोटे से टाइनी से ब्रेक की तरफ, फिर चलेंगे आज की ताज़ा खबरों की तरफ शॉन एक्सप्रेस पर। Stay tuned.
2: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.

0: पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम। इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300
3: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
4: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
5: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट डे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
6: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसी सागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
5: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810, मिड्डा फर्नीचर।
7: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
8: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
9: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
10: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विन लाइफटाइम। क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो विन लाइफटाइम लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना। फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा। लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। कॉल 9052061008 और विजिट winlifetime.com। मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद, स्वैग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26। एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर। कॉल 647-766-4335, 647-766-4335।
11: अब संवरने का वक्त तो उसको नहीं जब हमें देखने की फुर्सत है। इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मच गई। ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट के देशों की तेल सप्लाई पर असर पड़ा, तब वेनेजुएला अचानक भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा है। एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केपलर के डेटा के मुताबिक वेनेजुएला ने मई 2026 में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों देशों को पीछे छोड़ दिया है। अभी केवल रूस और यूएई ने ही वेनेजुएला से ज्यादा तेल सप्लाई किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले करीब 50% बढ़ गई है। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की हत्या के मामले में मुजफ्फराबाद के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अब्दुल्ला कमाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला कमाल पाकिस्तान के वाह कैंट का रहने वाला है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि हत्या में इसी हथियार का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह कई ऑनलाइन पार्टी बन गई हैं जो तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। वहां भी कॉकरोच आवामी पार्टी और कॉकरोच आवामी लीग जैसे कई ग्रुप बनने लगे हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर कॉकरोच आवामी पार्टी नाम का पेज सामने आया। इस पेज ने खुलकर माना कि वो भारतीय आंदोलन से प्रेरित है। उसके बायो में लिखा है, हाँ कॉपी किया है तो क्या हुआ, मकसद वही है। खबर लिखे जाने तक, खबर आपको बताए जाने तक इस अकाउंट के 1600 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। पाकिस्तानी अकाउंट का कहना है कि वो किसी एक व्यक्ति या टीम से जुड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी जेंजी पीढ़ी की आवाज बनना चाहता है। इसका लोगो भारतीय पार्टी जैसा ही है, लेकिन रंग हरा और सफेद रखा गया है। वे खुद को इमरान खान की पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी जैसी मुख्य धारा की पार्टियों के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबर।
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों, आपका स्वागत करती है शालिनी CMRFM 101.3 पर विन लाइफ टाइम के इस सेगमेंट में. और आज फ्राइडे का फैंटास्टिक दिन है, आज बड़ा हैपनिंग सा दिन है. और इस दिन अगर आपने एक बात सुन ली और उस बात पर अमल कर लिया तो आपकी आने वाली जिंदगी सुधर सकती है, यानी आप जिंदगी भर जीत सकते हैं. कैसे जीत सकते हैं जानने के लिए आपको लिए चलते हैं विन लाइफ टाइम की तरफ. और हमारे साथ जुड़ेंगे रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी. Raffi ji, good afternoon and welcome to the show.
2: Thank you very much. Good evening, good afternoon to you and your listeners.
1: वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच वंस अगेन राफी जी. तो चलिए, फ्राइडे आ चुका है और फ्राइडे सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि ये एक वर्किंग वीक का लास्ट डे होता है और इसके बाद लोगों को प्लानिंग करनी होती है सैटरडे की. और हमारे कई सारे लिसनर्स ने आपकी सैटरडे का जो फ्री सेमिनार है उसके लिए अपनी सीट्स बुक की हैं. पर जो लोग नहीं कर सके उनको बताएं कि कल ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से हम सभी लोग अपनी लाइफ को एक बड़ा पॉजिटिव सा टर्न दे सकते हैं.
2: देखिए, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी हर मौके पे आती है. 2008 से हम सेमिनार करते आ रहे हैं, हजारों लोगों ने सेमिनार सुना है, कुछ पहली दफा सुन रहे हैं. मैं यही कहता हूं कि अगर आपने कुछ ऐसा स्किल लाइफ में लेके आना है कि आपको कल आने वाले पैसों की स्ट्रेस ना हो, आपको अपनी जॉब का खतरा ना हो, एम्प्लॉयर का खतरा ना हो, बिजनेस का खतरा ना हो, तो कोई ऐसी स्किल सीख लें जो रिसेशन प्रूफ है. ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये हम सिखाते हैं, पिछले 18 साल से सिखाते आए हैं. ऑफकोर्स जब आप भी हमारा ऐड लेती रही हैं तो हम यही कहते थे पहले इसको ज्वाइन करें फिर आपकी कन्वेक्शन खुद ही आ जाएगी.
1: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है. तो कल आपका सेमिनार है राफी जी, तो ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, क्या प्री रिक्विजिट चाहिए इस ट्रेडिंग बिजनेस को सीखने के लिए और इससे पैसे कमाने के लिए.
2: ट्रेडिंग की प्री रिक्विजिट यही है, आप गुड फॉलोअर है, वो आपको इंस्ट्रक्शन हम जो दे हैं वो फॉलो कर सकें. ना आपको कोई अकाउंटिंग चाहिए, ना सॉफ्टवेयर की कोई स्किल चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, सिर्फ हमें फॉलो करें और फिर एक्सपर्ट सुपरविजन के नीचे हम आपको बिठा देते हैं और एनीवेयर फ्रॉम 14 डेज टू 2 मंथ्स आप सीख जाते हैं.
1: 14 दिनों से 2 महीने तक का टाइम देना है दोस्तों आपको. आपने जैसे सुना तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो यू नो 14 दिन थोड़े से कम स्मार्ट हैं, या मैं ये कहूं कि थोड़ा सा कम वक्त दे रहे हैं अगर, तो शायद 2 महीने आपको लग जाएं, राइट, अगर आप किसी और काम में हैं. तो क्या इस काम को अपनी रेगुलर जॉब के साथ किया जा सकता है राफी जी, और इफ यस तो इसमें कितनी फंडिंग डालनी होती है?
2: आसान क्वेश्चन पहले करता हूँ, कोई फंडिंग नहीं डालनी, क्योंकि मैथ्स के भी पेपर में पहले लोग स्टूडेंट्स आसान कर लेते हैं ना. तो आपके 2 क्वेश्चन है, सबसे पहला है कि आपने अपने पैसे इस इंडस्ट्री में नहीं डालने. ये हमारी, मैं आपसे बेग करता हूँ कि ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो अपने पैसे ना लेके आए. हमारे पास ऐसी फर्म्स हैं जो कैपिटल दे देती हैं, सारे का सारा रिस्क वो लेती हैं. नंबर 2, कौन कर सकता है, कोई भी करे, पार्ट टाइम जरूर शुरू करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता लें. लो स्टार्ट करते हैं $50 to $100 अ डे और आज हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं. आज के बी के पीपल हैव टेकन $15,000-$20,000 होम टुडे विदाउट इन्वेस्टिंग.
1: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग. तो वेल दोस्तों, कल बिल्कुल फ्री सेमिनार है और दोपहर के 1 बजे मिसेस आगा की 2 लोकेशंस पर होने जा रहा है. फ्री सीट है, आप जल्द से जल्द बुक कराएं. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी. winlifetime.com 10 नंबर के फासलों पर खड़ी है आपकी अपॉर्चुनिटी. गो एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स टू लेट. 905-206-1008, दैट्स 905-206-1008. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए राफी जी. हैव अ ग्रेट वीकेंड, फिर आपसे जुड़ेंगे.
2: थैंक यू जी,
1: टेक केयर. शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया. वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. ये जानकारी दुकानदार विक्रम कुमार ने शुक्रवार को दी. उसने बताया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कॉल आ रहे हैं. कॉल करने वाले लोग उनकी दुकान उड़ाने की धमकी दे रहे हैं. विक्रम ने बताया कि एक वीडियो कॉल में कुछ लोग उन्हें हथियार भी दिखा रहे थे, इसके चलते वे और उनका परिवार काफी तनाव में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को चुनाव प्रचार
3: के दौरान झाड़ग्राम में चुनावी रैली की थी। रोड शो के दौरान उन्होंने बिक्रम की दुकान से झालमुड़ी खरीद कर खाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरी में क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के आरक्षण लेने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा, अगर माता पिता दोनों आईएएस अफसर हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ऐसे में अगर संपन्न बच्चों के लिए फिर से आरक्षण मांगा जाए तो हम कभी भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जस्टिस बीबी नागरत्न और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने ये कमेंट किया जब वे कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दो भारतीय पर्वतारोहियों की उतरते समय मौत हो गई। ये जानकारी शुक्रवार को नेपाल अभियान संचालक संघ के महासचिव ऋषि भंडारी ने दी। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार तिवारी और संदीप परे नामक पर्वतारोही एवरेस्ट से उतरते समय बुरी तरह थक गए थे, इससे उनकी सांसें फूल गई थीं। भंडारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आर्य ने बुधवार को जबकि अरुण तिवारी ने गुरुवार को शाम को करीब 5:30 बजे एवरेस्ट को फतह किया था। अरुण तिवारी की मौत हिलेरी स्टेप के पास हुई। वहीं संदीप अरे को शेरपा रेस्क्यू टीम कैंप 2 तक ले आई थी। कैंप पहुंचने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। भारत में अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे। AQI वेदर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये सभी शहर भारत के हैं। इनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज्यादा गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 35 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री से ऊपर रहा है। उधर गर्मी की वजह से हालात ये हैं कि पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदल दिया। अब दफ्तर और स्कूल 7:30 बजे खुलेंगे और 1:30 बजे बंद होंगे। पंजाब में गर्मी को देखते हुए सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदल दिया है। अब सभी दफ्तर और सरकारी स्कूल 7:30 बजे खुलेंगे, 1:30 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। सभी क्लासों के स्कूलों के लिए ये आदेश दिए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। जालंधर, लुधियाना और पठानकोट समेत कई जगह हल्की बारिश हुई। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का हाल ही में एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कंगना मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहने नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उनके जो चाहने वाले हैं कंगना के गुपचुप शादी करने की अफवाह चला रहे हैं। हालांकि ये उनके किसी असल शादी का लुक नहीं है। अब कंगना ने खुद इस अफवाह पर सफाई दी है। कंगना का ये पारंपरिक लुक उनकी आने वाली फिल्म क्वीन 2 की शूटिंग का हिस्सा है, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। कंगना ने कहा कि वे गुपचुप शादी नहीं करेंगी। कंगना ने इन अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैं हर दिन शहर में और उसके आसपास शूटिंग कर रही हूँ। किसी ने कैरेक्टर मेकअप के साथ ये रैंडम तस्वीर क्लिक कर ली और अब मुझे इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन शादीशुदा महिला के लुक में ऐसी क्या बड़ी बात है। एक्टर्स हर तरह के रोल निभाते हैं। मैं गुपचुप शादी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूं। ये वादा किया कंगना रनौत ने। तो शाओन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
4: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
4: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
6: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
7: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी.
8: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
9: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
8: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
9: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
8: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
10: Jamming as much variety into your workday as possible.
11: Radio Resync complete.
12: Hit music.
13: Hit after hot hit.

0: जी दोस्तों, स्वीटी तेरा ड्रामा अब ड्रामा व्रामा खत्म हो गया है, क्योंकि अब जो बात करेंगे ना बिल्कुल असली बात करेंगे, यानी आपके घरों को और आपके ऑफिसर्स को बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में लेकर आना है, बिकॉज इट्स अ ग्रेट वेदर एंड आई एम श्योर यू वांट टू एंटरटेन योर लव्ड वंस। और आपके ऑफिस में भी अगर कोई दफ्तरों में भी मिलने आते हैं आपके बिजनेस एसोसिएट्स, आपके क्लाइंट्स, तो इट हैज़ टू लुक गुड। और अगर आप एक वर्ल्ड क्लास विंडोज एंड डोर्स लगा देते हैं, और वो भी यश विंडोज एंड डोर से, जहां पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, एनर्जी एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ड्यूरेबिलिटी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जॉइनिंग अस नाउ ऑन एयर इज धर्म जी, वन एंड ओनली पर्सन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स। धर्म जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम।
1: आपको सारे श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ और सबको वेलकम करता हूँ मैडम
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म जी हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम लिसनर्स ने जब आपसे बातचीत की तो उन्हें इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, दैट यू आर सच अ ग्राउंडेड पर्सन, और इतनी अच्छी तरीके से इतना टाइमली फिनिश हुआ है। जिन्होंने भी आपके थ्रू कोई भी अपने घर में विंडोज एंड डोर्स का इंस्टॉलेशन कराया है, पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइम लाइन पे चला है। यूजुअली ऐसा नहीं होता धर्म जी, जब हम ऐसा कुछ भी घर में कराते हैं इट टेक्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, बट दैट्स अमेजिंग, योर टीम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब।
1: हम लोगों ने अब तक 19,000 जॉब 14 सालों में कंप्लीट कर चुके हैं। दैट्स
0: क्या बात,
1: ये हमारा इतना लंबा एक्सपीरियंस है।
0: क्या बात है, 14 सालों में 19,000 से ज्यादा, मतलब 1,000 से भी ज्यादा पर ईयर, दैट्स अ लॉट।
1: या धीरे धीरे धीरे बढ़ती गई, अभी तो काफी ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती गई।
0: अमेजिंग। तो धर्म जी अपने लफ्जों में बताइए कि क्यों चुना जाए यश विंडोज एंड डोर्स को, अगर कोई भी इंस्टॉल कराना चाहे विंडोज एंड डोर्स, क्या खास बात है?
1: पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ओंटारियो में 47 बड़ी कंपनी है, इसमें से एक यश विंडोज है, जिसको अच्छा। जिसको लोग रिस्पेक्ट से देते हैं, और हमारी 40,000 के ऊपर की फैक्ट्री है। क्यों यश विंडो बेहतर है? क्योंकि 47 में से 46 कंपनीज 95% होलसेल करती हैं, 5% रिटेल करती हैं। यश विंडो अकेली ऐसी कंपनी है जो 95% रिटेल करती है और 5% होलसेल करती है।
0: अरे वाह,
1: आप मुझे पूछोगे कि होलसेल में आपको इतना कम इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि जहां जो जो होलसेल यहां आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होलसेल हमें विंडो डोर में कॉम्प्रोमाइज की टर्म्स पहले डाल देता है कि मुझे ग्लास लोई 272 चाहिए, लोई 180 चाहिए, इतने ऑर्गन गैस कम डलवाना, आपका ये रिसाइकल में डलवाना, ये सस्ता वाला हार्डवेयर डाल देना क्योंकि इसकी कीमत सस्ती बनाओ, ये सारे चक्कर हो, यानी ये सारी जो बात होती है वो कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर के अगेंस्ट होती है। इसलिए हम ज्यादातर होलसेल को एंटरटेन इसलिए नहीं करते और डायरेक्टली रिटेल को इसलिए बेचते हैं। विंडो की फ्रेम की 30 साल की वारंटी, ग्लास अकेली यश विंडो ऐसी है जो बाय डिफॉल्ट लोई 366 दे रही है।
0: क्या बात है,
1: विंटर एंड समर में दोनों में फायदा करता है, उसकी भी 30 साल की वारंटी।
0: अमेजिंग, वाह,
1: मल्टीपल लॉक सिस्टम ओंटारियो में अकेली ऐसी कंपनी है जो 30 साल की वारंटी देती है। साथ में छोटा बच्चा या सीनियर इजीली खोल पाएंगे, बंद कर पाएंगे, इतना स्मूथ मल्टीपल लॉक सिस्टम है, उसकी भी 1-2 साल की वारंटी नहीं है, पूरी 30 साल की वारंटी है।
0: ब्यूटिफुल, वेरी नाइस।
1: ये क्या सारी चीजों में अगर आप हमें कोई भी होलसेल बोलता है कि हमें हम इसमें कॉम्प्रोमाइज करके दे दो, तो हम उसको अफोर्ड कर ही नहीं पाते, क्योंकि वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी और प्राइस। इसलिए हम, हमारी सबसे कम प्राइस है और वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, क्योंकि यहाँ कोई मिडल मैन नहीं है।
0: वेरी नाइस, मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की इंस्टॉलेशन है, और आई हैव सीन योर फैक्ट्री, सच अ ग्रैंड फैक्ट्री।

0: और कितनी सारी तरह तरह की आपने मुझे विंडोज दिखाई थी, डोर्स दिखाए थे, और बस मुझे उस दिन से पहले पता नहीं था कि इतनी वैरायटी भी होती है। और आपने जो एक बात बोली ना कि लोग अपग्रेड के बाद वो चीज़ देते हैं जो आप बाय डिफॉल्ट देते हैं, मांगना नहीं पड़ता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिलती है, चाहे आप एक विंडो लगवाओ चाहे 10 दरवाजे विंडोज लगवाओ। इज दैट राइट?
1: पहले तो ऑन्टारियो, पहले तो यश विंडोज पूरे ऑन्टारियो में सर्विस दे रही है। ऐसा नहीं
0: जी
1: है कि आप ब्राम्पटन मिसिस आगे के आगे हम नहीं जाते, अक्रॉस ऑन्टारियो हमारी 2 जॉब अगले हफ्ते जा रही है। एक जॉब जा रही है संडे, जो सीधी जा रही है थंडर बे, और एक जॉब आपको बड़ी सरप्राइज ली होगी, ऑल द वे फ्रॉम हियर टू अल्बर्टा।
0: जी,
1: 4 दिन की, 4 दिन या 5 दिन हमारी ट्रक जाएगी और वहां जाके पूरी 53 के ट्रेलर इंस्टॉल करके वो वापस आएगी। तो वहां तक लोग हमारी प्रोडक्ट मांग रहे हैं।
0: वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। तो इसके साथ साथ धर्म जी, अगर कोई हमारे लिसनर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो आपकी बड़ी फास्ट ग्रोइंग टीम है, और किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर वो ये खोल सकते हैं? बिकॉज आपका बिजनेस का जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रेडी, ऑलरेडी सिस्टम में सेट है सारा कुछ, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, तो कहाँ पर कैसे खोल सकते हैं?
1: आप फॉर एग्जाम्पल बैठे हो ओकविल में, तो ओकविल में आपका एक शोरूम होगा और विंडो डोर का आपका शोरूम होगा जिसको आपको संभालना है। आपको विंडो में एक तो होती है सेल्स, मेजरमेंट, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज, तो आपको सेल्स के सिवा कुछ नहीं करना। मेजरमेंट हम ही करेंगे, इंस्टॉलेशन हम ही करेंगे और साथ में सर्विसेज हम ही प्रोवाइड करेंगे। इवन दो आपको 70-90% तक का प्रॉफिट हम आपके साथ शेयर करते हैं।
0: वाओ,
1: तो ये कोई भी, तो मैं सारे व्यापारी, जो जो व्यापारी हैं, जिसको कुछ व्यापारी बनना है, और तो विंडो डोर ऐसा सेगमेंट है जो हर साल कंसिस्टेंट आप ग्रो करते जाते हो। जैसे जैसे आपका नाम बड़ा होता जाता है आपके टाउन में, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, क्योंकि मिलियंस ऑफ घरों में आपको कई चुने हुए घर ही आपको लेके भी आप बहुत आगे निकल जा सकते हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
0: जी जी, बिल्कुल, वेरी नाइस, क्या बात है। तो यहाँ पर मैं आपका नंबर दे दूं धर्म जी, हमारे लिसनर्स जल्द से जल्द आपसे बात कर लें, विंडोज एंड डोर्स आपसे लेना चाहते हैं, इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस खोलना चाहते हैं। यश विंडोज एंड डोर्स का हाथ आप थाम सकते हैं। 416 नंबर आप नोट कर लें, 416-732-3600, 416-732-3600। धर्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे हम। ऑल द बेस्ट,
1: थैंक यू वेरी मच मैम, हैव अ वंडरफुल डे,
0: यू टू, टेक केयर। जी दोस्तों, आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार सीएमआर एफएम 101.3 पर, इट्स 3:27 राइट नाउ, और आपसे पूछा था एक सवाल और सिर्फ एक ही जवाब आया अभी तक तो मेरे पास, कि कौन सी ऐसी चीज है जो बचपन में आपको लगती थी हार्ड टू रीच, लेकिन राइट नाउ यू हैव दैट थिंग, और अब आपको लगती है वो सिंपल सी चीज, वो कौन सी एक चीज है बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको कुछ डील्स भी आपको हम बताएंगे, अगर आप दुनिया भर में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, देओल ट्रैवल की डील्स आप जरूर ले जाइए। दिल्ली से टोरंटो स्पेशल प्राइस है, अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक राउंड ट्रिप लगा है $1,320, लिमिटेड सीट्स लेफ्ट हैं। दिल्ली से टोरंटो वन वे जा सकते हैं अक्टूबर नवंबर में 8:30 में, और साथ ही टोरंटो से अमृतसर दिल्ली जा सकते हैं सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,650 with 2 bags. Now, 2 locations to serve you: Etobicoke and Brampton, 905-588-5100 and 905-588-4200. एक बहुत अच्छा सा गाना है, मजेदार सा गाना है, जिसकी फरमाइश आई है डेफिनेटली। ये गाना इज ऑलरेडी लाइंड अप, विच इज ब्रॉट यू बाय मिड्डा फर्नीचर गैलरी। 5वीं लोकेशन की आज लॉन्च हो चुकी है, हमारे साथ पवन मिड्डा जी जुड़ेंगे एक्सेप्शनली गुड ऑफर्स के साथ। पवन जी, वेलकम बैक।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच जी, और ये सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिड्डा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर है। 4 लोकेशन थी और 5 हो गई हैं आपकी दुआओं से, तो अभी कह सकते हैं कि 5 लोकेशन से आपकी सेवा करते हैं। ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारबरो, लंदन, और एक ही फोन नंबर है हमारा 416-901-2810 मिडा फर्नीचर नोन फॉर ब्रांड नेम, मॉडल नंबर कंपेयर करने के बाद हमारी प्राइस सस्ती होती है बाजार से, और सस्ती होने का वजह है आपका प्यार, आप प्यार देते हैं, साथ देते हैं, बिजनेस देते हैं, जिससे वॉल्यूम हमें मिलता है, जो डिस्काउंट आपकी वजह से मिलता है आपको वापस कर देते हैं। तो आपको आना पड़ेगा मिडा फर्नीचर, जो सी भी लोकेशन आपके घर के पास पड़ती है, सभी पे सेम फॉर्मेट है, सारा सामान वही सिमिलर सामान है सभी पे, क्योंकि थोड़ा किसी का साइज छोटा बड़ा होगा तो एक आधी आइटम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक ही फॉर्मेट रख प्रोफेशनली हमने, जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े स्टोर करते हैं वो मिडा फर्नीचर ने कर दिखाया, और पहला स्टोर है। सस्ता सस्ता तो हर कोई बहन भाई कह देता है कि हम सस्ते हैं, हम सस्ते हैं, हम सस्ते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ पर प्रूफ दे रहा हूँ। तो आप जब कहेंगे ना फिर बात बनती है, कि आपको जब लगेगा आप प्रूव कर लेंगे, जब आपके टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो रही बात ग्रैंड ओपनिंग की, फ्लायर बहुत जल्दी आपके घर आने वाला है, वेबसाइट पे आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। गिफ्ट की बात भी हो रही है, फ्री गिफ्ट आपको दिया जाएगा हर परचेज के साथ, और गिफ्ट भी ट्वाइस भी देंगे, एशले के देंगे आपको, हमने रखे हैं एशले के टेबल लैंप रखे हैं, एशले की रग्स रखी हैं 5x8 की, एशले की हमने पिक्चर्स रखी हैं, एशले के हमने पोफो जो मूड़े से आते हैं वो रखे हैं। तो जो आपकी ऑनलाइन आप प्राइस देख सकते हैं, कोई 200 का है, कोई 300 का है, कोई मतलब अपने, और हमने कोशिश करी है, हमने मैट्रिक्स प्रोटेक्टर भी आपको हमने एक रखा है कि जो बाजार में 149 का मिलता है, जिसमें बग्स भी नहीं आएंगे, चेन लगी रहेगी ऑल द वे, वाटर प्रूफ भी होगा, आपकी मैट्रेस जिंदगी खराब नहीं होगी। तो गिफ्ट देना तो दिल से देना मांगते हैं हम, आपकी रिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप हमें प्यार देते आए और हम चाहते हैं ये प्यार आप देते रहें हमें। रही बात डीलों की, यस मैंने जो कनेडियन मेड सेक्शनल हम ही बेचते हैं, उसे 1600 से कम नहीं बेचते, आपको 1199 का, हमने सप्लायर से भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिया, और जो डिस्काउंट मिला तो कॉस्ट से भी कम हो गया। कलर च्वाइस के साथ आपको किसी भी लोकेशन पे आएंगे, और मैंने पिछले लिंक में कहा था कि 10 फैमिली पर स्टोर, 50 फैमिली टोटल फायदा उठा सकती है। टॉप ग्रेन लेदर और ऑल ओवर लेदर, सबसे बड़ी लेदर मैच नहीं, ऑल ओवर लेदर, 7 कलर की च्वाइस। और जब आपको कंपनी का नाम रेडियो पे नहीं, जब आप आएंगे तो आप उसकी वेबसाइट सर्च करेंगे, नॉर्थ अमेरिका को सबसे ज्यादा सप्लाई वो कंपनी करती है, बहुत ब्रांड नेम, वो पिछले 58 ईयर्स से करती है। तो मतलब वो हम आपके लिए वो चाहते हैं। मैट्रेस आपको नेक्टर, आजकल जो यूएस का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत यूट्यूब पे और उधर छाया हुआ है, 365 डेज आपको स्लीप वारंटी मिल रही है, 364 दिन बाद भी आपने कह दिया कि नहीं नहीं यार इसकी भी तो हमने हमारे से गलती हो गई है, और वो मैट्रेस दे जाएं और दूसरी ले जाएं। तो मतलब ये है मिडा फर्नीचर, जो बड़े कारपोरेट स्टोर करते हैं अभी भी, लेकिन उनकी प्राइसेस 30-40% ज्यादा होती है, लेकिन मिडा फर्नीचर तो आपका अपना परिवार का स्टोर है, फैमिली स्टोर है, तो आप आए हमें अजमाएं पहले फिर अपना बनाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। मिडा फर्नीचर, मिडा फर्नीचर, मिडा फर्नीचर, 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत जल्दी आपसे फिर हम जुड़ेंगे। 416-901-2810, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।
2: थैंक यू जी।
0: कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी को यूं ही मुस्करा के जी लो, जिंदगी को यूं ही मुस्करा के जी लो, हर पल को थोड़ा और रंगीन कर लो, कल का क्या पता दोस्तों, आज को ही अपना बना लो, यानी आज में जिए दोस्तों। आपके चलते हैं 90s की वाइब्स की तरफ, और 90s का जो पार्टी एंथम है जिसमें सैफ अली खान का कूल डूड इमेज पूरी तरह से वेल डिफाइंड होता है, ओले ओले आपकी नजर।

0: एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
2: जी बिल्कुल दोस्तों, एक्सीडेंट ये जो लफ्ज होता है ना, ये बड़ा हमें परेशान कर देता है। हम इसके बारे में सोचते हैं तब परेशान हो जाते हैं, और खुदा न खास्ता कभी हमारे साथ हो गया ऐसा तो, या किसी हमारे अपने के साथ हो गया, तो फिर तो बस भगवान ही मालिक है हमारा। तो ऐसे में हमें चाहिए एक ऐसे इंसान का साथ जो हमें सही गाइडेंस दे। सबसे पहले जब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तब वो गाइडेंस दे जिसका दिमाग बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हो, और आपको बिल्कुल अपने आप में कंट्रोल रखते हुए बताए कि नहीं, तुम्हारा अगला स्टेप ये होना चाहिए। अगर पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा स्टेप आपने गलत कर दिया, तो बस फिर आपका जो है इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे इश्यूज ना क्रिएट हों, आपको सही लीगल हेल्प मिले, आपको सीधे लॉयर्स तक पहुंचाया जाए। और उसके लिए एक नंबर जो आपको अपने फ़ोन्स में सेव करना है, आपके अपनों तक भी पहुँचाना है, बहुत आसान नंबर है। अंजुम कुरैशी जी का रिनाउंड नेम है एक्सीडेंट क्लेम की जब भी बात होती है। नंबर है 416-570-0157। आज अंजुम जी से हम सबसे पहले यही पूछते हैं उनके वेलकम के साथ कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए व्हेन वी गेट इनटू अ कार एक्सीडेंट। अंजुम जी वेलकम।
3: थैंक यू वेरी मच, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और जो जब हम बात करते हैं, तो पहले तो स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ इंतहाई प्यार मोहब्बत से बात करें, क्योंकि कार एक्सीडेंट कोई भी जानबूझकर नहीं करता। वहां पर लाते मारना, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना, चीखना चिल्लाना, ये कोई बात ऐसी नहीं ठीक होती, क्योंकि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पर कानून का इम्प्लीमेंट होता है, और जहां पर कानून का इम्प्लीमेंट होता है वहां पर आपको अपना पावर और अपना जोर दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब हम अपनी बहुत मेहनत की मनी का हर महीने प्रीमियम पे करते हैं, तो इसका मकसद हुआ कि हमने अपने लिए पीस ऑफ माइंड खरीदा हुआ है, यानी कि हमने पॉलिसी का पैसा वक्त पे दिया, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे वादा किया कि अगर हमारा कार एक्सीडेंट होगा तो हमें पर्सनल इंजरी क्लेम के पैसे मिलेंगे, गाड़ी के पैसे मिलेंगे, ट्रीटमेंट के पैसे मिलेंगे, अगर आपका फुल कवरेज है। तो जब हमें प्लेट में रख के सारी चीजें मिल रही हैं, तो उसके लिए हमें इतने ज्यादा तगोदो करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ आपको एक लॉयर की जरूरत होती है, और जैसा कि हम हमेशा आके आपको अवेयरनेस देते हैं, बताते हैं कि जब हम सोचते हैं कि लॉयर का, तो हमें लगता है कि फीस हम कहां से पे करेंगे, और हमारे लिए यहां पर कंटेंजेंट फीस होती है, यानी अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट हो जाता है आपको अपफ्रंट फीस नहीं देनी, बल्कि एक लॉयर आपको अपना क्लेम दिलवाने के बाद ही आपसे फीस लेता है। मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, 29 years मुझे हो चुके हैं, और जब आप इतने लंबे अरसे से कोई नाम सुनते हो तो आपका एतमाद खुद ब खुद बन जाता है। 416-570-0157। जिंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम जी, आपका नंबर फिर से बता दूं, 416-570-0157। ये नंबर अपने पास सेव कर लें, सही डिसीजन आज और अभी लें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इट्स 3:40 राइट नाउ। आप हैं शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3। फिर से बता दें देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स। आप जो है कॉल कर सकते हैं देओल ट्रैवल में इफ़ यू वांट टू गो टू एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। अगर आपको वेकेशन पैकेजेस लेने हैं और कहीं भी जाना है, या वैसे ही घूमने जाना है आपको, तो लेटेस्ट डील्स की तरफ चलेंगे। दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर से जनवरी फरवरी राउंड ट्रिप लगा है, $1,320 लिमिटेड सीट्स हैं। नाउ अक्टूबर नवंबर 1 way 8:30। टोरंटो से अमृतसर दिल्ली सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,650 दो बैग्स के साथ। Brampton and Etobicoke, two locations to serve you, 905-588-5100 and 905-588-4200, Deol Travel. आपसे मैंने पूछा था एक सवाल कि बचपन में किसी चीज का आप सपना देखते थे कि काश ये चीज मेरी हो जाए, और इस वक्त आपके पास वो चीज है, अब आपको सिंपल सी बेसिक सी चीज लगती है, वो कौन सी चीज है हमें बताइएगा 416-593-0055 पर। एक ब्रेक लेंगे, वील बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
4: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस. चलिए दोस्तों, फिर से आपका हम वेलकम करते हैं इस फ्राइडे की फैंटास्टिक आफ्टरनून में. और एक बहुत प्यारे गाने की फरमाइश आई है, उससे पहले चलिए आपकी पॉकेट्स में थोड़ी फंडिंग डाली जाए, आपको ऐसा सुनहरा मौका दिया जाए जो आप तक पहुंचा रहे हैं यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक, यानी सरकार आपके स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही है. साथ ही रहने के खर्चों के लिए हर साल लगभग 30,000 से 100,000 तक की फंडिंग भी देती है. और मजे की बात यह है, इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा नॉन रिफंडेबल ग्रांट होता है, यानी ऐसा पैसा जो आपको वापस नहीं करना. तो नंबर नोट करें सबसे पहले यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक, 4372643175. हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नागपाल जी लेटेस्ट बातचीत के साथ. नागपाल जी, वेलकम है आपका.
2: थैंक यू वेरी मच जी.
1: जी, तो सबसे पहले नागपाल जी, मैं पूछना चाहूंगी आपसे एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से लोग इन नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एलिजिबल हैं, यानी वो पैसा जो वापस नहीं करना होता.
2: हाँ जी, इसमें लाइक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है. गवर्नमेंट का प्रोग्राम अपने सिटीजंस, अपने आवाम के लिए ही होगा. तो PR स्टेटस, आपके पास रिफ्यूजी का केस अप्रूव हो गया है आपका, ये आप सिटीजन है. एंड मेन थिंग, इनकम अगर आपकी कम है 2024 के नोट असेसमेंट पे, लेस देन $70,000, लेस यूज कर रहा हूँ मैं, लेस देन $70,000, तो ही आपको इसका फायदा है. क्योंकि अगर कोई बैंक फंडिंग कर रहा था, बोलते हैं मोर मोर मोर, लोगों में कांग्रेस स्पेशली पूछते हैं, सर आपने मोर तो नहीं बोला, नहीं मतलब लेस ही बोला भाई हमने. इनकम कम है उतनी ज्यादा फंडिंग आपको आती है, 30,000 से लेकर 100,000 की फंडिंग होती है गवर्नमेंट से जो आपको आती है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली हाफ पैसा क्या है नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स का, जो वापिस ही नहीं करना होता आपने, जो रेस्ट है वो ऑप्शनल लोन है 0% पे. तो ये डेट आपके खाते में आते हैं, मेरे में नहीं आता, कोई कैच नहीं है जी. एजुकेशन की आप लाइक फंडिंग है गवर्नमेंट करती है, ना कि कोई बैंक करता है. तो इसमें लाइक नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, 40-50 साल आपकी एज, कोई दिक्कत नहीं है. फुली ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे पास, गवर्नमेंट फीस पे करती है और आपको लिविंग एक्सपेंसिस के लिए अलग से फंडिंग देती है, जिसका मेजर पोर्शन क्या है नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स.
1: ओके, नंबर 4372643175. अब नागपाल जी बताएं कि ग्रांट की बात करें, जो पैसा वापस नहीं करना होता, जो टोटल फंडिंग कितनी बन जाती है उन फैमिलीज के लिए जो एलिजिबिलिटी मीट करती हैं?
2: हाँ जी, ये डिपेंड करता है लाइक आपके फैमिली साइज पे और फैमिली इनकम पे. जितनी इनकम कम है, ज्यादा नहीं कम है, और बाकी अच्छा. जितना आपका फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, नंबर ऑफ किड्स ज्यादा है, डिपेंडेंट ज्यादा है, उतनी ज्यादा फंडिंग आती है. अगर फैमिली ऑफ फाइव है, हस्बैंड वाइफ दोनों चूज करते हैं इजी वाले कोर्स, आसान वाले कोर्स चूज करते हैं, जिसमें असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, 2-3 घंटे मंडे टू फ्राइडे लगाते हैं सिर्फ वो, और बाकी सोखे जो कोर्सेज इजी कोर्सेज है वो, तो उसमें उनको हुकूमत से इस केस में, ये बच्चे मान ली मैंने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, अप टू $100,000 की फंडिंग बनती है, जिसमें से $50,000 नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है. जो रेस्ट 50,000 है वो 0% पे लोन है, जो कि 1.5 साल बाद रिटर्न करना स्टार्ट करना होता है. तो अब और क्या लेंगे, शुरू में 0% है, 1.5 साल बाद ब्याज क्या है 2.5% पूरे साल का, महीने का नहीं. प्राइवेट लेंडिंग नहीं दे रही गवर्नमेंट आपको, एजुकेशन के लिए पैसे दे रही है. तो इसमें कुछ कैच नहीं है जी, गवर्नमेंट इतना पैसा जब देश के बाहर लगा सकती है फॉरेन एड में, और बाकी डेंटल केयर बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट, वैसी बेनिफिट है गवर्नमेंट का, ये स्किल डेवलप करें, हुकूमत से अपने अकाउंट में मुकम्मल फंडिंग हासिल करें. जैसे हमारे कितने ही क्लाइंट्स कर चुके 7 ईयर से इस बिजनेस में, आज शुरू नहीं कराने.
1: जी जी बिल्कुल. तो नागपाल जी बताएं कि आपकी फीस कितनी होती है, कब देनी होती है, और क्लासेस क्या फुली ऑनलाइन होती हैं? कोर्स में कोई फेल भी होता है या कोर्सेज इजी टू पास होते?
2: हमारे पास ना कुछ 8-10 कोर्सेज है जो बहुत ईजी है. अगर आप बोलेंगे ये वाला कोर्स करना स्पेसिफिक, हम हाफ कर देंगे. बात ये 8-10 कोर्स है, अच्छे कोर्स है, अकाउंटिंग का कोर्स है, जिसमें लोग करके खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस भी कर रहे हैं. अकाउंटिंग कोर्स करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, अच्छा कर रहे लोग. तो मतलब हमने आपको ऐसा कोर्स नहीं देना जो आप बैग पैक पहन के टिफिन बॉक्स लेके कॉलेज जाए, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स हैं मिडिल एज वाले, तो उसमें फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, फंडिंग हासिल कर चुके हैं और साथ में स्किल भी डेवलप कर रहे हैं. डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं, आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, फंडिंग सिक्योरिटी फ्री, कोलैटरल फ्री होती है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है. आज आपने एनरोल हुए, विद इन 30-90 डेज में आपके अकाउंट में फंडिंग आ जाती है, कल नहीं आएगी, 30-90 दिन के बीच में आएगी. और बाकी लाइक अपना बैंक खुद आप रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो इट्स वेरी क्लीन ट्रांसपेरेंट थिंग. एंड काम होने के बाद आपके अकाउंट में फंडिंग, मुझे खुद लोगों के फूल आ रहे हैं, आज कल अप्रॉक्सीमेटली 12-13 लोगों की फंडिंग गिरी है. मुझे भी टच वोट हुई, ऑफिस में घुसा, मैं लेट हो गया था आज, अभी मेरे ऑफिस को इतने फोन आ रहे हैं कि सर ईमेल आईडी दो, इंट्रैक्ट करना है, तुम्हारे पैसे आ गए, हमारे पैसे आ गए, राइट. तो बाद में पैसे देने होते हैं, ईमानदार लोग खुद ही दे देते हैं पैसे, बाकी कुछ से मांगने पड़ते, बारी बारी कुछ भाग भी जाते हैं, पैसे नहीं देते हमारे. हमने लेकिन हमने ट्रांसपेरेंट रखा है, पैसे आपने अपनी मांग से बाद में देने हमें, 199 से 499, नो कैश नो परसेंटेज.
1: ओके, अच्छा अब ये बताएं कि क्विक प्रोसेस क्या है और गवर्नमेंट फंडिंग क्लाइंट के अकाउंट में कितने वक्त में डाल देती है?
2: हाँ जी, 30-90 डेज में फंडिंग आ जाती है क्लाइंट के अकाउंट में डायरेक्ट. प्रोसेस यही है कि भैया 3 बैच रह गए हैं, 70 डेज रह गए हैं. नया जो 1 अगस्त से नया रूल्स लागू हुआ, उसमें ग्रांट्स वर्ड यूज नहीं होगा. आज अगर फैमिली ऑफ फोर है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, 80,000 की फंडिंग बनती है, 40,000 नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है, बाकी 40,000 0% पे लोन है. लेकिन अगर आप मुझे 1 अगस्त के बाद जब आपके साथ आऊंगा ऑन एयर, मैं बोलूंगा कि 80,000 का लोन आ रहा है, आज ग्रांट आ रही है, ग्रांट में से फीस निकल जाती है कॉलेज की 11-15,000, 25,000 लेके जाते हैं आप घर पे, अप्रोक्सीमेटली फैमिली ऑफ 5 में, है ना, बास आपका लोन अलग 40,000 का, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग. आप फंडिंग कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, इजी कोर्सेज बताओ और क्या चाहिए आपको. बहुत लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, शुरू नहीं हो रहा, मतलब बहुत लोग ऑलरेडी मजे ले चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, स्किल डेवलप करें, तालीम हासिल करें. जब गवर्नमेंट $30 बिलियन यूक्रेन को दे सकती है और क्यूबा को 8.2 बिलियन, वियतनाम को 8.2 मिलियन, इतना सारा जो पैसा बाहर से अंदर भी लगता है थोड़ा बहुत.
1: सही बात है. तो एंड में क्या रैप अप करना चाहेंगे नागपाल जी, किस और तरह की फंडिंग में भी क्या आप डील करते हैं?
2: बिल्कुल नहीं करते, उनमें कैच है. यहाँ पे हमें बताइए बंदा जो जिसकी इनकम कम है, सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हमारे क्लाइंट्स है, सलून ओनर्स क्लाइंट है, तो इसमें एजुकेशन भी कर रहे हैं, स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, फंडिंग हासिल कर रहे हैं. जितनी कम इनकम उतना ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट आपको पैसे देती है टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट को खर्चा देती है, कैसे भी उस पैसे को यूज कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर. 30-100,000 की फंडिंग है. बाकी कामों में क्या है, सेटिंग है, अप्रोच है, कागज मिलते हैं, हम तो वो काम करते ही नहीं, छोड़ देंगे, वो काम नहीं करेंगे. तो इसलिए अभी तक है, आप इसका मजे लें, इसको तालीम हासिल करें, हुकूमत से फंडिंग हासिल करें. नंबर हमारा 4372731 ऑफिस हमारा 2 मिनट एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, आप सैटरडे भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, 11 से 4 ओपन है हमारा ऑफिस. नंबर 2 बार और दूंगा, नोट करें आपको बड़ा बेनिफिट होगा इसमें, आपका फायदा है. देखिए जी, आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल कर सकते हैं, उससे पैसे मरने के बाद मिलते हैं, यहाँ पे 30-90 दिन आपको पैसे मिल जाते हैं आपके अकाउंट में, है ना. तो बाकी कोई कैश नहीं है जी. नंबर है 4372731 एक बार और 4372643175.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए नागपाल जी, फिर आपसे जुड़ेंगे. हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर.
2: थैंक यू
1: जी. दोस्तों, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3, ये अगला अमेजिंग सा गाना आपकी नजर करेंगे, आपके फ्राइडे को फैंटास्टिक बना देगा. एंजॉय.

0: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
1: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
0: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
1: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
2: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20+ साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट 905-789-6600। दैट्स 905-789-6600।
3: चलिए दोस्तों, आप लोगों को अलविदा कहने का अब वक्त आ चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे हफ्ते हमारा साथ देने के लिए। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर CMRFM 101.3। जितने भी बिजनेस ओनर्स हमारा शो एंजॉय करते हैं रोजाना, आप लोग अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेफिनेटली प्रमोट कर सकते हैं हमारे सुपर हिट शोज पर। और नंबर टू कॉल अस आफ्टर द शो 416-569-7812। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड अहेड। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। मंडे दोपहर 2 बजे होती है फिर आपसे मुलाकात मस्ती की रेलगाड़ी पर। तब तक के लिए दें शालिनी को इजाजत। नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम,
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी बेंद्र भाइयों, ये जो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन, गिफ्ट बेंद्र भाइयों, सौगात, तोहफा। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट हमारे घर में होता है। जो गिफ्ट हमें शादी में मिली होती है, डिनर सेट हो या सोन पापड़ी, तो थोड़े दिनों के बाद दूसरों की शादी की शोभा बढ़ाती है, क्योंकि हमारे घर से रिसाइकल होकर वहीं पर पहुंच जाता है। और एक बात बताए, कई बार गिफ्ट में बक्सा इतना बड़ा मिलता है, इतना अच्छी तरह से पैक किया होता है कि लगता है कि अंदर से आईफोन निकलेगा। और जब निकलता है तो मुंह धोने का साबुन। आपके साथ ऐसा हुआ? यही तो गिफ्ट का मजा है। ये हेडो वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनक्कम।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: घर कहीं भी लेना हो

0: Haan, mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.
4: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए नजर करते हैं बॉलीवुड पर. दृश्यम 3, मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर ट्रेलर के बाद से ही लोगों में बहुत ही उत्साह था. अब पहले दिन कलेक्शन में भी वो उत्साह देखने को मिला. हाँ जी मित्र भाइयों, फिल्म ने पहले दिन तकरीबन 15 करोड़ रुपए की कमाई की है. अब लोगों को इंतजार है अजय देवगन की दृश्यम 3 का. पति पत्नी और वो दो, आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी स्टारर पति पत्नी और वो दो अब बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. फिल्म ने थर्सडे को 7वें दिन 2 करोड़ रुपए की कमाई की. इससे इसका कुल कलेक्शन 29 करोड़ रुपए हो गया है. पति पत्नी और वो दो अच्छी जा रही है. सूर्या और तृष्णा की फिल्म करुप्पू बॉक्स ऑफिस पर लगातार लोगों को प्रभावित कर रही है. अब फिल्म ने 7वें दिन 8 करोड़ का बिजनेस किया. अब तक ये फिल्म 100 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है. करप्पू ने कुल कमाई 114 करोड़ की है. और कृष्णावतारम पार्ट वन भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी को दिखाने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते पूरे कर चुकी है. फिल्म अभी भी अच्छे आंकड़े हासिल कर रही है. 15वें दिन फिल्म ने 84 लाख रुपए की कमाई की. वही फिल्म का कुल कलेक्शन 24-25 करोड़ तक पहुंच गया है. हाँ जी विंद्र भाइयों, यानी कि जो भी फिल्में चल रही है अच्छी कमाई कर रही है. राजा शिवाजी ये फिल्म भी तकरीबन 88 करोड़ रुपए कमा चुकी है और 100 करोड़ के साथ आगे बढ़ रही है. राजा शिवाजी आप जानते ही है कि बेहतरीन फिल्म बनाई गई है. बॉलीवुड की हर खबर weeklyvoice.com पर. ये है वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन.
5: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
4: हाँ जी बहनों भाइयों, ये है वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए सीधे चलते हैं रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट, बात करेंगे हिमानी जी से. बहनों भाइयों, आपको भी फैमिली के साथ पहुंचना होगा 5200 डिक्सी रोड यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा. नंबर भी डायल कर सकते हैं 6477657402 7657402. रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट .ca है वेबसाइट. सीधे चलते हैं हिमानी जी के पास. हिमानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज आपकी बेहतरीन प्रमोशंस के बारे में बताएं और आपका एड्रेस भी जरूर बताइएगा. ओवर टू यू हिमानी जी.
6: जी थैंक यू सो मच. और सबसे पहले रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर्स को इसकी थीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. और रिच फर्नीचर पे इस बार बहुत ही कुछ स्पेशल होने जा रहा है. वो है रिच फर्नीचर की 13th एनिवर्सरी सेल जो है वो लग चुकी है. So it's on for this weekend, aaj, kal aur Sunday. So Sunday evening tak aapke paas ye mauka hai ki Ritz Furniture ki special, special, special deals jo hai, wo on hai aur usme bahut hi amazing offers hain aur combo deals hongi, package deals aap le sakte hain, jisme ek khaas baat hai ki aapko free gift with every purchase milne wala hai. Aur deals ki agar main baat karun to itni sari deals hain ki main batate batate thak jaungi, lekin deals khatam nahi hongi. Aur ये सारी न्यूज़ देखने के लिए आपने हमारा सबसे पहले तो फ्लायर देखना है. फ्लायर देखने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ एक ही चीज़ देखनी है, जो कि है हमारी वेबसाइट. वेबसाइट है ritzfurnitureplanet.ca, ritzfurnitureplanet.ca पर जाके जो है आपने हमारा फ्लायर देखना है और उसी में मिलेंगी ये शानदार ढेर सारी अमेजिंग डील्स. और साथ में आपने हमारा फ़ोन नंबर नोट करना और लोकेशन एक ही है, which is Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Phone number hai 905-232-7479, 905-232-7489. Aur baaki ke phone numbers jo hain wo aapko hamare flyer pe dikhenge, jin pe aap call karke hamare sales rep se baat kar sakte hain. Aapki koi bhi query hai, stock, color, options, kuch bhi poochna hai to usme aapko wo har tarah se assist karenge. और साथ में आप स्टोर पे आके डील लॉक कर सकते हैं. और इसी के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं हमेशा एंड में देती हूँ, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू, वो है आप फाइनेंसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स से आप पूरे घर का फर्नीचर ले रहे हैं या फिर कुछ भी और पूरा पे नहीं करना चाहते एक बार में, उसके लिए आप 12 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स प्लान विद 0% इंटरेस्ट रेट वो आप ले सकते हैं. और आप एशली के बेडरूम सेट्स देख रहे हैं, सोफा सेट्स, मैनुअल रिक्लाइनर सोफा सेट्स देख रहे हैं, सेक्शनल्स देख रहे हैं, और या फिर मेड इन कनाडा सोफाज देख रहे हैं जिनमें बहुत ही बेशुमार वैरायटी है कि आप अपनी मनपसंद फैब्रिक चूज करके या फिर लेदर में भी आप अपनी रूम की मेजरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना सोफा कस्टमाइज करवा सकते हैं. और उसमें तो हमारी सेल्स टीम एक्सपर्टीज है, वो आपको हर तरह से सेटिस्फाई कराएंगे और आपको अपना मनपसंद सोफा बनवा के देंगे. और साथ में मैट्रेसेस इतनी अच्छी हैं, इतनी सारी वैरायटी है मैट्रेसेस की, हजारों तरह की मैट्रेसेस हैं जिनमें आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से मैट्रेस कस्टमाइज भी करवा सकते हैं. वो हमारी स्पेशल है और उसके लिए आपको स्टोर पे आना है. एंड रोहित द यस मैन, ही विल बी हियर. जिस डील को कस्टमर ने यस कहना है उसी को रोहित ने यस कहना है. सो आई थिंक दिस इज द गुड टाइम फॉर यू टू कम एट रिच फर्नीचर प्लैनेट. डील्स का फायदा उठाइए, रोहित जी से मिलिए और चाय कॉफी हमारे साथ एंजॉय कीजिए. वो रिफ्रेशमेंट हमारी तरफ से होगा और स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए, 13th एनिवर्सरी सेल. जी हाँ, बिल्कुल आपने याद रखना है, रिच फर्नीचर ओनली वन स्टॉप टू बाय, 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा, यूनिट 53, 905-232-7489.
4: थैंक यू सो मच हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहनों भाइयों, जरूर पहुंचिएगा 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा. रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट डॉट सी है वेबसाइट. ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन.
0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545.
4: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स. एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है. अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट. CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कॉन्टेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का. बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले, 905-564-2021. डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट.
7: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare mumbaigrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
10: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
11: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232.
12: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.

असन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।

हाँ जी बेंदर भाइयों, ये हेड वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बेंदर भाइयों, यहाँ पर गिफ्ट कार्ड्स देने का चलन है। हमें ये पता नहीं चलता कि गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए पर्सन जाएगा स्टोर पर, वहां से गिफ्ट कार्ड खरीदेगा कैश देकर, और फिर वापस आएगा और जिसे गिफ्ट कार्ड देना है उसे कैश के बदले गिफ्ट कार्ड देगा। ऐसा चक्कर क्यों भाई, ऐसा चक्कर क्यों? सीधे कैश हम क्यों नहीं दे सकते? और गिफ्ट कार्ड का मतलब क्या है पता है? आपको गिफ्ट तो मिली, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको क्या पसंद है हमें पता नहीं है, और हम इसकी केयर भी नहीं करते हैं। ये गिफ्ट कार्ड दे दिया, आप जो चाहे वो खरीदो। अब अगर गिफ्ट कार्ड देते तो कई बार हमें पानी पूरी खाने की इच्छा हो गई। पानी पूरी खाने जाए तो कहां, वहां पर गिफ्ट कार्ड यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कई गिफ्ट कार्ड ऐसे होते हैं जो सर्टन समय में ही आप यूज कर सकते हैं। 2 से 6 के बीच ही गिफ्ट कार्ड एक्टिव रहता है, फिर आप उसे यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, ऐसा होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गिफ्ट कार्ड आपने कहीं रख दिया, भूल गए। दिवाली के दिन जब आप साफ सफाई करते हैं तब कहीं से गिफ्ट कार्ड मिल जाता है, और फिर आप सोचते हैं कि चलिए गिफ्ट कार्ड लेकर अच्छी चीज खरीद लाओ। पहुंचते हैं स्टोर पर और वहां पर जाकर पता चलता है कि आपका गिफ्ट कार्ड तो एक्सपायर हो चुका है, यानी कि जो गिफ्ट कार्ड मिला न पैसे आपको मिले और न पैसे जिसने दिए उसे मिले, यानी कि गिफ्ट कार्ड आपने भी किसी और को गिफ्ट कर दिया। बंदर भाइयों।

ऐसा होता है, इसलिए सही बात बताऊं मैं आपको, जब भी देना हो कैश दे दीजिए, सबसे अच्छी बात कैश ही होती है। देखिए यहाँ पर हम आए तब प्लास्टिक बैग यूज करते थे, अब कहते हैं थैली लेकर जाओ, जैसे बैक होम हम करते थे। जमाना वही आने वाला है, कहेंगे गिफ्ट कार्ड मत दो, ओनली कैश, ओनली कैश। हाँ जी, और कैश में जो ऐश है वो और कहीं नहीं। क्या कहते हैं, ये थी थोड़ी सी ह्यूमर, थोड़े से जोक विद जतीन। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दूर।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना? यूनिट 44-50, 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरुलक्ष्मी.com. गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: Haha, mom, dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
4: पत्थर है वो मुझे रोक।

0: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
4: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
6: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी.
7: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com. गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का.
8: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.
9: हाँ जी मेंदर भाइयों, ये द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए चलते हैं टीम अरोरा रियल्टी की ओर. नंबर वन रियल एस्टेट एजेंट्स, टॉप रियल्टर्स इन ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा. जीटीए में कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी हो, बेचनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर रियल एस्टेट की कोई भी एडवाइस चाहिए, एक बार टीम अरोरा के कप्तान परवीन जी से बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा. नंबर टू डायल इज 416-910-8923, 416-910-8923. teamarora.com है वेबसाइट. परवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज हमारे श्रोताओं को एजुकेट करें. ओवर टू यू सर.
10: जतिन जी, मेरी तरफ से वॉइस के सभी लिसनर को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल. जैसे कि एवरी वीक हम अपने लिसनर्स को मार्केट का अपडेट देते हैं और उसके साथ साथ हम उनको ये भी बताते हैं कि मार्केट में जो हम अपनी प्रॉपर्टीज नई लेकर आते हैं उसकी भी जानकारी देते हैं. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मार्केट में अभी जो एक्टिविटी है, ये अगर हम पिछले अप्रैल के स्टैट्स का कंपैरिजन करें तो मार्केट में एक्टिविटी बेटर हुई है. प्राइसेज में जतिन जी नो डाउट अभी भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो जो मार्केट में एक्टिविटी है, प्रॉपर्टीज की जो सेल है उसमें जो चेंज है वो जरूर आई है. और अभी एक चीज और भी मैं बतानी चाहूंगा जतिन जी यहाँ पे, के प्री कंस्ट्रक्शन में भी मार्केट में काफी एक्टिविटी है. जो लोग काफी मतलब बिल्डर से नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बाय कर रहे हैं, नई जो प्रॉपर्टीज हैं जो एंड यूजर है वो मार्केट में काफी एक्टिविटी कर रहा है, और जो हम प्रॉपर्टीज इस वीक मार्केट में लेकर आए हैं मैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। जतिन जी, इस वीक हम जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी ऑप्शंस मार्केट में लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम एक प्रॉपर्टी लेकर आए हैं 118 नथैनियल क्रेसेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टील एंड मेवर्स के एरिया में है, फर्स्ट टाइम बायर के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है क्योंकि ये स्टील एंड मेवर्स का जो एरिया है वहां बॉर्डर है बिल्कुल मिसिसागा और ब्रैम्पटन का, और यहाँ पे जो भी है मतलब बायर्स हैं खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी ऑप्शन है क्योंकि सारे हाईवेज और रात को 2-3 बजे तक बस सर्विस की भी अवेलेबिलिटी है और इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और एक और प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं 20 ब्रैमफील्ड। ये जो 20 ब्रैमफील्ड है ये फ्लेचर मेडो का एरिया है और ये जो है सिंगल कार गैराज का डिटैच घर है, और ये जो प्रॉपर्टी है जतिन जी फुली रेनोवेट की गई है, ब्रांड न्यू किचन, ब्रांड न्यू अप्लायंसेस, फ्लोरिंग, वॉशरूम्स बिल्कुल नए किए हुए, और घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने अपडेट ना की हो, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। इसी के साथ हम एक और लेकर आए हैं नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में 13 फैन ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है इस प्रॉपर्टी की, और ये भी जो है सिंगल कार गैराज का डिटैच घर है और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ स्टील एंड मेविस के एरिया में हम 39 चारकोल वे, ये जो प्रॉपर्टी है ये सेकंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, इसकी भी जो बेसमेंट अपार्टमेंट है बनी हुई है और ये जो एरिया है स्टील एंड मेविस का जैसे मैंने पहले भी बताया काफी हॉट लोकेशन है। अगर आप कोई टोरंटो में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो टोरंटो में हम एक प्रॉपर्टी लेकर आए हैं 1 दंडी पे। अगर कोई आप ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, क्योंकि टोरंटो में जो प्रॉपर्टीज हैं जतिन जी वहां पे क्या चैलेंज है कि प्रॉपर्टीज काफी पुरानी है और ये जो प्रॉपर्टी है अपने आप में एक तरह की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और ब्रैम्पटन में ही क्रेडिट वैली के एरिया में हम एक प्रॉपर्टी लेकर आए हैं 46 ईस्ट मैन ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है 3,000 स्क्वेयर फीट का डिटैच घर है और इसकी भी जो लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, और ये भी प्रॉपर्टी हमने काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है, सेकंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रैम्पटन में ही जहां पे हमने बात की है मिसागा रोड और विलियम पार्कवे के पास वॉलमार्ट के ऑपोजिट, वहां पे एक और प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं। ये जो प्रॉपर्टी है 51 डेरी मेड रोड, ये जो प्रॉपर्टी है 3500 स्क्वेयर फीट प्लस की प्रॉपर्टी है, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है और इसका भी है जो रवीन लॉट है जी। और अगर हम बात करें मिसिसागा की, वहां पे 274 सेरेमोनियल ड्राइव, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ऐसी है जतिन जी जैसे कि किसी ने कोई घर कभी यूज ही नहीं किया, ओल्ड कपल रहते हैं और मैक्लॉगलिन एंड एग्लिंगटन का एरिया है, और ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बिना अब हमारे पास जतिन जी मतलब और भी काफी अच्छी ऑप्शंस हैं, 450 ब्रिस्टेल ड्राइव, ये भी जो प्रॉपर्टी है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है, वॉकआउट बेसमेंट है, बेसमेंट बनी हुई है, रेंटल इनकम का पोटेंशियल है, काफी प्रॉपर्टी है, और इस वीकेंड पे हम 40 से ज्यादा ओपन हाउसेज लगा रहे हैं। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी बाय करना चाहते हैं ब्रैम्पटन, मिसागा, नॉर्थ यॉर्क, टोरंटो या इटोबिको में, एक बार हमें कॉल जरूर करें, नंबर है हमारा 416-910-8923, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं teamarora.com। थैंक यू जतिन जी।
9: परवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाइयों एक बार तो बात और मुलाकात बनती ही है, 416-910-8923, 416-910-8923, teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: Pratishtha, Parampara aur Anushasan, in teen stambon ke alawa रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर।
5: एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।

हाँ जी मित्र भाइयों, ये जो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए करते हैं नजर इस हफ्ते कौन से टीवी शोज रहे टॉप पर। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अरे नहीं तो क्या अनुपमा, अरे नहीं भाई नहीं, लोग अब नए टीवी सीरियल्स को भी खूब पसंद कर रहे हैं। पुराने चर्चित शो की जगह नए सीरियल्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं लोगों को। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है टीवी शो वसुधा। दर्शक वसुधा को खूब पसंद कर रहे हैं। यही वजह है इस शो ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 और अनुपमा जैसे सबसे चर्चित शोज को पीछे छोड़ दिया है। वसुधा सीरियल टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पर। हाँ जी विंद्र भाइयों, वसुधा नंबर 1 पर। इस शो का नाम जो है, जो दूसरे नंबर पर है, वो है गंगा माई की बिटिया। बिटिया इतना अच्छा काम कर रही है कि इस हफ्ते रेटिंग में नंबर 2 पर आ गई। न क्योंकि सास भी कभी बहू थी, न अनुपमा, बिटिया नंबर 2 पर। स्मृति ईरानी का सबसे चर्चित टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट नंबर 2 इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर अनुपमा। चौथे नंबर पर अनुपमा, पांचवें नंबर पर सीरियल तुम से तुम तक। हाँ जी मित्र भाइयों, तुम से तुम तक नंबर 5 पर, यानी कि टीवी की दुनिया में उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। और आपको ये भी बता दे, इंडियन आइडल धूम मचा रहा है क्योंकि दूसरा कोई लाइव सिंगिंग शो है नहीं और इंडियन आइडल के जो कंटेस्टेंट है जी लगाकर अच्छी धुन पर अच्छे नगमे सुना रहे हैं। गेस्ट भी बेहतरीन आ रहे हैं, इंडियन आइडल भी धूम मचा रहा है। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। एंटरटेनमेंट की हर खबर weeklyvoice.com पर।

संजय वी मीट अगेन ऑन द डे जहां खबर है गर्म की यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबर्ड ने दे दिया है रेजिग्नेशन. बच्चा उन्होंने बताई है कि हस्बैंड को है रेयर फॉर्म ऑफ बोन कैंसर, तो वो वहां फोकस करना चाहती है इस वक्त. ये इफेक्टिव होगा ऑन June 30th. वैसे सोचने वाली बात ये भी है ना कि ट्रंप ईरान का रेजीम चेंज करना चाह रहे थे और उन्हीं के रेजीम में देखो ना यूएसए में चेंज आते जा रहे हैं. अब पहले जो किंट और अब तुलसी कबर्ड. बाकी तो यहाँ पर अपने टोरंटो में गैस प्राइसेस आज के 8 सेंट्स लुढ़कने के बाद अब 4 सेंट्स और लुढ़कने की हुई है बात. तो आपके बेटर बन सकते हैं भाई वीकेंड के प्लान्स, है ना. गैस प्राइसेस को लेके थोड़े कम चिंता में रहेंगे हम घुमाई के जब प्लान्स होते हैं, पर ना ऐसा ज्यादा ना सोचे क्योंकि मौसम जो है ना कल वो लेके आ जाएगा हल्की सी ठंडक और बरसात. बट देन ऑन संडे दैट इज सैटरडे के बाद आगे वाले वीक में भी 20s में रहेगा तापमान. बाकी डोर्स ओपन टोरंटो वेल इसी वीकेंड पर होंगे ये जो इवेंट है और इसके अंतर्गत जो जो होता है पूछो क्या. आप विजिट कर सकते हैं बहुत सारी हिस्टोरिक कल्चरल वैल्यू वाली साइट्स, इमारतें, ऑफिसेस, और इस बार तो कुछ नए एडिशंस भी हैं लिस्ट में. 168 बिल्डिंग साइट्स के साथ साथ 31 नई जगह हैं और जिसमें कि नेटफ्लिक्स का ऑफिस का नाम आज क्या है, श्रृंगेरी विद्या मंदिर टेम्पल जो है उसका भी नाम है. और वहां तो कह रहे हैं कि आप जाएंगे इस वीकेंड पे तो भरतनाट्यम के कुछ बेसिक स्टेप्स सीख सकते हैं, उन्होंने अरेंजमेंट किया है. इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले पे रहेंगे और आपको इंडियन स्नैक्स भी खाने को मिलेंगे और बहुत कुछ. टोरंटो स्टार का ऑफिस आप जा सकते हैं. फैमिली फ्रेंडली क्राफ्ट्स और सोविनियर्स आपको मिलेंगे. टूर होगा पूरा, टीवी स्टूडियो टूर है इसमें इंक्लूडेड. एक चर्च है हम्बर वैली यूनाइटेड चर्च, वो इंक्लूडेड है और बहुत सारी साइट आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं अबाउट ऑल द डिटेल्स. बट मार्च 23 और 24 दिस वीकेंड को आप 10 से 5 के बीच में दरवाजे खुले रहेंगे, डोर्स ओपन टोरंटो, तो हम जा सकते हैं. सो ऑन दिस जाइएगा जरूर वाली नोट. दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कर सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि हम में से कितने लोग ना यहाँ रहते हैं, कब से रह रहे हैं या अभी नए भी आए हैं, तो भी बहुत ही सारी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली जगहों के बारे में ज्यादा जानते नहीं है या बच्चे नहीं जानते अभी, या गए हैं तो एज अ टूरिस्ट थोड़ा सा देख के आ गए हैं, उसको ठीक से समझा नहीं है. तो मेरे ख्याल से डोर्स ओपन का फायदा उठाएं और वीकेंड फैमिली के साथ एंटरटेनिंग येट एजुकेशनल बनाएं. बनता है ना.

0: मुझ को मिल कर कोई अनहोनी तो तू खा लियो पिल।
1: अरे कुछ नहीं होता,
0: मैं तेरा राजा तू मेरी रानी है, बेबी सुरक्षा ही

0: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना. अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना. यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स. तो भाई ये पॉसिबल है. कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353. उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं. 6474535353.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सएप करें 4376733125, 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्को के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्को। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें, waynesautogroup.com.
0: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
4: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: फॉलो अस ऑन फेसबुक, फिल्मी नुक्कड़, इट्स द फ्री टाइम।

0: डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com। Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर।
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: वेल वीकेंड है और वीकेंड पे अक्सर लोगों के प्लान्स ऐसे भी होते हैं कि जो भी हमने सरकाई थी चीजें पूरे हफ्ते उन पर ध्यान दिया जाए। और एक चीज उसमें ऐसी होती है कि एक अच्छे से रियल्टर एक्सपर्ट के पास मिलके आगे के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, है ना। इसमें मैं आपको निकी गांधी जी का नंबर जरूर देना चाहूंगी क्योंकि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही है आजकल। लिस्टिंग एजेंट है, होम लाइफ मिरेकल से है ये, और ये जो प्रोजेक्ट है ये है रोलिंग वुड्स। कहाँ आ रहा है, क्या प्राइसिंग है, क्यों इसमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो डिटेल्स हम निकी गांधी से पूछ लेते हैं। निकी जी वेलकम।
3: थैंक यू सो मच स्वाति जी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर पुटिंग मी ऑन एयर। सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंग वुड्स टाउन, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 600 से एंड अर्ली 2028 के क्लोजिंग विद द एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर। मतलब आपको एक कंफर्टेबल और स्मार्ट वे में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। सबसे एक्साइटिंग बात क्या है इस प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट आ रहा है मेविस एंड रेलोसन बुलेवर्ड के प्राइम लोकेशन पर, ब्रैम्पटन और मिसिसागा बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक। और ये ब्यूटीफुल टाउन हाउसेज आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में चल रहे हैं। और रियल एस्टेट में अगर हम बात करते हैं ना, तो कहा जाता है कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। रोलिंग टाउन जो है वो इस पॉइंट पे ना परफेक्टली फिट बैठता है बिकॉज मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 407, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट एंड डेली एमिनिटीज के बिल्कुल नजदीक है। शेरिटन कॉलेज से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड पे। इसका मतलब कि फैमिलीज हो या इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकेशन है। और स्वाति मैं एक और बात बताती हूँ खास इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस लोकेशन के बारे में। बेसिकली ये जो ये पॉकेट है ना, इस पॉकेट में ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ना काफी लंबे टाइम से कोई भी मेजर प्रीकॉन का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं बट दैट इज आर मोर ऑन नॉर्थ साइड। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत टाइम के बाद कोई नया प्रोजेक्ट आया है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली गाइज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज तक के मॉडल्स अवेलेबल है, फ्लोर प्लान्स अवेलेबल है, और हमारे पास 3 से लेके 5 बेडरूम तक के ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, आप इन्वेस्टर हो, या आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहना चाहते हो, यहाँ पर हर तरीके का, हर बायर के लिए कुछ ना कुछ सुटेबल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बिल्डर भी जो है वो बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव लॉन्च करने जा रहे हैं June 1st को। सो ये प्रोजेक्ट जो आ रहा है हमारा लॉन्च हो रहा है June 1st को। June 1st को हमारा एक्चुअली ब्रोकर लॉन्च भी है। सो मैं अपने सभी ब्रोकर्स भाइयों बहनों दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस ब्रोकर प्रोजेक्ट ब्रोकर लॉन्च के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी के अभी मुझे कॉल कर लीजिए एंड आई विल गिव यू ऑल दी अपडेट्स। इसके साथ साथ एक और बात है कि आजकल ना प्री कंस्ट्रक्शन घरों पे गवर्नमेंट ने ना GST पे रिबेट दे रहे हैं, जो एलिजिबल हो सकते हैं अप 230,000 का उनको बेनिफिट मिल सकता है, राइट। ये भी बायर के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और ये जो रिबेट है वो एलिजिबल है अप अंटिल 31st of March 2027। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, सो मेक श्योर इस ऑफर का भी फायदा उठाइए। देखिए मार्केट जो है वो धीरे धीरे ना ओपन अप होनी शुरू हो गई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है, बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो वापस आ रहा है। सो जो लोग वेट कर रहे थे, मौके की तलाश कर रहे थे, उनके लिए ना ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ब्रैम्पटन में कुछ बाय करना चाहते हो, ब्रैम्पटन मिसिसागा की बॉर्डर पे कुछ बाय करना चाहते हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, या आप इन्वेस्टर हो, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कुछ

0: देना चाहते हो, रोलिंग विद स्टोन इज डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. और मैं हूँ इसमें बिल्डर के साथ लिस्टिंग एजेंट हूँ, सो मेरे पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है. सो सभी रियल्टर्स, यू आर मोर देन वेलकम, प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए. इवन जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनको भी प्राइसिंग, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव और कंप्लीट पैकेज के लिए आप अभी के अभी हमें कॉल कर लीजिए एट 416-456-3815. आई रिपीट, इट्स 416-456-3815. बैक टू यू सर.
1: थैंक यू सो मच निकी. मैं नंबर फिर से बता देती हूँ, 416-456-3815. दैट इज 15. आप नंबर नोट नहीं कर पाए बिकॉज यू आर ड्राइविंग, तो मुझसे जरूर ले. लेकिन निकी गांधी इस प्रोजेक्ट के लिए लिस्टिंग एजेंट है, जैसे उन्होंने बताया, तो उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव जरूर होगा आपके लिए. और वैसे भी बहुत अच्छी सर्विस देती हैं, ऐसे ही नहीं, वो इतनी नोन नेम है यहाँ रियल्टर, एज अ रियल्टर. तो आप एक बार कॉल करें, ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में जानकारी लें, और फिर अपना मन बनाए कि क्या करना है. पर इट्स ऑलवेज गुड to take information and then decide rather than thinking अरे नहीं लेना, you know. चले number again 416-456-3815. Thank you Nikki.
0: Thank you so much, really appreciate it. Thank you.
1: Thank you.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: Movies released Broadway's on. Kaun si web series should be binge watched? Agar hai confusion, to tune in for Nukkad's Weekend Watch. डोर्स ओपन टोरंटो के जरिए कुछ इतिहास कुछ संस्कृति एक्सप्लोर करने के अलावा इधर उधर फेस्ट अटेंड करने के अलावा ड्राइव पर निकलने या गेट टुगेदर्स में अपनों से मिलने या वो काम धाम की लंबी सी लिस्ट निपटाने के अलावा आप चिल करके कुछ हिंदी रिलीजेस भी देख सकते हैं इस हफ्ते। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट द थिएट्रिकल रिलीज, जिसके बारे में बहुत टाइम से बहुत बातें हो रही हैं, बहुत चर्चा हो रही है और इसके गाने तो मैं प्ले करती जा ही रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ धर्मा प्रोडक्शंस की चांद मेरा दिल की, मुझे टाइटल अच्छा लगा। करण जौहर स्टाइल सिनेमा है, जेंजी कॉलेज रोमांस फिल्म है, ड्रामा बहुत सारा है इसमें भी। दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन लव विद अनन्या पांडे एंड लक्ष्य प्लेइंग द लीड रोल्स। कहानी सिंपल है, कॉलेज में मिलते हैं, प्यार व्यार हो जाता है, फिर शादी भी हो जाती है एंड देन शादी के बाद रियलिटी किक इन करती है। ये लव स्टोरी जो है भाई, वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाती है जब शादी हो जाती है, जो डेटिंग पीरियड से एकदम अलग होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडल्टहुड एंड अ लॉट मोर। मतलब जिन्होंने शादी का लड्डू खाया है ना, उन्हें पता ही पता है कि क्या क्या होता है। अब शादी से पहले वाली मिठास और बाद वाली मिठास में बस वही अंतर है, रसगुल्ला और मीठी नीम सा जो डिफरेंस होता है, है ना। एनीवे, इट्स अ लव स्टोरी विद अ डिफरेंस एज दे क्लेम। एंडिंग हैप्पी है यानी उसके लिए आप फिल्म देखें, पर एक डायलॉग है ट्रेलर में, प्यार से बड़ी इज्जत होती है। अब मैं वो जब डायलॉग सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि कई बार इसी इज्जत के चक्कर में ना प्यार बलि चढ़ जाता है, क्योंकि माफी दी नहीं जाती है। एंड देन वो किशोरदा का गाना है ना, वो गा के गए कि जीना क्या अजी प्यार बिना। बोलो तो वेल, फिल्म कई और भाषाओं में भी रिलीज हुई है, गाने अच्छे हैं इसके, अपने अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है भाई, केमिस्ट्री लीडिंग स्टार्स की ग्रेट है और रिव्यूज वो मैं मिक्स पढ़ पा रही हूँ। आई एम प्लानिंग टू वॉच इट, वीकेंड पर देखूंगी तभी तो बता पाऊंगी कि हुई बोरियत या है इसमें कुछ खासियत। वेल, गाना इज डेफिनेटली खासियत। लाइंड अप नेक्स्ट।

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844. That's 6478648844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353. 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
4: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. लीज रेट एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Retro in Metro, Nukkad Classics.

movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज should be binge watched? अगर है confusion, तो tune in for Nukkad's Weekend Watch. तो चांद मेरा दिल के अलावा दो और थिएट्रिकल रिलीजेस हैं इन हिंदी इस वीक में और दोनों ही इमोशनल ड्रामा है. एक सितंबर 21, ये कहानी है बुजुर्ग की जिन्हें अल्जीमर हो गया है, मेमोरी लॉस. बेटा उनका यूएसए में बैठा है. अब बेटा सुन के गिल्ट ट्रिप पर निकल पड़ता है कि दूर बैठ के मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. फिर वो क्या करता है, एक सिंसियर सी केयर गिवर हायर करता है कि भारत में बैठे उसके पिताजी की केयर हो जाए. पर उस केयर गिवर की अपनी ही साइलेंट स्ट्रगल्स हैं. दो दोस्त हैं पिताजी के जो बहुत ध्यान रखते हैं पर दुखी भी हैं, यू नो, अपने दोस्त को ऐसे भूलता हुआ देखकर, इस बीमारी से स्ट्रगल करता हुआ देखकर. बेसिकली इट हाइलाइट्स द इमोशंस कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते तो भी आप परवाह तो कर ही सकते हैं ना, और वो अपने आप में बहुत कुछ कर सकती है. सेंसिटिव पर वेरी स्लो सिनेमा है बट विद अ पॉजिटिव मैसेज. ओवरऑल इसकी काफी तारीफें हैं. देन अदर वन इज जिसका टाइटल है तीसरी बेगम. ये भी इमोशनल ड्रामा है जहाँ कहानी एक मासूम लड़की पूजा की है जिसकी धोखे से बब्बन खान से शादी करा दी जाती है. अब जब वो घर जाती है बब्बन खान के तो उसे वहां जाके और शौक लगता है डबल, क्योंकि पता चलता है उसके तो पहले से दो बीवियां हैं और दोनों ही अलग अलग कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड की हैं. अब कैसे उनमें से एक की मदद लेकर वो उस जाल से भागती है, इसी की कहानी है. इट्स ए रेटेड. आई वुड स्किप दिस सिनेमा. ये तीसरी बेगम मैं शायद क्या मैं देखूंगी नहीं. OTT पर भी आएगी तो मैं नहीं देखूंगी. वो क्या है ना, समय बहुत कीमती होता है, वही दिया जाना चाहिए जहां या तो मन लगे या किसी का भला हो या कुछ सीख मिले. क्या कहते हैं.

बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माई रियलको के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोजा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना, एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%। उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ हिज कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। फ्री कंसल्टेशन है, कॉल करें 416-843-7600। संजीव मनोजा फ्रॉम माय रियल को, 416-843-7600 और विजिट myrealco.com।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर It deserves.
5: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
6: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
5: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो। ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
6: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
0: सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR एट 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट राइट टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit karein waynesautogroup.com.
1: Movies released, Broadway's on. Kaun si web series should be binge watched? Agar hai confusion, to tune in for Nukkad's Weekend Watch. ओटीटी पर क्या और देखा जा सकता है नया रिलीज इन हिंदी लेट्स टॉक अबाउट दैट पहले सिस्टम की बात करते हैं अमेज़न प्राइम पे रिलीज हो रही है अश्विनी अय्यर का प्रोडक्शन डायरेक्शन है कहानी है कि यंग लॉयर की विच इज प्लेड बाय सोनाक्षी सिन्हा जो अपने पापा की लॉ फर्म में एज पार्टनर ज्वाइन करना चाहती है पर पापा कहते हैं नहीं पहले प्रूफ करना होगा तुम इसकी वर्दी हो और उसके लिए चैलेंज थ्रो करते हैं कि अगर तुम 10 केसेस जीत के दिखाती हो देन यू आर अ पार्टनर लवली लवली सी वो एक हायरिंग करती है अपनी स्टेनो के लिए एक नया रिक्रूटमेंट करती है ज्योति का ये रोल प्ले कर रही है बहुत स्ट्रीट स्मार्ट स्टेनो है और ये दोनों मिलके एक अच्छी सी टीम बनाती है तो इसमें आपको बहुत सारे कोर्ट रूम बैटल्स देखने को मिलेंगी मैसी रिलेशनशिप्स होंगी और वही एक सवाल जो बार बार खड़ा हुआ है कि अगर सिस्टम को झुका सकती है पावर तो क्या न्याय संभव है फास्ट पेस्ड है और इंटरेस्टिंग भी एंड देन एज आई ऑलवेज से कुछ देखने का मन हो और फ्रेश रिलीज्ड का मन देखने का ना हो तो वेल वो मन का ना हो तो गो फॉर दोज क्लासिक्स जिनकी रिपीट वैल्यू भी होती है और जो मेमोरी में से कई बार इधर उधर हो चुके हैं पर याद करने का जिन्हें मन करता है तो ऐसी तो लिस्ट मेरी पसंद की फिल्मों की बहुत लंबी है आप मुझे बताएं आप ऐसे में कौन सी देखना पसंद करते हैं जो बस मन नहीं लग रहा तो चलो वही खोल के देख लेते हैं स्टूडियो का नंबर 4165930055

एंड ऑल्सो ट्रेंडिंग इज हैप्पी बिटकॉइन पिज्जा डे, क्योंकि आज का दिन वो ऐतिहासिक दिन है जब 15 साल पहले लाइज़लो हेनेस ने 10,000 बिटकॉइंस पे किए थे और उसके बदले उन्हें मिले थे 2 पिज्जास। और ये ट्रांजेक्शन जो तब हुआ था ना, वो आज की तारीख में पहला रियल वर्ल्ड बिटकॉइन ट्रांजेक्शन कहलाता है। तब $40 के करीब का बिटकॉइन हुआ करता था। इमेजिन कहां बिलियंस अब और कहां $40। इन शॉर्ट, सफलता की कहानी और सफर हो तो बिटकॉइन जैसा हो, वरना एज बिग बी सेज, मिस्टर नटवलाल में उन्होंने कहा था ना कि ये जीना भी कोई जीना है डॉलर।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Nave और Denison Street, North Hyundai,
2: doing business your way.
1: Member of Wayne's Auto Group.
3: मज़ा मालू वादुआबा वेडिंग स्टोर.
4: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माजा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
5: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप चार नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारब्रो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca.
4: Music charts par ye hai on top. Private studio se look kar indie pop.

सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं. ये डायलॉग मेरा और मेरे पटर पटर बोलने की आदत से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है. दिस इज अ फेमस हीरोपंती के एटीट्यूड से लदा भरा डायलॉग फ्रॉम हीरोपंती फिल्म, जो टाइगर श्रॉफ ने बोला था फिल्म में. काफी हिट रहा था ये डायलॉग और लोग अक्सर मुझे कोट करते हुए दिखाई सुनाई दे जाते हैं, जिसे टाइगर श्रॉफ एंड कृति सेनन ने यस डेब्यू भी किया था. अगर आपको नहीं मालूम तो मुझे बता देती हूँ. एंड फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं साल. लकीली कृति का सफर काफी अच्छा रहा, टाइगर की जर्नी वो भी बहुत धांसू रही है. एंड इट हैज बीन अ बम्पी ड्राइव. थोड़ी सी एक आध बीच में फ्लॉप भी रही है इनकी, उनकी राबता रही है, इनकी मुन्ना माइकल रही है, बट ओवरऑल आप सक्सेसफुल राइट कह सकते हैं. सो इसी बात पर फैंस आर हैप्पी एंड ऑल सेट टू विसल बजा.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: मैं देख रही थी कि मई का महीना ना यहाँ पे मंथ ऑफ म्यूजियम कहलाता है, यानी टूर्स एंड विजिट्स टू 700 से ज्यादा म्यूजियम्स, हिस्टोरिक साइट्स, गैलरीज, ये सब आप प्लान कर सकते हैं। आप कल्चर भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, एजुकेशनल तो होगा ही। अब बच्चों के साथ जब आप फैमिली ट्रिप एक प्लान करते हैं ना, या दोस्तों के साथ

बचपन की, तो बहुत मजा आता है ऐसी जगहों पर मिल मिल के सीखने में। नहीं, कितने सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं खास इस महीने फॉर दिस, जैसे कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर खास बहुत एक्टिविटीज एंड इवेंट्स करे जाते हैं। हर साल का थीम फर्क होता है, इस साल का भी फर्क है। इस साल म्यूजियम से रिलेटेड ऑन्टारियो के कुछ अलग थीम है, द वैल्यू की बात हो रही है। और डोर्स ओपन टोरंटो जो मई 23 और मई 24 को होगा ना, उन दो दिन ना फ्री विजिट्स कर पाएंगे इन साइट्स पर। बहुत अच्छा मौका है, खोना नहीं है। हाँ, लिस्ट कौन कौन सी वो साइट्स होंगी, डिटेल्स आप वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट एक इंटरैक्टिव मैप भी है जहाँ पे पार्टिसिपेटिंग साइट्स जो हैं इसके लिए बिल्डिंग टाइप, एक्सेसिबिलिटी, ईयर कंस्ट्रक्टेड, देन आर्कियोलॉजिकल स्टाइल, ये सब आप एक्सप्लोर कर पाएंगे बिफोर यू प्लान एंड गो, अगर आप उस इंटरैक्टिव मैप की मदद लेते हैं तो। बहुत इंटरेस्टिंग है वो मैप, देखिएगा जरूर। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड मई म्यूजियम का फायदा जरूर उठाएं, बच्चों को जरूर लेके जाएं, फ्री में हेरिटेज एजुकेशन कह सकते हैं आप, एंड कल्चर, ये सब खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं और डिस्कवरी ट्रिप प्लान आउट करके आएं।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com।
1: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16। विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
4: घर कहीं भी

वेल ये था यूएसए द फिल्म बाय मणि रत्नम जिसको काफी तारीफें मिली थी आज के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी दो द मूवी वॉज कभी नीम नीम कभी शहशत लाइक द गाना इट हैज फिल्म का ओरिजिनल टाइटल कहते हैं हावड़ा ब्रिज रखा गया था बट सिंस इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट एनर्जीज ऑफ डिफरेंट यूथ इन डिफरेंट टाइम्स एंड सिचुएशंस इसका नाम फाइनली युवा रख दिया गया विच आई थिंक एप्ट भी रहा है इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को काफी तारीफें मिली थी बट अनुराग कश्यप जो थे उनसे इसके बाद बोलचाल उनकी जरूर बंद हो गई थी एज ही वॉजंट हैप्पी विद अभिषेक्स परफॉर्मेंस बट वो क्या है ना मुझे लगता है तब तक गुरु नहीं आई थी वरना ऐसा नहीं होता क्या कहते हैं

0: He's breaking through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries.
0: This is dangerous. Into the box.
1: Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: FIFA ke tickets chahiye ghar, to jaye Don Valley North Hyundai par. Ab poochho wahan kyun? Unhone khoob samjhaya hum sab ka man. Ab dekho na, FIFA ke tickets lena. कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग. पर साधारण इंसान है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछे कैसे. एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st. दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के. अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिये ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं. और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आप कुछ जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई वुडबाइन एवेन्यू मार्कम. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888.
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: हम होंगे आपके साथ हमेशा।
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Exclusively picked, looked

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: Let's turn it up.
2: Let's kick it up.
3: Let's shake it up.

0: घर खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444.
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
2: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
2: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। Telephone 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
0: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, it's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.

0: हर हाल ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ें चलती हैं, और इससे आज जो इंश्योरेंस लेते हैं और जो बाकी मामला होते हैं इसीलिए के होते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में जो हैं वो आपके लिए आसानी रहे। और ऐसा मुश्किल वक्त आए तो अंजुम कुरैशी साहब का नंबर अपने पास महफूज करें 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को भी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और बाज़ोकात ऐसा होता है कि हमारी कम्युनिटी इस चीज़ को नहीं समझ पाती कि जो हम मंथली पैसे दे रहे हैं इतनी मेहनत के साथ वो किस चीज़ के दे रहे हैं। दरअसल हम जो अपनी किसी की इंश्योरेंस 400 है, किसी की 500 है, अगर किसी के घर में 2-3 ड्राइवर हैं तो लोग 1500-2000 तक इंश्योरेंस के पैसे पे कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल हो रही है। ज़ाहिर है आजकल मुश्किल वक्त है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि ये इंश्योरेंस देने का मकसद ये होता है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से वादा किया होता है कि हम अपना पैसा, प्रीमियम का पैसा वक्त पे अदा करेंगे और वो बैंक से वो पैसा ले लेते हैं, लेकिन हमारा उसके एवज में हमें क्या क्या मिला हुआ है। कभी भी किसी ने अपनी पॉलिसी नहीं पढ़ी हुई होती, उनको ये नहीं मालूम होता कि मेरी पॉलिसी में क्या क्या लिखा हुआ है, या जब इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं तो उनको ये नहीं मालूम होता कि मुझे कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। वो अपने ब्रोकर से या इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि मुझे सस्ती से एक इंश्योरेंस दिला दो। अब वो सस्ती के चक्कर में ब्रोकर जो है आपको जो है बाज़ोकात आपका ट्रक का जो आपका जो है आप वो निकाल देता है, कभी आपका रेंटल निकाल देता है। जब आपका कार एक्सीडेंट होता है तो वो कहते हैं कि आपने रेंटल निकाल दी थी जिसका $5 बेशक आप महीना दे रहे हो, लेकिन कहते हैं कि जी वो आपका वो निकाल देते हैं और आपको जो है इसलिए गाड़ी नहीं मिलेगी कि आपका रेंटल कवरेज नहीं था। अब रेंटल कवरेज अगर आप 3 हफ्ते के लिए लेना चाहें तो 2000 का तक का बनता है। अब आप सोचिए कि $5 आपने बचा के कितना बड़ा अपना नुकसान किया। इसी तरीके से एक फीचर होता है जिसको कहते हैं फर्स्ट एक्सीडेंट फॉरगिवनेस, उसके भी $5-7 महीना के हैं, लेकिन अगर आप वो फीचर ले लेते हो और अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी वजह से फर्स्ट एक्सीडेंट फॉरगिवनेस का मकसद है कि मेरा पहला एक्सीडेंट मुझे माफ किया जाए, तो वो उसकी वजह से वो जो आपका ये जो फीचर है उसकी वजह से आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता। अब आप देखिए कि अगर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता, अगर आपका प्रीमियम महीने का अगर $200-$150 भी बढ़ रहा है और आप एक चीज के $7 महीना दे रहे हैं तो कितना जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें इंश्योरेंस किस किस्म की लेनी चाहिए, कौन सी चीजें हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक इंश्योरेंस से नहीं है, मेरा काम पर्सनल इंजरी से है, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ अवेयरनेस देने आई हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको अच्छी इंश्योरेंस रखनी चाहिए, और जब आप वो इंश्योरेंस रखते हैं और आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपको जहनी तौर पर ये मुतमईन रहना चाहिए कि ये पॉलिसी की जो सारी जो आपकी सहूलतें मिल रही हैं उसके मैंने पैसे दिए, मैंने अपने लिए बाय की है ये चीजें, कोई इंश्योरेंस कंपनी आप पे एहसान नहीं कर रही। लेकिन ये तमाम तर चीजें खुद से लेना मुश्किल होती है। जब एक लॉयर बीच में मौजूद होता है कानूनी तौर पे वो सारी चीजें आपको लेकर आपके हक का ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाता है और अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेता है। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी 416-570-0157 अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया है तो आप मुझे बहुत कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और आपके एक्सीडेंट को लेके हम आप ही के बारे में सारी बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। जिंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी साहब, मंडे इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू। नंबर नोट कीजिए 416-570-0157। कल से इतलात थी कि फील्ड मार्शल नासिर मुनीर साहब ईरान जा रहे ही आ जा चुके हैं और उसकी तस्दीक से तर्दीद नहीं हुई थी, लेकिन आज ऑफिशियली कह दिया गया है कि वो सरकारी दौर पर जो हैं वो तेहरान पहुंच गए हैं। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम चीन जा रहे हैं, बल्कि आज वहां सुबह हो चुके तो आज वो चीन जा रहे हैं, वहां उनका दौरा है। तो पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं या दूसरी कोशिशें वो जारी हैं, होपफुली अच्छी खबरें जो मिलेंगी इस पर डिटेल में आगे से बात करेंगे। इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी।

जब मोहब्बत तमाम होती है, किसके चेहरे पे सब जागे, जिसकी आंखों में शाम होती है। इश्क बनता है किस घड़ी से याद, जब वफा से रिदा होती है। टीस बनती है आग ही कैसी, खुद से जब हम कला होती है। क्या कमी है तलब की राहों में, गुफ्तगु ना तमाम होती है। दिल को भाती है कब सबा बोलो, जब किसी का प्याम होती है।

0: चल इनके मोहम्मद सलमान
1: मॉर्टगेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही
0: मॉर्टगेज वही जो आपके लिए सही
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888 इट्स 437-237-8888 लाइसेंस नंबर 12458
3: याद रखें अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन स्पाउसल सपोर्ट चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773 कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773
4: मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी अगर आप ब्रांड न्यू पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मेटा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी मिसिसागा ब्रामटन स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वेरायटी फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 4169012810 इट्स 4169012810 योर लॉगिन हो metafurniture.com हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए मेटा फर्नीचर हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर
5: जी हाँ आपको हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पे लेना है तो मेटा फर्नीचर की किसी भी लोकेशन पर तशरीफ ले जाइए मिसागा लोकेशन के 3050 वेगा बुलेवार्ड ब्रैम्पटन लोकेशन 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट कैनेडी की लोकेशन 1319 कैनेडी रोड स्कारब्रो की लोकेशन और 30 पाइन बुश रोड कैम्ब्रिज और लंदन ओंटेरियो की लोकेशन जो है एंड ऑफ दिस मंथ उसका इफ्तिताह हो रहा है और फिर ग्रैंड ओपनिंग ये होल खुद लंदन ओंटेरियो की होगी लेकिन तमाम लोकेशन पर आपको वही डिस्काउंट और वही स्पेशल सेल मिलेगी 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट आप मिलेगा और जब ग्रैंड ओपनिंग है तो उस पर तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और फर्नीचर कमाल का है इनका एक तो लेटेस्ट है ड्यूरेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्राइसिंग इनकी अनबिलीवेबल है क्यों है क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं रेगुलरली इनके वहाँ से कंटेनर्स आ रहे होते हैं इसलिए मार्जिन आपको भी देते हैं तो अगर आप फर्नीचर की तलाश में हैं तो अभी रब्ता कर लीजिए इस ग्रैंड ओपनिंग का फ़ायदा उठा लीजिए अभी आप कम अज़ कम लॉक कर लीजिए वो प्राइसेस ताकि बाद में आपके काम आ सके 4169012810 तमाम लोकेशन के नंबर है metafurniture.com इनकी वेबसाइट है पवन मेरा सब हमारे मौजूद हैं खुश आमदीद कहेंगे मेरे साहब वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो
6: थैंक यू वेरी जी एक नंबर लिखा है आपने रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मेटा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर चार लोकेशन है हमारी सॉरी पांच लोकेशन
5: पांचवी लोकेशन
6: जी जी आज से आप अगर मैं आपको जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं जो उम्र से बड़े हैं उनका उनको नमन करना चाहूंगा और जो छोटे हैं उनका मैं स्नेह उनका प्यार लेना चाहूंगा एक जब नंबर है जो नंबर रोज भट्टी साहब बताते हैं 4169012810 मैं लंदन से ही बात कर रहा हूँ नंबर पांच दबाएंगे तो लंदन लोकेशन के लिए जैसे आप 1 2 3 4 दबाते हैं पांच नंबर लंदन आप हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं अपनी गुड विशेस कर सकते हैं आपके कोई बहन भाई इधर रहते हैं तो उनको तो डील दे ही रहे हैं जैसे भट्टी साहब खुद आप बता रहे थे कि चेन वाइड जो ये सेल होगी चेन वाइड चारों लोकेशन पे फ्री गिफ्ट भी कल वेबसाइट पे कल या शाम तक आपके एक दो दिनों में वेबसाइट पे गिफ्ट के भी आपको आइटम नंबर दे रहे
5: हैं
6: की मैं बता तो रहा हूँ एशले की हमने 3 रग जो है 5x8 की रग जो एशले की 249 से लेके 300 तक की होती है तो आपको तीनों में से एक चूज करनी है जिसको रग गिफ्ट कर रहे हैं उसी तरह एशले की जो वॉल आर्ट होती है जो बड़ी 5 फुट लंबी बड़ी पिक्चर जो होती है वो भी उनकी $200-$300 तक की होती है हम मॉडल नंबर बता के दे रहे हैं मतलब बोलने में नहीं बोल रहे भी 300 की आपको फ्री दे रहे हैं मॉडल आप चेक भी सकते हैं तो वॉल आर्ट एक फ्री दे रहे हैं हमने थोड़ा रखा है प्यार कर रखा है कि अगर आप 500 तक का कुछ परचेज कर रहे हैं तो ये गिफ्ट है और 500 हमने 500 तक आपको वो जो प्रोटेक्टर होता है मैट्रिक्स प्रोटेक्टर तो खास तौर पे जो स्कारब्रो में मेरे बहन भाई रहते हैं जिसमें बग्स प्रोटेक्टर भी है बग्स भी नहीं जा सकते चारों तरफ से कवर हो जाता है प्रोटेक्टर कुछ आते हैं आधी मैट्रिक्स कवर करते हैं ताकि आप ऊपर ऊपर से कवर हो तो आपको चारों तरफ से जिप से बंद हो जाएगा 149 का आई थिंक अमेजोन पे लगा हुआ तो वो वाली वैल्यू के गिफ्ट आपको देने जा रहे हैं गिफ्ट आप मांग नहीं रहे हम अपनी ग्रैंड ओपनिंग की खुशी में आपसे रिश्ता बनाने के लिए यू अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू वो आपको देना चाह रहे हैं जो गिफ्ट तो कोई मांगता थोड़ी अपना बहन भाई हम दे रहे हैं अपने दिल से जो आपकी दुआएं चाहते हैं आपका वैल्यूएबल बिजनेस चाहते हैं आपका साथ चाहते हैं और जैसे भट्टी साहब आप बताते हैं हमारा फर्नीचर टोटल आप एज ए कस्टमर ट्राई करें, आप ट्राई कर लें पहले, मॉडल टू मॉडल कंपेयर करेंगे तो हमारी प्राइस सस्ती पाएंगे। हमने डील सप्लायर से भी लेते हैं, जैसे सेक्शनल की मैं बात करूं, कैनेडियन मेड सेक्शनल है, हमारा टैग 1699 का लगा हुआ है, हम $5,500 जैसे बहन भाई वाला मान भी कर लेते हैं, हम 1500-1550 से कम नहीं देते। वही सेक्शनल आपको ग्रैंड ओपनिंग में 1200 का दे रहे
5: हैं।
6: अच्छा, दूसरी डील जो है आपकी दे रहे हैं वो मतलब हमने सिर्फ रेडियो पे बोल रहे हैं, फ्लायर पे भी नहीं है। भट्टी साहब, बहुत सारे बहन भाई लेदर का सोफा लेते हैं, लेदर दो तरह का होता है, एक लेदर होता है सिटिंग पार्ट लेदर और पीछे वाइनल पीवीसी जैसे बोलते हैं लगे हुए। जो मैं आपको डील बोलने जा रहा हूँ वो ऑल ओवर लेदर, मतलब पीछे आगे एक ही लेदर लगा हुआ है। और जब आप आएंगे मैं आपको कंपनी नाम बताऊंगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे, 58 ईयर्स की कनाडा की टॉप मोस्ट कंपनी का वो सोफा बना हुआ है, 7 कलर की चॉइस है और सोफे की प्राइस है $1,299। अगर आपको लगे कि ये $900 सस्ता है तब लेना। हमने 5 फैमिलीज पर स्टोर, मतलब 25 फैमिलीज उसका फायदा उठा सकती हैं इस डील का। तो हमने मतलब कुछ उनसे रियायत मांगी, जैसे उसे लूजर विनर भी कह रहे हैं, हाई एंड कस्टमर को बुद्धि अपना स्टोर दिखाने के लिए हमने ये डील आपके लिए लगाई है। उसी तरह हमने एशले का कोई रिक्लाइनर भी लगाए हैं, एशले का कोई हमने एक मतलब सोफेस बहुत सस्ते लगाए हैं। तो फ्लायर में चाहता नहीं सारा मैं आपको डिस्क्लोज करूं, अभी आ जाएगा आपके पास, लेकिन आप आएंगे अगर स्टोर पे आते हैं कल आ जाएंगे तो आपको वो फ्लायर दिखा देंगे, क्योंकि मुझे मेरा दिल नहीं मानता कि जो डील मैं आपको एक हफ्ते बाद अगर किसी को देने वाला हूँ, व्हाई नॉट टुमारो, व्हाई नॉट टुडे, तो आपको वो डील दिखाई जाएगी और दी जाएगी। तो आपका प्यार हमें बहुत टाइम से मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो आप आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
5: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
6: थैंक यू जी।
5: नंबर नोट करें 416-901-2810, 416-901-2810, metafurniture.com इनकी वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, हमारे स्टूडियो में रबते के नंबर 416-593-0003। कल मिनिस्टर शफकत अली जो सदर हेट्रोजी बोर्ड के और आंद्रिया केंजिन जो ओंटारियो के वजीर बराए रेड टेप रिडक्शन है, वफाकी सूबाई इलाके वजरा के पहले हिस्टोरिकल इजलास ही कहेंगे, उसकी मुश्तरक उन्होंने मेज़बानी की थी। और जो गैर ज़रूरी रुकावटें हैं, सरकारी पेचीदगियाँ जो होती हैं, रेड टेप के खात्मे के जो जिम्मेदार हैं, इस हवाले से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ये जो आप कह लीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, एक मीटिंग थी कैनेडा की मशीद को मजबूत बनाने के लिए, मुश्तरक मकसद कहते वज़रा ने उन इंतजामी और जाबता जाती रुकावटों पर तबादला ख्याल किया जो तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर सकती हैं और कारोबारी इदारों के लिए मुकाबला और सरमायाकारी को मुश्किल बना सकती हैं। उन्होंने इस मुश्तरक इकदाम पर गुफ्तगू की जो मुख्तलिफ हुकूमतें गैर ज़रूरी कवायद और ज़वाबित कम करने और तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए कर रही हैं, ताकि कनेडियन शहरियों को और कारोबार जो लोग करते हैं उनको बेहतर मामला जो है वो फराहम की जा सके। वज़रा ने इस मुश्तरक आज़म का अदा किया कि हुकूमतों के निज़ाम को कनेडियन अवाम के लिए ज़्यादा तेज़, मौसर और आसान बनाया जाए, जिसके लिए तकाज़ों को सादा बनाना, डिजिटल खदमात को बेहतर करना और पॉलिसी और कवायद और ज़वाबित को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर जोर दिया गया। AI टेक्नोलॉजी और इसके अलावा इस इम्कान पर तबादला ख्याल किया गया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो रुकावटें उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं और कवायद पर अमल दरामद बेहतर जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। और आइंदा इकदाम के तौर पर वज़रा ने इस बात की भी हिमायत की कि खिदमात की फराहमी में तआवुन को बढ़ाया जाए ताकि हुकूमती तकाजे ज़्यादा वाज़ेह उन पर अमल करना आसान बनाया जा सके। और इस बात पर भी इतफाक़ हुआ कि वफाकी सूबाई और इलाकई हुकाम की जानिब से एक जामे मनसूबा तैयार होने के बाद इसके बाद खिजा 2026 में दोबारा मुलाकात की जाए ताकि पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके और गैर ज़रूरी रुकावटों के खात्मे की कोशिशों को मुसलसल आगे बढ़ाया जा सके। ये रेड टेप वाला मामला हर दुनिया में हर जगह पे है और बगैर किसी वजह के जो है वो चीज़ें उन मराहल से उसको गुजरना पड़ता है, तो इसके खात्मे से ना सिर्फ लोगों को, आम आवाम को भी आसानी मिलेगी बल्कि इसके साथ साथ कारोबार जो बिजनेसेस हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो मिनिस्टर शफकत अली जो हैं जो कि ट्रेड बोर्ड के सदर भी हैं, उनकी भी और गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की भी कोशिशें हैं, सूबाई और इलाकई जो हुकूमतें हैं उनके साथ मिलकर इन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।
7: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कहम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी کیجیے 416-855-9464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464. گرین سٹار امیگریشن.

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: Talhavat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhavat 647-295-7861.
0: तो तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 647-295-7861.
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550 7465550।
6: कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियाँ जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
7: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
8: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्स रोड मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
9: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 905-839-0002। बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
10: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 905-819-1001 लाइसेंस नंबर 12374।
11: रेडियो पाकिस्तान
12: पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। एक बार फिर आपको ले चलेंगे मीडिया फर्नीचर होलसेल गैलरी, जहां लंदन ओंटारियो की 5वीं लोकेशन का जो है लास्ट एंड ऑफ द वीक जो है वो इफ्तिताह हो रहा है, ग्रैंड ओपनिंग है और तमाम जो इनके ग्रैंड ओपनिंग की आपको स्पेशल्स होंगी 5 लोकेशंस पे आपको मिलेंगी। मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारबरो, कैम्ब्रिज और लंदन ओंटारियो। एक ही नंबर 4 लोकेशन के लिए 416-901-2810। मीडिया फर्नीचर.com इनकी वेबसाइट है। मैं डिटेल मेरा साहब से लेंगे। मेरा साहब वेलकम यू अगेन सर।
13: थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैंने पिछले लिंक में कहा था कि आप सब बधाई के पात्र हैं, आप मेरा परिवार हैं, मेरे फैमिली हैं। तो पांचवी लोकेशन का आज ऑफिशियली हमने सॉफ्ट ओपनिंग भट्टी साहब करी है, ताकि जो बहन भाई, क्योंकि वो कहते हैं ना स्नीक पीक और अर्ली बर्ड, जो भी प्रोफेशनली कहते हैं, वो आ सकें। और ग्रैंड ओपनिंग का फ्लायर भी बन गया है, वो हमें आई थिंक मंडे पोस्ट, संडे रात शाम को पोस्ट करेंगे, और जो आपकी हर परचेज के साथ गिफ्ट दे जाएगा, और चेन वाइड उसकी वो आपको दे रही है। मैंने पिछले लिंक में आपको टॉप ग्रेन जेन्युइन लेदर, मतलब ऑल ओवर लेदर, 7 कलर की चॉइस, मेड इन कैनेडा, जो अगले 10-12 साल फ्रेम की लाइफ टाइम गारंटी होती है आपकी, क्योंकि सॉलिड वुड का फ्रेम लगाती है, बहुत बड़ी कंपनी का नाम है। तो मैं रेडियो पे ऑफिशियली उन्होंने मना करा हुआ है, क्योंकि वो प्राइस जो 2200 का बेच रहे हैं उन्हें बड़ा फर्क पड़ता है, पर जब आप आएंगे तो जरूर बताया जाएगा।
12: ठीक।
13: एशले के हमने सोफे 40 इंच डीप सोफा, एशले के जो सोफे हैं 799, मतलब 699 भी हो सकते हैं। एशले का एक बेड है नया आया 2779, 1899 का लगा हुआ है, आप समझ जाते हैं जब मैं नाम लेता हूँ, हम 1199 का आपको देंगे। तो ये सब संभव भी आपके प्यार की वजह से होता है। जो चीज हमने नई ऐड करी है, मेपल वुड की डाइनिंग टेबल, तो अगर आप अच्छा फर्नीचर ढूंढ रहे हैं, जी हाँ, थोड़ा इकोनॉमी भी स्लो है, या जो बहन भाई नया आता है, भट्टी साहब जब हम भी एज ए इमिग्रेंट आए थे, तो मतलब किसी दोस्त ने भी दिया था, तो अगर वो भी उससे भी गुजारा करा, लेकिन ऊपर वाले की रहमत हुई, जब आप ग्रो कर जाते हैं तो फर्नीचर लंबे अरसे वाला ही चाहिए होता है आपको, टेम्परेरी नहीं चाहिए होता। टेम्परेरी तो बेड हमने, जैसे जी हाँ, हमने ग्रैंड ओपनिंग का बेड है 399 का बेचते थे, हमने 249 का लगाया। जैसे मैट्रेस है, तो जैसे नेक्टर कंपनी है, आप यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे भी जाएंगे, नेक्टर कंपनी, और उसकी हमने 7 मॉडल लगा रहे हैं, और उसकी मेमोरी फोम प्लस मीडियम फर्म जो हाइब्रिड होते हैं, 365 दिन की आपको स्लीप गारंटी है। ये 364 दिन बाद आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरे से गलती हो गई, हाँ वापस नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो ऐसा, तो फिर साल यूज करके कोई कहेगा वापस पैसे दे दो, एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आप एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, कोई डिडक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और वो मैट्रेस भी आपके घर से डोनेशन कंपनी उठा के ले जाएगी।
12: ठीक।
13: जो मतलब मैट्रेस भी डोनेट वाले, डोनेट की जाएगी, मतलब वो अगर आपको नहीं पसंद आएगी, ये नेक्टर कंपनी का रूल है। तो वो मतलब हाँ, प्राइस जो उनकी 1100-1100 से शुरू होती है, लेकिन वही मैट्रेस आपको कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े स्टोरों में 1400-1500-1800-2000 की मिलती है। तो मिड्डा फर्नीचर को मान महसूस हो रहा है कि हम भी वो चीजें ले आए जो बड़े बड़े स्टोरों के पास होती थी। तो आप आए, हमें अपना बनाए, आपने बनाया हुआ है, जिन्होंने उनको कहते हैं जिनसे अभी तक नहीं बन पाए जिनका, तो क्योंकि जब तक फर्नीचर नहीं लेना आपको लगता है कि चलो फर्नीचर स्टोर पे तो क्या जाना, पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ना भी लेना हो तो हमारे से मिल जाएं, हमारे से बातचीत कर जाएं, हमें अच्छा लगेगा और आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। कनेडियन मेड कुछ बनाना है जो आप ढूंढ रहे हैं, चाहे वो 199 वाला या वो 99 माइकल मीनी के 20,000 के भी डाइनिंग टेबल्स और सोफेज आते हैं, तो वो भी आपको बाजार से 10-30%, मेरा वादा है, आपको सस्ता लेके दूंगा, ये आपसे वादा है। आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
12: बहुत शुक्रिया साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं, थैंक यू। नंबर नोट कीजिए, पांचवी लोकेशन लंदन ओंटारियो में आप सॉफ्ट ओपनिंग की हो गई है, वहां आप तशरीफ ले जा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 416-901-2810, 416-901-2810, midafurniture.com इनकी वेबसाइट है। अच्छा जनाब, राहत बेकर्स की छठी लोकेशन का इफ्तिताह जो है नियाग्रा फॉल्स में आज हो रहा है, बल्कि हो गया है, तो ये 4967 क्लिफ्टन हिल्स है। अगर आप नियाग्रा फॉल में हैं तो जनाब इनके ज़बरदस्त किस्म के स्वीट्स भी हैं और स्नैक्स भी हैं, और इनके चिकन पैटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनकी कैलगरी में भी लोकेशन है ज़बरदस्त किस्म की, तो वो आप ज़रूर जाएगा। इस तरह से बट कड़ाही जो है पिकरिंग में 6 जून से ये लोग हलवा पूड़ी का नाश्ता वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, और कढ़ाई तो उनकी वैसे ही पूरी दुनिया में मशहूर है। और 820 किंगस्टर रोड पिकरिंग, 9058390002 आप रब्ता कर सकते हैं, और यहाँ बैंकट हॉल भी है जहाँ 150 लोगों की आप पार्टी भी अरेंज कर सकते हैं। 24 घंटे मायने शादी पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोंटो 360 TV। अच्छा, रियल सेट के वाले से एक बार फिर आपको बता दूँ, हैमिल्टन में एक 3-bedroom 2-washroom का कॉन्डो है, सिर्फ 379 में ये लगा हुआ है, और 2 car पार्किंग इसके साथ हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, मैं तमाम डिटेल आपको भिजवा दूंगा। और 8th floor है ये, और 3-bedroom 2-washroom 1000 स्क्वायर फीट के करीब, उससे ज़्यादा ही है, और 379 इसकी प्राइस है, दो कार पार्किंग के साथ। आप अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए, तमाम डिटेल आपको भिजवा दूंगा। 4163005600, 4163500600। लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, पेश करें जनाब जुबैर उद्दीन साहब।